पर्सनली अमित कुमार की आवाज जो है वो मेरी पसंदीदा आवाजों में से एक है, और तेरी कसम फिल्म का ये गाना था, आनंद बख्शी ने लिखा था और संगीत आर डी बर्मन का था। सुबह के 5:34 हुए हैं और गर्मी में दिन जो है जल्दी निकलता है। मैं अपने स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ, मतलब काफी जल्दी दिन निकल गया, अब तो बहुत अच्छा मतलब एकदम क्लियर दिखने लग गया। यानी अब क्या होता है ना कि घर के काम भी जो है जल्दी शुरू हो जाते हैं, सब लोग जल्दी जाग जाते हैं और आलस भी नहीं आता एज कम्पेयर टू सर्दी, उसमें तो खैर रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता। लेकिन हम दिल्ली वालों की शुरुआत जो है वो तेज गर्मी में भी चाय से होती है। मतलब अब हम चाय ना पिए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो शुरुआत तो उसी से ही होती है। खैर, तो हम दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं खाने पीने के मामले में भी। तो इस गाने के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ, और ये गाने भी बहुत ठंडी ठंडी फीलिंग देता है। सो मैंने सोचा कि आज आपको ठंडे गाने सुनाए जाएं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो इस गाने का मजा लीजिए। इस गाने के बाद आपसे मिलता हूँ।

गर्मी का टाइम है, बिल्कुल भी प्यासे मत रहिएगा, पानी जरूर पीना। और खैर, मुझे बताने की जरूरत थी क्या कि ये इजाजत फिल्म का गाना था? वैसे ये तो हद से भी हद से ज्यादा पॉपुलर गाना है, सभी ने सुना है। अच्छा, वैसे मैं ना आपको रात के 3 बजे से अपनी बातें और गाने सुना रहा हूँ पुराने वाले, लेकिन अब आपको कोई और सुनाएगा क्योंकि भोर सुहानी शो का समय जो है वो पूरा होने वाला है और अगले घंटे आप सुनेंगे नेक्स्ट शो अर्पण सुरुति जिंदल के साथ। तो आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर एक से बढ़कर एक गाने और शोज का मजा लेते रहिए, हर पल हर दिन 24 घंटे नॉनस्टॉप। मैं आपसे दोबारा जल्दी मिलूंगा, तो अभी के लिए मुझे यानी पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्ते।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। आइए हम आपको बता दें आज एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, जिसमें सुरती जिंदल आपके साथ होंगी। सुबह 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान बालकांड भाग 67। गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर, सुरती जिंदल इसमें आपके साथ होंगी। सुबह 8:45 पर सुरती जिंदल के साथ सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक दिल लगी। फिर सुबह 9:10 पर नीतू शर्मा आपके साथ होंगी कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी में। सुबह 10:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम नीतू शर्मा के साथ दिल का मेल बॉक्स, इसमें रिक्वेस्ट बेस्ड ये कार्यक्रम है, आप अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर, जिसमें आज आप सुनेंगे दारिंगबाड़ी के विषय में, नीतू शर्मा इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे। दोपहर 12:10 का समय रहेगा महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन का, इस कार्यक्रम में प्रियांशी भटनागर आपके साथ होंगी, साथ में सिमरन कौर होंगी। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी पर बातचीत होगी, प्रियांशी भटनागर इसमें आपके साथ रहेंगी। दोपहर 2:30 का समय रहेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। दोपहर 3:10 पर AIR@19 के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग आप सुनेंगे, इस कार्यक्रम में आज अतिथि रहेंगे श्री लक्ष्मेंद्र कुमार चोपड़ा, दूरदर्शन के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक, लेखक और पत्रकार। शाम 4:10 पर आप सुनेंगे फिल्म सॉन्ग्स, इसमें नसरीन खान आपके साथ रहेंगी। शाम 4:30 पर परिक्रमा आप सुनेंगे। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे नसरीन खान के साथ कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, इसमें पुराने गाने और साथ ही 90s एरा के गानों का आप आनंद ले सकते हैं। शाम 5:30 पर नॉर्थ ईस्ट डायरी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। शाम 6:10 का समय रहेगा सदाबहार गीत कार्यक्रमों का, जिसमें आप अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं, संदेश भी भेज सकते हैं, विभा लक्ष्मी इसमें आपके साथ होंगी। शाम 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम सुर्खियों में का, 7:25 पर आप सुनेंगे सांझ ढले कार्यक्रम, इसमें पुराने ना भुलाए जाने वाले गीतों का आनंद आप ले सकते हैं। रात्रि 8:10 पर विभा लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी कार्यक्रम मधुरिमा में। तो ये थी आज आकाशवाणी की दिल्ली के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की

आईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी सुबह अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। आइए खुशियों के साथ आगाज करते हैं इस प्यारी सी सुबह का एक बहुत ही बेहतरीन भक्तिमय आनंदित करने वाले भजन के साथ एक प्यारी सी शुरुआत।

कोई भी इंसान बहुत ज्यादा बोलने से ना कुछ नहीं सीख पाता। समझदार इंसान वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना हो और साथ ही साथ निडर भी हो।

मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो हाथों से नहीं कर सकता, और जो कुछ वो मौन रहकर कह सकता है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सुरती के साथ, और ये है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण है ये, मेरी रानी सुरती के साथ। आइए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा भजन।

जिस तरह से चाय का स्वादिष्ट होना कप के ऊपर निर्भर नहीं करता बल्कि चाय की गुणवत्ता और चाय बनाने के तरीके पर निर्भर करता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में खुशियां जो है पैसों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे संस्कारों और हमारे जीवन जीने के तरीके पर पूरी तरह से निर्भर करती हैं।

और इसी के साथ अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। वक्त हो गया है अब श्री रामचरित मानस गान का, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी कि 100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्री रामचरित मानस का अगला भाग।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान और इसी के साथ अब वक्त हो गया है समाचारों का। तो पहले सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद हिंदी में और फिर उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम गोल सुप्रभात मेरे यानी सुरते के साथ। लेकिन अभी वक्त है समाचारों का, तो आइए सुनते हैं FM गोल्ड पर संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्रायाः पंचमं अंतिमं च चरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंक वित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य

0: कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिम बंगाल राज्ये दक्षिण चतुर्विंशति परगण मण्डलस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे पुनर्मतदानं अधुना सप्तवादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरंगतः तीव्रतापतरंगस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे ज्ञानी सुरत के साथ। और वक्त हो गया आप सभी के अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। आइए इस बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ। और ये उम्मीदें जो है ना, ये वो है जिन कार्यों को हम पूरा नहीं कर पाए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास इन उम्मीदों के जरिए हम जरूर करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि इंसान के पास कुछ हो ना हो उम्मीद जरूर होनी चाहिए। उसी उम्मीद के दम पर हम बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो आइए करते हैं बहुत ही प्यारे से गाने के साथ शुरुआत। और ये बहुत ही प्यारा सा गाना है मनमौजी फिल्म से किशोर साहब की आवाज में।

0: जरूरत है।
1: क्या बात है, जरूरत है एक साथ की, और वो साथ जो है जीवन भर का साथ होना चाहिए। और जैसे कि बात हुई है सुबह की शुरुआत की, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सुबह की शुरुआत चाय पीकर करते हैं, जिनकी शुरुआत ही चाय से होती है। तो खासकर ऐसे लोगों को मैं ये बता दूं कि आज है इंटरनेशनल टी डे। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो कि हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है दुनिया भर में चाय के सांस्कृतिक और साथ ही साथ आर्थिक महत्व को उजागर करना, साथ ही साथ चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बेहतर जीवन, उचित वेतन और साथ ही साथ कार्यस्थल की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत की बात करें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। यहां पर असम की कड़क चाय से लेकर दार्जिलिंग की मशहूर व्हाइट एंड ब्लैक टी तक चाय की कई किस्में उपलब्ध है। तो भाई, जिन लोगों की शुरुआत चाय के बिना होती है, वो आज इंटरनेशनल डे को एंजॉय करें इस प्यारे से गाने के साथ। वैसे भी जब घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है, चाय बना दे क्या? और जब बात हो रही होती है किसी की शादी या रिश्ते की, तो घर बुलाकर चाय जरूर पिलाई जाती है ना? चाय का महत्व देखिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग

0: यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: क्या बात है, और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आकाशवाणी से। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने राष्ट्र और विश्व तक भारत की आवाज पहुंचाने की अपनी शानदार और गौरवशाली यात्रा जो है उसके 90 वर्ष पूरे किए हैं। जानते हैं 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था, जो कि बाद में आकाशवाणी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही वो आकाशवाणी है जिसने न जाने कितने दिलों को अपना बनाया है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी पहचान बनाई है, और आज आकाशवाणी के जरिए ही हम बहुत प्यारे प्यारे से गीतों का आनंद लेते हैं, बहुत सारी खास जानकारी हम तक पहुंचती है, और साथ ही साथ हम अपने दिल की जो बातें हैं एक दूसरे से बयां कर पाते हैं। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत अपनी आकाशवाणी के नाम।

0: दिलों को दिलों से जोड़ती है अपनी आकाशवाणी, बेहतरीन गीतों और बेहतरीन जानकारी को सब तक, जन तक पहुंचाती है अपनी आकाशवाणी। और चलिए इसी साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का। अभी आप सभी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम गोल सुप्रभात मेरे यानी सुरति के साथ। अब वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का। आज सवेरे के बाद हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में सुनेंगे समाचार और ठीक 8:45 पर म्यूजिकल दिल्लगी में करूंगी ढेर सारी बातें। सुनते रहिए FM गोल।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन आज सवेरे में। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। सुबह का वक्त अपनी गर्मजोशी, ताजगी, खुशगवार हवा, पक्षियों की चहचहाहट और कई वजहों से सबको पसंद होता है। एक तरफ सुबह अंधियारी रात के बाद एक नई रोशनी का प्रतीक है, वहीं ये एक नई जद्दोजहद को भी दिखाती है। इस तरह आज सवेरे के आज के अंक में आप सुबह को और कई रंगों में देखेंगे। लेकिन कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जिक्र कर लेते हैं एक ऐसी चीज का जिसके बिना शायद हर भारतीय की सुबह अधूरी रहती है।
1: Unusual brews around the world. Tea. Tea is the most popular drink in the world with billions of cups drank every day. With that, good morning, good day everybody. This is Shagun Chopra with Sir Firozi. Today, it's International Tea Day. Well, yes, 21st of May, this celebrates one of the world's most beloved beverages, tea. And this is recognized by actually United Nations. This was recognized, in fact, in 2020. And the day celebrates tea farmers, promotes sustainable practices, highlights tea cultural, economic and health significance.
0: बिल्कुल शगुन, और बात करें अपने देश भारत की तो हमारे यहाँ तो सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है और कहीं ना कहीं शाम की थकान भी चाय की चुस्कियों के साथ ही दूर होती है। और चाय की एक प्याली आज भी रिश्तों में मिठास घोलने और लोगों को करीब लाने का काम करती है।
1: वेल, इंडियाज आइकॉनिक चाय स्टॉल्स, वेल द टी कनेक्ट्स कम्युनिटीज, ट्रेडिशंस एंड जनरेशंस। मसाला चाय, लेट्स टॉक अबाउट मसाला चाय, स्पाइस्ड विद कार्डमम, जिंजर, क्लोव्स, सिनेमन, black pepper, this is perhaps the most iconic, while the adrak chai, the ginger tea, the winter staple in our nation.
0: बिल्कुल शगुन, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों जब देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो चाय प्रेमी हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इनका उत्साह कम नहीं हुआ है। बिल्कुल भीषण गर्मी में भी लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते नजर आ जाते हैं। यही वजह है कि चाय के प्रति लोगों की दीवानगी हर मौसम में बरकरार रहती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बल्कि बरसात के मौसम में तो इसका मजा और भी बढ़ जाता है,
1: स्पेशली अदरक टी। Right. And well, in Western Europe, if I tell you about that, tea was introduced into the English language as a result of trade routes in the East. And well, the word was taken from China, where it was pronounced té. And in English, it's tea. In French, it's té. In Spanish, it's té again. In German, it's tea. It's just the same. So today, actually, as a suggestion to our listeners, you can try a new kind of a tea today. You could also use this International Tea Day to try a variety of tea which you have never had tried before.
2: टी के आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। लखमा
3: लाइए भाभी, हम चाय बना लेते।
4: अरे ये तो बन गई, तुम अपनी चाय बना लो। तुम्हारी ये बिना दूध वाली चाय हमसे नहीं बनती भाई।
3: वो तो हम बना ही लेंगे, लाइए हम लेके जाते।
5: बेटा चाय कैसी बनी है?
6: बहुत अच्छी।
5: अब तो बनानी आ गई होगी आपको चाय।
1: सो टुडे इट्स ऑल अबाउट चाय, our tea. So let's start the program. We have headlines, we have Metro City updates, and today we are also going to explore the history for today. Today it's 21st of May, as we told you. Let's start with the headlines.
0: बिल्कुल शगुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि

0: गठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: India and Italy will celebrate 2027 as the year of culture and tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations but also through connections between people and societies.
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।
1: West Bengal government has begun handing over land to border security force for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More details from our correspondent.
3: Yesterday, at the state secretariat Navarno, Chief Minister Shubhendu Odhikari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000 kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers, 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF Director General Praveen Kumar praised the state government, noting that cooperation long needed in border operations is now being received under the new administration.
4: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा है। कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला और सीपीआई ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं।
1: वेल, समर सीजन इज सिनोनिमस विद मैंगो, सो अ नेशनल मैंगो फेस्टिवल, लेट्स टेल यू अबाउट दैट। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन रायपुर फ्रॉम द 29th टू 31st ऑफ मे। मोर देन 250 वेराइटीज ऑफ मैंगोज विल बी शोकेस्ड एट दिस फेस्टिवल टू बी हेल्ड एट द कैंपस ऑफ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिफरेंट मैंगो वेराइटीज दे विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द इवेंट, इन विच मैंगो ग्रोअर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड वेरियस अदर स्टेट्स विल पार्टिसिपेट। हाउ ग्रेट।
2: बिल्कुल शगुन, और अब बात कर लेते हैं खेलों की। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रही हैं चेन्नई से शगुन।
5: Exactly, beginning with Chennai Metro. So, Tambaram Corporation will open Mudalvar Padipakkam, a study centre and knowledge centre, by 31st of June. This will help to improve access to education resources for students who are preparing for competitive examinations.

0: Facilities built at a total cost of 4.5 crore rupees are expected to benefit at least 2,000 residents from surrounding areas. The multi-story building was built for about 2.5 crore rupees across 536 square meter. It will include a general reading area, preparatory area, computer zone, training center, indoor and outdoor learning spaces as well, reception space, movable study areas and bookshelves, along with CCTV surveillance, Wi-Fi connectivity and two-wheeler parking. So this was about this knowledge center, the study center. Another update, the ICMR and National Institute for Research in Tuberculosis, Ministry of Health and Family Welfare and the Central Council for Research in SIDH designed and signed an MOU. This partnership will focus on advancing integrative strategies against tuberculosis through clinical trials, innovative drug development, capacity building and nutritional support with the traditional SIDH system of medicine. Following the ceremony, a technical session on the scope of SIDH system of medicine for the TB elimination in India, it was held in connection with the TB Mukt Bharat Abhiyan. This is a 100 days campaign. Now let's find out what's happening in Delhi.
1: शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल राजधानी दिल्ली से. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान 2026-27 और इसके डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को पहचान देना, उन्हें निखारना और आगे बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 10 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है. गुजरात में कच्छ के सीमावर्ती जिले को राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई रेल सेवा जल्द ही शुरू हो रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. पश्चिम रेलवे के सूत्रों के अनुसार रेलगाड़ी सुबह 11 बजे भुज से शुरू होकर राजस्थान के जालौर और पाली होते हुए अगले दिन लगभग इसी समय दिल्ली पहुंचेगी. भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को विश्व तीरंदाजी महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी का सदस्य नामित किया है. श्री सचदेवा वर्ष 2008 से पहले दिल्ली तीरंदाजी संघ और बाद में भारतीय तीरंदाजी संघ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं. और शगुन, आपके पास बेंगलुरु से क्या अपडेट है?
0: राइट, द बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सूरेज बोर्ड अप्रोच टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एज वेल एज रीयूज एंड सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस मॉडल. दिस हैज रिसीव्ड अ क्लेम एट द ग्लोबल वाटर समिट बीइंग हेल्ड इन मड्रिड, स्पेन. So the board chairman, Dr. Ram Prasad Manohar, has made a statement that their urban water governance model has earned appreciation for its innovative and sustainable water management practices. The recognition is for its contribution to achieve the United Nations Sustainable Development Goals, ensuring clean water and sanitation for all. The board's performance over the past 3 years in urban water supply as well as sanitation management, technology adoption, infrastructure expansion and sustainable utility governance was considered to be listed among the top 5 global agencies. The Bangalore Water Board is one among other organizations, each from Chile, Malaysia and two from Brazil, to receive this distinction. This was all about Bengaluru.
1: और अब बात कर लेते हैं शहर मुंबई की. मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में भारत सरकार की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना पर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम और अन्य उद्योगों को इस योजना के बारे में जानकारी देना था. इस सम्मेलन में एमएसएमई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय पर और बिना किसी परेशानी के ऋण सहायता प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया. कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के जनसमर्थ पोर्टल पर ईसीएलजीएस के तहत ऋण आवेदनों और अनुमोदनों की पूरी तरह से डिजिटल, कागज रहित और सरलीकृत प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया.
0: नाउ वील हेड टू हैदराबाद. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल्स टू क्रिएट अ न्यू पॉलिसी टू एनकरेज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन एरियाज आउटसाइड हैदराबाद. So the Global Capabilities Centres are large offices where international companies set up operations. The Chief Minister wants to spread job creation to Tier 2 and Tier 3 cities. He suggested encouraging the GCCs, the Global Capabilities Centres, along highways connecting Nizamabad and Warangal. This will help develop underserved areas and create employment opportunities beyond Hyderabad. The government also plans to spread data center establishments across the state. Data centers, they are facilities that store and manage computer information. So the chief minister held a review meeting with IT and industries officials to discuss these plans. He emphasized that Bharat Future City, a new industrial area being developed, must follow environment-friendly net-zero principles with maintaining global standards as well.
1: और अब बात करेंगे अपने आखिरी महानगर की. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है. सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा. वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे. श्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि CAA के तहत सुरक्षित 7 समुदायों के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते वो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में आए हों. श्रोताओं, अब आपको दे रहे हैं महानगरों के मौसम की जानकारी. शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से. राजधानी दिल्ली में आज लू का कहर जारी रहेगा. न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 46 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुंबई में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. कोलकाता में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़क सकती है. न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
0: सो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 40 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन. The minimum temperature was 22 degrees Celsius. Maximum temperature will be around 33 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky. There is a possibility of development of thunder lightning there, Sir Firozi. The minimum temperature will be around 29 degrees. Maximum temperature will be around 42 degrees Celsius.
1: और शगुन, अब बात कर लेते हैं इतिहास की घटनाओं की और जान लेते हैं कि आज का यानी 21 मई का दिन क्यों इतिहास में दर्ज हो गया. आज सबसे पहले बात कर रहे हैं एंटी टेररिज्म डे यानी आतंकरोधी दिवस की. भारत में 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है. आज दुनिया जिन समस्याओं का सामना कर रही है उनमें सबसे बड़ी और अहम समस्या आतंकवाद है. आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए भारत ने 21 मई का दिन इसे समर्पित किया. पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को भी भारत कभी नहीं भूल पाएगा, जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई. और इस घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में विभिन्न आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ दुनिया के सामने आतंकवाद से पीड़ित होने का रोना नहीं रोएगा, बल्कि दोषियों को अपनी सामर्थ्य से दंड देगा. इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे. और शगुन, अब कुछ और घटनाओं का भी जिक्र कर लेते हैं.
0: Well, we are taking you way back in time, listeners. In 1881, the American Red Cross was officially founded by Clara Barton in Washington, D.C., the American Red Cross.
1: 1840 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बना.
0: In 1904, in this year, FIFA was established in Paris.
1: और 1927 में आज ही के दिन अमेरिकी एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग ने अटलांटिक महासागर के पार पहली एकल नॉनस्टॉप उड़ान पूरी की.
0: इन 1908 द साइलेंट फिल्म अडॉप्टेशन ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड प्रीमियर्ड इन शिकागो, मार्किंग व्हाट फिल्म हिस्टोरियंस कंसिडर द बर्थ ऑफ द अमेरिकन हॉरर मूवी जॉनर. इन 1980 द सिनेमैटिक सीक्वल स्टार वॉर्स The Empire Strikes Back premiered in theaters across the US and Canada.
1: 1994 में आज ही के दिन सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी. और 2003 में आज ही के दिन वैश्विक तंबाकू संधि को अपनाया गया. विश्व स्वास्थ्य सभा के 192 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से जिनेवा में तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनाया. 2010 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया. और श्रोताओं, अब याद करेंगे उन महान विभूतियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है. आज सबसे पहले याद कर रहे हैं जानकी देवी बजाज को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये गांधीवादी जीवन शैली की

0: कट्टर समर्थक थी। इन्होंने कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में काफी सहयोग किया। ये एक स्वावलंबी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनके व्यक्तित्व में एक विरोधाभास सा था। जानकी देवी बजाज जहां दानी मितव्ययी और कठोर थी, वहीं दूसरी ओर वो बहुत दयालु भी थी। जानकी देवी बजाज के आजीवन किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने सन 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
1: Well, today we are also remembering the acknowledged master of the hero couplet and well, one of the primary tastemakers of the Augustan age, the writer Alexander Pope, who was the central figure in neoclassical movement of the early 18th century. So he's remembered as the first full-time professional English writer, having supported himself largely on the subscription fees for his popular translations of Homer and his edition of the works of William Shakespeare as well. Although a major cultural figure of the 18th century, Pope fell out of favor in the Romantic era then, and his interest, it was revived in the poetry in the early 20th century. He is recognized as a great formal master and a representative of the culture and politics of the Enlightenment. Well, his works, they include an essay on man and other prose and poems as well. So I was telling you about Alexander Pope.
0: आज ही पुण्यतिथि है सुंदरलाल बहुगुणा की। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता को आज हम याद कर रहे हैं। सन 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है। सन 1949 में मीराबेन और ठक्कर बाप्पा के संपर्क में आने के बाद बहुगुणा दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए और उनके लिए टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री, पद्म विभूषण सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बहुगुणा के इस साक्षात्कार से पता चलता है कि वो पेड़ों को केवल लकड़ी या संपत्ति नहीं बल्कि भविष्य की सांस मानते थे।
2: जंगल की जिंदा पैदावार ऑक्सीजन है, प्राणवायु, और फिर उसके बाद पानी है, फिर उसके बाद मिट्टी है, फिर उसके बाद खाना है, फिर उसके बाद पशुओं के लिए चारा है, फिर उसके बाद कपड़ा है, फिर उसके बाद औषधि है, फिर उसके बाद छाया है। ये तो है जंगल की जिंदा पैदावार। और जब पेड़ मर जाए, जंगल खत्म हो जाए, तो उसके बाद ईंधन और इमारती लकड़ी है।
1: Well, yes, Sundarlal Bahuguna, a true voice of the Chipko movement whose lifelong dedication to forests and sustainable living continues to inspire a greener and more responsible future. Listeners, today we are also remembering Thomas Wright Fats Waller, the jazz pianist and a singer. His innovations in the Harlem stride style laid much of the basis for modern jazz piano, a widely popular style in the jazz and swing eras. He toured internationally, achieving critical and commercial success.

0: the hour.
1: Well,
2: thank you.
0: No place to go.
3: शरद जोशी की आज जयंती है। ये अपने समय के अनूठे व्यंग्य रचनाकार रहे। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाहों से देखा। अपनी पैनी कलम से बड़ी साफ गोई के साथ इन्हें सटीक शब्दों में व्यक्त किया। शरद जोशी पहले व्यंग्य नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से खिन होकर व्यंग्य लिखना शुरू कर दिया। ये भारत के पहले व्यंग्यकार थे जिन्होंने पहली बार मुंबई में चकल्लस के मंच पर 1968 में गद्य पढ़ा और किसी कवि से ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। इनकी मुख्य रचनाओं में

0: मिल व्यंग्य है परिक्रमा किसी बहाने यथासंभव फिल्मों में क्षितिज और छोटी सी बात जबकि धारावाहिक में विक्रम बेताल सिंहासन बत्तीसी आदि शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं इनके सम्मेलन के कुछ अंश।
1: जी आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह बोला सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। मैंने कहा कि बुद्धिजीवी के नाते मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वे बोले बुद्धिजीवी के नाते तो नहीं, हां गुंडे बदमाश के नाते आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। मैंने कहा गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वे बोले तभी आइए तभी आइए, प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो होते ही रहेंगे। मतलब मेरा पत्ता कट गया। इन नेताओं की जो प्रमुख समस्या है उसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने सोचा चलो किसी अफसर से बात करें। जिस अफसर से मैं मिला वह हालांकि पुलिस का था मगर था विश्वसनीय। मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने बात भी अकेले की।
2: Well, Sharad Joshi, the poet writer, awarded Padma Shri in 1990. Well, Sharad Joshi has written many satirical essays on political, social, and cultural and economical topics as well.
0: और आज आदित्य चोपड़ा का भी जन्मदिन है। ये भारतीय फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, निर्माता और लेखक है। आदित्य चोपड़ा ने 18 साल की उम्र में सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म निर्माण करियर की शुरुआत की। इन्होंने अपने पिता के साथ चांदनी, लम्हे और डर जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन्होंने अपने पिता की परम्परा और अपनी मां की स्वतंत्र रूप से निर्मित फिल्म आईना के लिए अपनी पहली पटकथा भी लिखी।

0: श्रोताओं इस जुनून भरे गीत के साथ दीजिए इजाजत सर फिरोजी और शगुन को, कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
0: नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया।

0: जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं

0: अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने जो TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है समुना तुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
5: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र।

0: पात्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: More from our correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to multilateralism and global food security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
3: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, "The initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries." She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खुसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए। रोम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरका अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिजाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली डिजाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के उसूल पर आगे कदम बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और इटली के दरमियान दिफाई सनती खाके के तहत साजो सामान कर तैयार करने की राह हमवार हुई है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कामयाब दौरा भारत के बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात और सकाफती ताउन को मजबूत करने की उनकी जारी कोशिशों का हिस्सा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह इटली का पहला दोतरफा और मजमूई तौर पर तीसरा दौरा था। उनके इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम और सरगर्मियां अंजाम पाईं। उन्होंने इटली के सदर सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ वफद की सतह की बातचीत की, जिसमें भारत और इटली के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। खुराक और ज़राअत की तंजीम के उनके दौरे का मकसद कसीर जेती और आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अज़्म को मुस्तहकम करना था, जहां उन्हें अहम यूएन एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। दोनों फरीकों ने 2027 के लिए सकाफत और सियाहत के इटली भारत साल के आगाज का भी फैसला किया। उन्होंने पुरजोश भारतीय और इतालवी फनकारों से भी मुलाकात की, जिन्होंने रोम आमद पर उनका इस्तकबाल किया। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान सकाफती तबादलों को फरोग देने और मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझबूझ को बढ़ावा देने और सकाफती सिफारतकारी को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात सिर्फ सियासी और इकतसादी राबतों के जाविये से ही नहीं देखे जाते, बल्कि अवाम और मुआशरों के दरमियान रिश्तों से भी इनकी अक्कासी होती है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल गूगल, मेटा और टेलीग्राम समेत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नुमाइंदों के साथ

0: मीटिंग की और मुकाबला जाति इम्तिहानात से मुतालिक गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात खासतौर पर टेलीग्राम चैनल्स और नामालूम ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 21 जून को दोबारा होने वाले नीट यूजी इम्तिहान से कबल ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। हुकाम ने कहा है कि अहम इम्तिहानात से पहले इस तरह के कई चैनल बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं और पेपर लीक होने के फर्जी दावे करने लगते हैं, जिससे तलबा और वालिदैन में गैर जरूरी तौर पर घबराहट, फिक्रमंदी और इबहाम की कैफियत पैदा होती है। मगरबी बंगाल में जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असेंबली हलके में आज दोबारा पोलिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने वहां 29 अप्रैल की वोटिंग को रद्द कर दिया था और पूरे फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया था, क्योंकि वहां राय दहिंदकान को डराने धमकाने, पोलिंग मराकज में गैर मजाज अफराद की मौजूदगी और वोटिंग मशीनों के साथ मुमकिन छेड़छाड़ समेत बेजाबतगियों की कई इत्तलात मौसूल हुई थीं। दो आजाद उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐलान किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता बैलेट पर उनका नाम मौजूद है, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पहले ही गुजर चुकी है। इस चुनाव में दिबांशु पांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम की तरफ से शंभुनाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। कल नाबन्ना में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अहदेदारों की मौजूदगी में बाजाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज किया। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
1: रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने साबिका सरकार पर तावुन न करके सरहदी सिक्योरिटी में रखना डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरहद पर बाड़ लगाना मुल्क और रियासत की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस तनाजुर में दरंदाजी, स्मगलिंग, जाली करेंसी, जबरन मजहब बदलने और गैर कानूनी बांग्लादेशियों के आने से वाबस्ता जराइम का हवाला दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर तवील सरहद में से लगभग 2200 किलोमीटर का सरहद का इलाका मगरबी बंगाल से मुत्तसिल है। तकरीबन 1600 किलोमीटर के इलाके पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर के इलाके में कोई बाड़ नहीं है। कल जो 27 किलोमीटर अराजी हवाले की गई है, उसमें 18 किलोमीटर खारदार तार लगाने के लिए और 9 किलोमीटर बीएसएफ की जांच चौकियों और बुनियादी ढांचे के बंदोबस्त के लिए है। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि मजीद अराजी जल्द ही मुंतकिल की जाएगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में नस्लकुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज के बारे में सलामती काउंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश परवदा नैनी ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिल नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सितम जरीफी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो बिल्कुल भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश परवता नैनी ने यह रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। अमरीका के वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो भारत में अपने साझेदारों के साथ अमरीका के कयाम को 250 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के मुंतजिर हैं। अपने दौरे से कबल एक वीडियो पैगाम में जनाब रूबियो ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और अमरीका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत है, लिहाजा अमरीका इसे मिलकर मनाने का मुतमन्नी है। भारत में अमरीका के सिफारतखाने ने भी मजकूरा वीडियो शेयर किया है। امریکہ 4 جولائی کو آزادی کے اعلانیے پر دستخط کیے جانے کے 250 سال پورے ہونے کا جشن منائے گا۔ جناب روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے

0: चार दिन के दौरे पर रहेंगे। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। कुप्रस के सदर निकोस क्रिस्तोदुलिदिस कल शाम भारत के चार रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे। उनके हमराह एक आला सथी वफ्द भी है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हवाई अड्डे पर सदर क्रिस्तोदुलिदिस का इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारिजी उमूर की वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सदर क्रिस्तोदुलिदिस का यह दौरा भारत कुप्रस शराकतदारी की बढ़ती हुई रफ्तार को उजागर करता है और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकदार और मजबूत अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित पर मबनी हैं। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। कांग्रेस कानून साज पार्टी के रहनुमा राजेश कुमार और मेलूर से रुकने असेंबली पी विश्वनाथन को काबीना में शामिल किया जाएगा। साल 1967 के बाद यह पहली बार है जब कांग्रेस सरकार रियासती काबीना में शामिल होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, मनिकम ठाकुर और दीगर बहुत से रहनुमाओं ने मखलूत हुकूमत कायम करने के वजीर आला विजय के फैसले का खैर मकदम किया है। हलफबरदारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के बाज़ हिस्सों में भी गर्मी का जोर जारी रहने का इम्कान है। आज मुल्क में इंसदादे दहशतगर्दी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों की तकलीफ को उजागर करते हुए और ये दिखाते हुए कि कैसे दहशतगर्दी कौमी मफाद के खिलाफ है, नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद से दूर करना है। इस दिन दहशतगर्दी के खिलाफ हलफ लेने के साथ साथ दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं। साल 1999 में आज ही के दिन मुल्क ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को एक दहशतगर्दाना हमले में खो दिया था। आईपीएल क्रिकेट में कल रात ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का चौथा और आखिरी हॉकी मैच 3-3 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। इससे कबल इसी मैदान पर 18 साल तक की उम्र की खातून खिलाड़ियों के चौथे और आखिरी मैच में भारत ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में इटली का दौरा करने और वजीर आजम जॉर्जिया मिलोनी से मुलाकात करने से मुतालिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को शहसुर्खी बनाया है कि भारत और इटली के दरमियान बातचीत सिर्फ रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक ने खसूसी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। अखबार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को नुमाया किया है कि इंतजामी फैसले में ताखीर लोगों को उनके जायज हकूक से महरूम करने के मुतरादिव। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि जनूबी कोरिया के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदारी और होगी मजबूत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मेरी यानी सुरति के साथ और वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल्ली का, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए आप काफी सारी जानकारियों को पाते हैं और बेहतरीन गानों का आनंद लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी ने राष्ट्र की आवाज के रूप में अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं और इसी उपलक्ष्य में यादों की एक मीठी सरगम को समेटे इन 90 सालों को महसूस करते हुए इस प्यारे से बेहतरीन से गीत के जरिए आनंद लेते हैं उन हसीन से पलों का।

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सबके साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष्य पर हम सब इतने खुश हैं और तरक्की करें आकाशवाणी। और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आकाशवाणी ने बहुतों को बहुत कुछ दिया है और मुझे भी दिया है और अपने अपनों को अपना बनाया है। और ऐसे में तमाम यादों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा गाना मुझे याद आ रहा है जिसे हम सुनेंगे, महसूस करेंगे उन हसीन पलों को जो हमारे और आपके आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती

0: ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मेरे यानी सुरेति के साथ सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रोजेक्ट संगम शुरू किया है। ये पहल इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग और एजुकेशन के 3E मॉडल पर बेस्ड है। आपको बता दूं कि इसका जो मकसद है, सड़क डिजाइन में बदलाव, अवैध पार्किंग हटाना, ई रिक्शा और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने जैसी कार्रवाई इसमें शामिल की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें PWD, MCD, DTA, DMRC और स्थानीय पुलिस समेत कई एजेंसियों को जोड़ा गया है। वाह, क्या कहने हैं। उम्मीद है कि प्रोजेक्ट संगम जल्द से जल्द जाम को दूर भगाएगा।

सोनिया माते कह दिया आई एम योर सोनिया। बहुत ही प्यार सा गाना है और इसी के साथ वक्त हो गया इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत। वक्त हो गया है समाचारों का, सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल लगी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा नीतू के साथ। सुनते रहिए अपना मन पसंद आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनः मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और कई खबरों के बाद 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद यह पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर म्यूजिकल दिल लगी। और लाइफ ना बड़ी अनसर्टेन है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं ना घर से तो बिल्कुल टाइम लेकर निकलिए। और आज तो बहुत जरूरी है कि टाइम लेकर निकलिए क्योंकि सड़कों पर काफी जैम की खबरें आ रही हैं कि और पूरा दिन ये जैम शायद लगा रहेगा। तो अपनी तरफ से आप तैयार रहिए ताकि जहां भी आप जा रहे हैं ना वहां आप लेट ना हो जाए, क्योंकि देर से जाना बिल्कुल सही बात नहीं है। और जिंदगी में पता नहीं ना, अच्छा बुरा कुछ भी अचानक से घट सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना भी जरूरी है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू के साथ ये है म्यूजिकल दिल्ली।

यही इकरार आपका और हमारा हो चुका है ना, तभी तो आप हमारे साथ हैं सालों से, और एक के बाद एक ये जो साथ है वो मजबूत होता ही जा रहा है। और इसीलिए अब आकाशवाणी जब 90 साल पूरे कर रहा है अपने, तो हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं रोजाना, और आप उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो आज के सवाल की बारी आ गई है। आज का सवाल है, ये तो आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी सिर्फ एक बार आकाशवाणी आए थे, तो सवाल भी यही है कि बस आपको इतना बताना है कि वो कब आकाशवाणी आए थे। और सवाल का जवाब देने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। तो जल्दी से मेल भेजिए, प्रोग्राम के आखिर में मैं सही जवाब जिनके होंगे उनके नाम भी लेंगे, और उनमें से किसी एक लिसनर से हम बात भी करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। अपना फोन नंबर आप साथ में मेल पर जरूर भेज दीजिएगा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। तो फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं, म्यूजिकल दिल लगी में।

रिश्ता ऐसे ही होते हैं ना, अच्छे रिश्ते ऐसे ही होते हैं कि जिसमें गलतियां हों और अच्छी बातें हों, खुशियां हों, गम हो, सब आपस में बांट लिए जाएं, गलतियों को इग्नोर कर दिया जाए और फिर जो सही बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हें अपना लिया जाए। तो ऐसा ही रिश्ता आपका हमारा है। तो फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देती हूं आज का सवाल, जो इसका जवाब आपको हमें भेजना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार आकाशवाणी आए थे तो वो कब आए थे, यही आपको बताना है। fmgoldairdelhi@gmail.com पर मेल करिएगा, और अगर आप हमसे बात करने में इच्छुक हैं तो फिर अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा साथ में, क्योंकि किसी एक लिसनर से हम प्रोग्राम के आखिर में बात भी करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक।

0: 90.
1: गर्म है और लू के आसार भी हैं, जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया है कि अगले 3 दिन और लू चलने की संभावना है। लेकिन होता क्या है ना कि मौसम गर्म हो या ठंडा, कुछ लोगों के लिए ना कोई विकल्प नहीं होता सिवाय चाय के। चाय पर चर्चा बहुत आम है, लेकिन चाय आम नहीं, बहुत खास है। घर में मेहमान आए और आपने चाय नहीं पिलाई तो समझिए सारी मेहमान नवाजी बेकार। दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर भविष्य की प्लानिंग हो या किसी बड़े रेस्टोरेंट में चाय पीते पीते दुनिया भर की राजनीति पर डिस्कशन, कितने ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाय पीते हुए आपको भी सूझे होंगे। दुनिया भर में यूं ही थोड़ी चाय सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है। वो अलग बात है कि कोई दूध वाली चाय पीता है तो किसी को ब्लैक टी पसंद है, किसी की फेवरेट है ग्रीन टी तो किसी को लेमन टी सूट करती है। सैकड़ों वैरायटीज हैं इस चाय की, जिसे कुछ लोग आंख खुलते ही बेड पर लेना पसंद करते हैं, इसलिए वो हो जाती है बेड टी। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मैं चाय का गुणगान क्यों कर रही हूं इतना, तो ये गुणगान नहीं है, आज चाय की बातें करना बनता है, क्योंकि आज है इंटरनेशनल टी डे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कानूनी मदद और सलाह दिलाते, टेलीनो हमें सही राह दिखाते।
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ।

0: फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat.
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें छाई हुई हैं और ऑनलाइन गेम्स तो बहुत ही ज्यादा, और उनके बारे में हमने बहुत बातें की भी हैं। हम सब जानते हैं कि ये लत अगर एक बार लग जाए तो कई बार इंसान की जान लेकर ही छूटती है, मगर आज भी कितने ही लोग इन ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंसे हुए हैं। 2025 में लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग में करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं और कितने ही व्यापारी सड़क पर आ गए। शुरुआत तो सिंपल गेमिंग से होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत पैसे जीतने लगते हैं तो लालच जो है वो बढ़ता चला जाता है और फिर बर्बादी। इतना लालच किस काम का? वैसे तो अब पैसा लगाने वाले गेमिंग ऐप्स अपने देश में पूरी तरह से बैन हो गए हैं, लेकिन जागना हमें है ताकि हम किसी भी तरह के लालच में ना फंसें और हर तरह के जाल से बचे रहें, क्योंकि ऐसी चीजें ना किसी रूप में हमें लुभाने वाले रूप में हमारे सामने आती हैं और फिर हम उनसे बच नहीं पाते हैं। तो बच के रहिए ऐसी चीजों से। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू के साथ ये है म्यूजिकल दिल्लगी।

आज है 21 मई और 1991 में आज ही के दिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। राजीव गांधी की स्मृति में शांति, एकता और अहिंसा के संकल्प को दोहराने के लिए भारत में हर साल 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। आतंकवाद वाकई कोई समाधान तो नहीं हो सकता ना, समाधान हमेशा बातचीत से ही निकलता है। अगर हम देखें तो अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैलियों के बीच संवाद, समझ और सम्मान हो तो हमारी धरती शायद कायनात की सबसे खूबसूरत शय बन जाए, क्योंकि जब हम मिलजुल कर एक दूसरे को समझ कर सम्मान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो दुनिया न सिर्फ तरक्की करेगी बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां ज्यादा शांति होगी। और इसी विचार को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट के तौर पर मनाया जाता है।

0: अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी पीएमएसएमए की। भारत सरकार की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ये योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी वजह से इसे कहा जा रहा है आई प्लेज फॉर 9 स्कीम, यानी इस नाम से भी इसको जानते हैं। और पीएमएसएमए केंद्र पर आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की जांच एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा उचित तरीके से की जाती है। इस योजना में सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर्स द्वारा वेरीफाई करने के बाद गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड सहित बहुत सी दवाइयां और सप्लीमेंट्स प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि मां और बच्चे की सेहत ठीक रहे प्रसव से पहले भी और प्रसव के बाद भी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू है आपके साथ म्यूजिकल दिल लगी में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे

0: मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू के साथ। ये है म्यूजिकल दिल लगी और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बार आए थे आकाशवाणी, वो दिन कौन सा था, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब हम तक पहुंचाया है। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के नाम बता देती हूं। मनीषा साखर डांडे, हेमंत साखर डांडे, सतप्रकाश सनोथिया, नवीन भाटिया, तिलक राज अरोड़ा, जगदीश कुमार, राहुल, पंकज मोहोर, सुशील आर पठानिया, कृष्ण कुमार गुप्ता, मनोहर लाल गांधी, आशीष गायकर, संतोष सक्सेना, ओमकार नवलकर, राजा आर, अर्जुन कुमार, श्री बालाजी शिंदे और सतीश घनाटे। और इनके अलावा जिन्होंने हमें सही जवाब दिया वो है प्रकाश गोगिया, जो हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। हेलो प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
2: जी सादर प्रणाम।
1: प्रणाम, कैसे हैं आप ये बताइए।
2: समस्त गोल्ड परिवार को एक बार फिर से आज के इस विशेष दिन पर जब आपने मुझे याद किया, सादर प्रणाम करता हूँ।
1: जी जी, अच्छा ये तो बताइए आप कैसे हैं, मैं तीन बार पूछ चुकी हूँ आपसे।
2: जी मेरा जब भी कोई ऐसा, सब लोग एक ही जवाब दिया ठीक है,
1: ठीक है, नहीं बताना है ना, अच्छा वाला बताइए, जो आज अच्छा हुआ है वो बताइए।
2: मैं कहता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, सब प्रभु का आशीर्वाद है उन्हीं के।
1: ये बात तो है, सबको ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये बताइए कि सही जवाब क्या है।
2: जी 12 नवंबर सन 1947।
1: बिल्कुल ठीक। तो
2: ये
1: नहीं, मैं बस वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हैं, क्योंकि मैं तो आपका नाम बहुत समय से सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आप कब से जुड़े हैं ये आप बताइए।
2: जी गोल्ड के कार्यक्रमों में आप अक्सर हमारा नाम लेती हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद दिए। और क्योंकि हम लोग गोल्ड के पुराने, यानी कि सन 2001 जब से शुरू हुआ है, राजीव सक्सेना जी ने जब से शुरू किया था ना, तो तब से लगे। लेकिन जहां तक आकाशवाणी का सवाल है, मैंने पिछली बार बताया था कि सन 1964-62 से में ये रेडियो थे, जबकि पूरे मोहल्ले में, गली में एक या दो घरों में रेडियो होता था
1: जी
2: उस समय में। क्योंकि मैंने माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने की खबर सुनी थी।
1: मतलब बहुत ही जमाने हो गए हैं आपको सुनते हुए, तो ये अच्छी बात है, आप हमारे रेगुलर और कंसिस्टेंट लिसनर हैं। जो
2: तब ना दिल्ली ABCD के नाम से आता था, और दिल्ली डी पर युवानी कार्यक्रम आता था जिसमें कि कॉलेज के विद्यार्थी वर्ग जाते थे। तो मैं उस समय, मुझे अच्छी तरह स्थान याद नहीं है, 74 था, 72 या 75 शायद 76 थे, तब मैं एक बार कार्यक्रम शाम को 7:30 आकाशवाणी पर देखकर आया था।
1: अच्छा, आप मैं अभी ये पूछने वाली थी कि आपने सुनाई है कि आप देखकर भी आए। ओके ओके, तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने आकाशवाणी के साथ आप जुड़े, सिर्फ सुनने के तौर पर नहीं, एक लिसनर के तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, आप एक प्रेजेंटर के तौर पर भी जुड़े हुए, अनाउंसर के तौर पर भी जुड़े रहे।
2: और जो जानकारी हमें आप लोगों ने दी है शायद वो हमें किताबों में भी ना मिली थी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम
2: यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आप सब उद्घोषकों का, सभी का, मैं ना गरी, यदि नाम लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी।
1: नहीं नहीं, नाम वही मैं कह रही हूँ कि वो उतना समय है नहीं, तो
2: उसके साथ साथ समस्त श्रोताओं का भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम आज भी आपने लिया है, जिन्होंने सही उत्तर भेजा है, उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहे, यही मेरी कामना भी।
1: हमारी भी यही कामना है कि हम सब साथ मिलकर आकाशवाणी के और बहुत सारे सालों तक साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

अभी तो जुदा नहीं हो रहे हैं, ये वादा है, क्योंकि 10:30 बजे मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी लेकर दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपकी रिक्वेस्ट होंगी पूरी। fmgoldairdelhi@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपनी पसंद के गानों की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अभी आखिरी गाना मेरी पसंद का सुनिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और

0: इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: शो की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर्ज से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाज, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। सुश्री मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वह भारत में अपने साझेदारों के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की यात्रा भारत साइप्रस साझेदारी की बढ़ती गति को दर्शाती है। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया

0: हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की है। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर कल आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास है। श्री पर्वतनेनी ने पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने इस वर्ष के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान सैन्य बलों द्वारा की गई सीमा पार सशस्त्र हिंसा के कारण 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाओं को दर्ज किया है। इनमें से अधिकांश हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप हुई है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमरीकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर को रोककर उसका मार्ग बदल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार एमटी सेलेस्टियल सी नामक टैंकर की तलाशी ली गई। इस पर ईरान के बंदरगाह की ओर जाने का संदेह था। अमरीका ने इस साल अप्रैल में ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी लागू की थी। इसके बाद से अब तक 91 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को रोका गया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर नए सैन्य हमले टालकर बातचीत का मौका देने की बात कही थी, लेकिन समुद्र में कार्रवाई जारी है। अमरीका का कहना है कि इस नाकेबंदी से ईरान को रोज करीब $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 2 मालवाहक जहाजों को कब्जे में ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मामलों की सुनवाई के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अंतिम कार्यवाही पूरी हो गई है। अंतिम सुनवाई में रवांडा नरसंहार के कथित वित्त पोषक फेलिसियन काबुगा से जुड़ी कार्यवाही औपचारिक रूप से बंद कर दी गई। काबुगा का शनिवार को निधन हो गया था। दोनों न्यायाधिकरणों ने अत्याचार और नरसंहार से जुड़े 155 लोगों को दोषी ठहराया। इन अदालतों ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा और किसानों तथा मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा लिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणी की निंदा की। कहा, पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार उसकी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने का प्रयास। और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, वे इस वर्ष भारत के साथ अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. India slams Pakistan at UNSC over Kashmir remarks, says Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts to externalize internal failures. And US Secretary of State Marco Rubio says he's looking forward to celebrating America's 250th year of independence this year with partners in India. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to

हम तो आ गए हैं और आप लोग भी आ गए हैं, आपकी मेल्स देखकर पता चल रहा है। और ये जो गाना आपने सुना, ये सुना सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय की फरमाइश पर, आशा जी की प्यारी सी आवाज, ओपी नैयर का म्यूजिक, और फिल्म तो क्या ही कमाल की थी, राज खोसला का निर्देशन। आप ऐसी फिल्में ना एक बार देख लें तो भूल नहीं सकते हैं, और यही कमाल है हमारे चैनल का भी, क्योंकि इस पर ऐसे ही दौर के गाने बजते हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता कभी भी। 50s, 60s, 70s क्या गाने बनते थे। चलिए एक और गाना सुन लेते हैं। और ये जो आवाज है ना, ये भी बहुत ही प्यारी आवाज, इतनी शांत सी आवाज लगती है ना, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हेमंदा की आवाज, हेमंत कुमार, उन्हीं की फिल्म है और उन्हीं की फिल्म का गाना है, उन्हीं की आवाज में गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका वाणी, इन सब की फरमाइश पर 20 साल बाद।

एक और आवाज जो अपने गानों में परफेक्शन के लिए जानी जाती है, मन्ना डे साहब की, उन्हीं का गाना अब मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, मेघा मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, राहुल खुराना की फरमाइश पर। और ये जो गाना है ना, कव्वाली है एक्चुअली, और ये कव्वाली मतलब यादगार है, सदाबहार है, और आवाज तो खैर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही परफेक्ट मैच्योर वॉइस मन्ना डे साहब की। चलिए सुनते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

स्वादिष्टमलवे का आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है दिल का मेल बॉक्स। मैं हूं नीतू आपके साथ और अगला गाना भी आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा गाना है। इस गाने की फरमाइश सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन सभी ने मिलकर भेजी है। फिल्म है जिद्दी और गाना आशा पारिख पर पिक्चराइज्ड है। बहुत प्यारा सा गाना लता मंगेशकर की आवाज में, आइए आनंद उठाते हैं हम सब मिलकर। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं अपनी पसंद FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
0: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
4: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
3: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
4: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ये है दिल का मेल बॉक्स नीतू के साथ सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। बोधराज खोलवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश सुनना चाहते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना दो बदन फिल्म से। हालांकि इन दिनों अगर हम दिल्ली में देखें ना तो कहीं भी ठंडी हवा नहीं चल रही है, लेकिन ठीक है, इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। इमेजिन करेंगे तो जरा गर्मी कम लगेगी, लू के थपेड़े महसूस नहीं होंगे। तो गाने को एंजॉय करके इमेजिन करिए आप भी।

यादों का तो ऐसा है, कभी भी आ सकती हैं और कभी भी वो यादें आपको हंसा भी सकती हैं, रुला भी सकती हैं। तो उन यादों का जो सिलसिला है ना, वो एक अलग तरह का है। काम करते हुए उसको जरा दूर रखते हैं, गाने सुनते हैं। और ये आखिरी गाना है इस प्रोग्राम का, आकाश देव फिल्म से सुनना चाहा है फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा ने। और इसी के साथ नीतू आपसे इजाजत चाहती है, आप इस गाने का आनंद उठाइए। मैं तस्वीर में आपसे मिलती हूँ 11:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।

0: हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि यह निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर चेन्नई के लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 627 अंक की उछाल के साथ 75,945, जबकि निफ्टी 200 अंक बढ़कर 23,859 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। नीतू है आपके साथ और ये है तस्वीर, जिसमें हम बात करते हैं अपने ही देश की कुछ ऐसी जगहों की जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी हैं और जहां जाने का अगर आपका कहीं घूमने का मन है तो आप वहां जा सकते हैं। अब होता क्या है ना कि अक्सर लोग बातें तो कर लेते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर लेते हैं रील्स भेज भेज के, लेकिन अक्सर जाना नहीं हो पाता। और होता ये भी है कि आप जब उन जगहों के बारे में देखते हैं सुनते हैं तो बड़ा ही आपको लगता है यार इतनी अच्छी अच्छी जगह है हमारे देश में, हम जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि कम सुने हुए होते हैं, तो आज जिस जगह की बात मैं करने जा रही हूं ना, ये नाम भी आपने शायद बहुत कम सुना होगा। ये है उड़ीसा का

कश्मीर, यानी इसे ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है और ये ओडिशा के कंधमाल जिले में बसा है दारिंगबाड़ी। ये छोटा सा हिल स्टेशन है, समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ठंडी हवाओं, धुंध भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। एक ऐसा ठिकाना जहां कुदरत अपने सबसे कोमल रूप में दिखाई देती है।

नज़ारे तो वाकई देखने लायक होते हैं। आप कहीं बाहर चले जाएं पहाड़ों पर तो बहुत ही एक से बढ़कर एक नज़ारे आपको मिलते हैं। और दारिंगबाड़ी भी ऐसी ही गिनी चुनी जगहों में से है, खासतौर पर ओडिशा की गिनी चुनी जगहों में से है, जहां सर्दियों में तापमान 0 डिग्री के आसपास चला जाता है और कभी कभी तो फ्रॉस्ट भी देखने को मिलता है, यानी पाला पड़ता है वहां पर, जो कि ओडिशा में बहुत ही रेयर है। ओडिशा में पाइन ट्री भी कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन दारिंगबाड़ी में पाइन का खूबसूरत जंगल है, जिसे देखते ही वो जो हिल स्टेशन वाली फीलिंग है ना, वो आ जाती है। और पहाड़ हो, पहाड़ का गांव हो ना स्पेशली, तो बस ऐसा करता है दिल कि वहां से वापस ही ना आया जाए। कोई बात नहीं, वो मौका भी आएगा जब आप वहां जाएंगे और बसेंगे, लेकिन फिलहाल गाना सुनते

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और आज हम बातें कर रहे हैं ओडिशा के हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी की। आप वहां जाएंगे ना तो बटरफ्लाई पार्क और खूबसूरत नेचर पार्क में घूमने का मौका बिल्कुल मत गंवाइएगा। नेचर के साथ नेचर के बीच में ये वॉक आपको हमेशा याद रहेगी। हिल व्यू पार्क, डोलुरी नदी तो बस ऐसे हैं कि आपको वहीं थाम के रख लेंगे, आपका हिलने का मन नहीं करेगा। और यहां के हिल व्यू पॉइंट से आपको दिख सकता है सूर्योदय और बादलों का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा। आप जाके तो देखिए, कोशिश ये होती है कि आप जाएंगे तभी आपको ये सब दिखेगा, नहीं जाएंगे तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। या फिर गाने सुन के एंजॉय कीजिए।

नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करेक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करेक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम। विविध भारती का अपना एक अलग मजा था क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था जो मैं रात को हवा महल जिस पे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रवि साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था। इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हमें तुम्हें बहुत प्यार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप। तस्वीर सुन रहे हैं और तस्वीर में हम बातें कर रहे हैं ओडिशा के हिल स्टेशन दारिंगबाड़ी की, जहां के कॉफी गार्डन और काली मिर्च की खेती इस जगह को एकदम अलग पहचान देते हैं। बेलगढ़ सेंचुरी में आप वन्य जीव देख सकते हैं और घने जंगल तो आपको देखने को मिलेंगे ही, कॉफी गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे। हरियाली के बीच फैले हुए ये बागान आपको सुगंधी से भर देते हैं। दारिंगबाड़ी और उसके आसपास का इलाका पूर्वी घाटों के बीच शानदार झरनों का घर है, जिनमें पुटुदी झरना, रेनबो वाटरफॉल, लुडू झरना, मिदुबिंद वाटरफॉल और दारिंगबाड़ी झरना जो हैं, ये मुख्य रूप से शामिल हैं। और जिन्हें झरनों से प्यार होता है ना, उन्हें बस पानी की फुहारों का स्पर्श ही बहुत है। और हिल स्टेशन आप जाते हैं ना, तो अपने आप ही एक स्वर्ग जैसा आनंद तो आपको अपने आप मिल जाता है, फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं महसूस होती।
1: कैसा कैसा

आप जब ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं ना, तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, तो सबके एक जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते। और दारिंगबाड़ी की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत थोड़ा कम जाना पहचानी जगह है, तो अगर आप वहां जाते हैं तो फिर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। दारिंगबाड़ी की बात है तो इसका जो नाम है वो एक ब्रिटिश अधिकारी डेरिंग साहब के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस क्षेत्र को विकसित किया था। दारिंगबाड़ी अपने ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जानी जाती है, खास कर जीआई टैग वाली कंधमाल हल्दी, जो बेहतरीन क्वालिटी की हल्दी मानी जाती है, और अदरक की पैदावार, उसके लिए भी दारिंगबाड़ी जाना जाता है। दारिंगबाड़ी के आसपास के जंगलों में कुटिया कोंध जंद जाति के जो लोग हैं वो रहते हैं, जो भारत के सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक हैं। स्थानीय जनजातियां अपनी पारंपरिक संस्कृति और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जब आप वहां जाएंगे तो उस जगह के हस्तशिल्प से रूबरू होइएगा, अच्छे से जानिएगा करीब से, क्योंकि हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, तो उस खासियत को जान लेना बहुत जरूरी है, तभी हम उस जगह को ज्यादा बेहतरीन तरीके से जान पाते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ ये है तस्वीर, और तस्वीर में आज हमने बातें की दारिंगबाड़ी की, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा का हिल स्टेशन है और यहां जाने के लिए सबसे अच्छा समय ठंडा मौसम ही होता है हिल स्टेशन जाने के लिए, अक्टूबर से मार्च तक का। और

में भी अगर आप फ्रॉस्ट का अनुभव करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पाला पड़ते हुए वो कैसा लगता है, वो उस जगह पर कैसा महसूस होता है, तो खास तौर पर दिसंबर जनवरी के महीनों में जाइएगा। सर्दियों की सुबह यहां इतनी ठंडी होती है कि घास और पत्तों पर बर्फ जैसी परत जम जाती है। दारिंगबाड़ी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नजदीकी रेलवे स्टेशन है ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन। भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और फुलवनी से बस या टैक्सी लेकर आप पहुंच सकते हैं दारिंगबाड़ी।

आने का नहीं, अब तो जाने का समय हो गया है। हाँ, कोई दूसरा आएगा लेकिन मुझे जाना होगा। तो नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ है सुनने के लिए। अभी मैं आपके लिए एक और गाना छोड़े जा रही हूँ, शशि कपूर पर पिक्चराइज गाना है और फिल्म है प्यार का मौसम। आप इसका आनंद उठाइए और नीतू को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को

संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड के 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम

अब बात करते हैं कुछ संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की, जिसे आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 21 मई को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया की ताकत हमारी विविधता में है। हमारे देश भारत ने तो सांस्कृतिक विविधता की मिसाल खुद मिलती है। अलग अलग भाषा, खानपान, त्योहार, पहनावे सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। सांस्कृतिक विविधता सिर्फ उत्सव नहीं, ये विकास का इंजन है। जब अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से सीखती हैं तो नई नई विचारधारा जन्म लेती हैं, नए आविष्कार होते हैं और समाज आगे बढ़ता है। इस दिन हमें वादा करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान करना ही सच्चा विकास है। तो आज से शुरू करते हैं, किसी एक नए दोस्त से बात करें, किसी अलग भाषा का गाना सुने या किसी दूसरे त्योहार में शामिल हों, विविधता को अपनाएं और विकास को आगे हमेशा आगे बढ़ाते ही जाएं।

और अब बात करते हैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि की। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उन युवा प्रधानमंत्री को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आधुनिक बनाने का सपना देखा था। मात्र 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी, जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए और शिक्षा विज्ञान को नई दिशा भी दी। वे कहते थे, भारत एक पुराना देश है लेकिन युवा राष्ट्र है और मैं भी युवा हूं। मेरा सपना एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का है। और इन दूरदर्शी नेता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी याद हमें प्रेरित करती रहे कि हम मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। और साथ ही आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है क्योंकि ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ही आता है। इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत की अहिंसा की परंपरा को मजबूत रखेंगे और मानवता के लिए काम करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित शांतिपूर्ण भारत बनाने का वादा करें।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में गीत, फिल्म थी आनंद। अब बात करते हैं कुछ विश्व चाय दिवस की। आज हम बात करें एक ऐसे पेय की जिसके बिना सुबह की शुरुआत अधूरी लगती है, और वो है हमारी प्यारी चाय। चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पानी के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ये पेय है चाय। सुबह उठते ही चाय, काम के बीच में चाय, दोस्तों के साथ चाय, ठंड में चाय, बारिश में चाय, हर मौके का साथी है चाय। ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लाखों किसानों की रोजी रोटी भी है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज का दिन उन चाय उत्पादकों के नाम है जिनकी मेहनत से ये प्याला हमारे हाथ में आता है। चाय हमें एनर्जी देती है, स्वास्थ्य लाभ देती है और सबसे बढ़िया दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने का भी बहाना देती है। तो चाय हमें एक दूसरे से जोड़ती भी है। कितने ही रिश्ते चाय की दो प्यालों के साथ शुरू हुए हैं। ऑफिस में, ट्रेन में, घर में, हर जगह चाय से बातचीत शुरू होती है। और आज चाय दिवस पर अपनी फेवरेट चाय बनाकर पीजिए, पिलाइए किसी को और खुश हो जाइए। क्योंकि जैसा कहा जाता है ना, हमेशा हर कोई बोलता है चाय पी लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनिए सौतन फिल्म से गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब बात करते हैं कुछ स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं के लिए। नए रूप में प्रस्तुत ये योजना महिलाओं को बेहतर वित्त पोषण, मजबूत समर्थन, सपनों को सफल व्यवसायों में बदलने के बड़े अवसर प्रदान करने को तैयार है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है। स्टैंड अप इंडिया योजना महिला उद्यमियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक बैंक लोन प्रदान करती है और योजना प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला को ऋण देने का लक्ष्य रखती है जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और खास तौर पर इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह महिला उद्यमी होनी चाहिए। व्यक्तिगत उद्यमों के लिए कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रक हिस्सेदारी एक महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। ब्याज दर बैंक के सबसे कम दर के बराबर होती है जो आमतौर पर 3% से अधिक नहीं होती और ये ऋण 7 वर्ष तक की अवधि में चुकाया जा सकता है जिससे 18 महीने की अधिकतम मोहलत अवधि शामिल हो सकती है। और इसके लिए खासतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसाय का पता होना चाहिए, व्यवसाय योजना का नाम होना चाहिए और ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनके काम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

और अब बात करते हैं पर्यावरण के अनुकूल ही खुद को चलाएं, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होने और धरती की रक्षा करने से ना सिर्फ ये ग्रह रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। जैसे गर्मियों में घर को ठंडा और ताजा रखने के लिए आसपास आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने घर में, और हरियाली से भरा रहेगा आपका ये घर और ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। पूरे हफ्ते कम से कम प्लांट बेस्ड पदार्थों को चुनें जिसमें बहुत सारी सब्जियां, फल, फलियां और अनाज शामिल हों, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। आप अपनी बैटरी, कागज, कंटेनर, कपड़े और कठोर प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इससे पहले कि आप कुछ भी फेंक दें, उसे रिसाइकिल कर लें। आजकल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है यानी प्लास्टिक, और सिंगल जो प्लास्टिक है वो बैन करने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर हर कोई खुद से ऐसे कदम बढ़ाए जिससे प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, ताकि स्वच्छ और खुली हवा में सांस ली जा सके। लता मंगेशकर, सुरेश फड़े की आवाज में गीत।

और अब बात करते हैं घर से निकलते हुए यानी गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से पहले सावधानियां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गर्मी के चलते अस्पतालों में ओपीडी में डिहाइड्रेशन, उल्टी, सिरदर्द मरीजों की तादाद बढ़ गई है और डॉक्टर ने सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों, बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, शुगर बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सर्द गर्म शिकार हो रहे डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खासतौर पर रात को तापमान बढ़ने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, जिससे सुबह थकान और कमजोरी की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा तेज धूप में एसी वाले कमरों में आने जाने के कारण भी लोगों की सेहत बिगड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अक्सर एसी को 16-18 डिग्री पर चलाते हैं लोग, जिससे शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ जाता है। तो एसी का तापमान हमेशा 24 से 27 डिग्री के बीच रखना जरूरी है। ठंडे कमरे से अचानक गर्मी में निकलने से सांस के पुराने मरीजों की समस्या बढ़ रही है। दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और बच्चे इस दौरान बाहर न खेलें, नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, ORS और नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन ज्यादा करें और बाहर पानी जो रेड़ी पर मिलता है उससे पानी पीने से बचें। यदि अगर बहुत जरूरी बाहर जाना है तो खासतौर पर छाते और पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, साथ ही अपने डॉक्टर की सलाह से दवा की डोज भी जरूर रख लें।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपसे होगी अगली मुलाकात। अगली प्रस्तुति तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने यह बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं प्रियांशी भटनागर लेकर उपस्थित हूँ आपका पसंदीदा और मनोरंजक कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। श्रोताओं, आज 21 मई को हम हिंदी सिनेमा के महान स्वप्न दृष्टा और निर्देशक सुबोध मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। 1921 में झांसी में जन्मे सुबोध मुखर्जी ने वकालत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कारावास की तपस्या भी काटी। राष्ट्र सेवा से उपजी इसी स्वतंत्र चेतना के साथ जब वे सिनेमा में आए तो उन्होंने पर्दे पर भी नायक को पुरानी रूढ़ियों से आजाद कर दिया। आइए उनके इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं बतौर निर्देशित उनकी पहली ही सफल फिल्म मुनीम जी के इस अमर और सदाबहार गीत से।

स्वाधीनता के बाद मुंबई आकर सुबोध मुखर्जी ने सीधे निर्देशन के बजाय अपने भाई शशधर मुखर्जी के प्रसिद्ध फिल्मस्तान स्टूडियोज में आधे दशक तक पटकथा लिखने और संपादन की बारीकियां सीखी। महान निर्देशक ज्ञान मुखर्जी के सहायक के रूप में काम करते हुए उन्होंने साल 1950 में फिल्म सरगम और 1954 में कस्तूरी की पटकथा लिखी, जिसने उन्हें दृश्यों के गणित का उस्ताद बना दिया। आइए उनकी इसी लेखनी और देवानंद की बेपरवाह शैली के सुंदर संगम को सुनते हैं साल 1957 की कल्ट क्लासिक फिल्म पेइंग गेस्ट के इस सदाबहार गीत में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी भटनागर और कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आज हम प्रतिष्ठित लेखक, निर्माता और निर्देशक सुबोध मुखर्जी की सिनेमा यात्रा को याद कर रहे हैं। विराम के बाद आइए बात करते हैं सुबोध बाबू की सबसे बड़ी विशेषता की, किरदारों के भेषांतर यानी मैस्करेड के मनोविज्ञान की। वे किरदारों के इस छद्म रूप और लुका छिपी से कहानियां बुनने के माहिर थे और इसका बेहतरीन उदाहरण उनकी पहली ही फिल्म मुनीम जी में मिलता है, जहां देवानंद एक मुनीम के भेष में अपनी वास्तविकता छुपाते हैं और यही रंग फिल्म पेइंग गेस्ट में भी दिखता है, जहां वे स्वयं अपने ही एक बुजुर्ग अवतार मिर्जा का रूप धरकर पर्दे पर स्वांग रचते हैं। संवादों की यही चुस्ती और शहरी रोमांस का ये शालीन सलीका उनकी पहचान बना, जिसे आज भी मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों में उतनी ही ताजगी के साथ महसूस किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप आइए सुनते हैं

श्रोताओं, 50 के दशक के उत्तरार्ध में सुबोध मुखर्जी की फिल्मों की एक और बड़ी तकनीकी खूबी उभर कर सामने आई, दृश्यों का तेज वेग और अनुशासित रफ्तार, जिसका सीधा संबंध टेनिस खेल के प्रति उनके आजीवन अनुराग से था। वे अपने छात्र जीवन से ही टेनिस के एक बेहद कुशल खिलाड़ी थे और उनका मानना था कि फिल्म की पटकथा में भी वही फूर्ति होनी चाहिए जो टेनिस कोर्ट पर एक मंजे हुए खिलाड़ी के शॉट्स में होती है। इसी खेल भावना और गतिशीलता को उन्होंने साल 1959 की अपनी संगीतमय ब्लॉकबस्टर लव मैरिज में पिरोया, जहां शंकर जयकिशन की जादुई जोड़ी ने भी सुर मिलाए। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये मधुर गीत

साल 1961 में सुबोध मुखर्जी ईस्टमैन कलर टेक्निक में जंगली फिल्म लेकर आए, जिसने हिंदी सिनेमा को उस दौर के गंभीर और उदास मिजाज वाले किरदारों से बाहर निकाला और पर्दे पर जिंदा दिली तथा बेफिक्री के एक नए रंगीन युग की शुरुआत की। उन्होंने शम्मी कपूर के रूप में एक ऐसे ऊर्जावान रिबेल हीरो का आविष्कार किया, जिसकी शैली ने आगे चलकर नासिर हुसैन और मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर मसाला फिल्मों की मजबूत नींव रखी। आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा वो क्रांतिकारी गीत, जिसने शम्मी कपूर को याहू स्टार के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। आप हैं तैयार?

0: रोज कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: साठ के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस की स्थापना की और प्रमाणित किया कि वे केवल एक बेहतरीन निर्देशक ही नहीं बल्कि एक पारखी निर्माता और कुशल लेखक भी हैं। साल 1967 की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी शागिर्द की पूरी मूल कहानी और चुस्त पट कथा स्वयं सुबोध बाबू ने ही लिखी थी, जिसके जरिए उन्होंने अपने भतीजे जॉय मुखर्जी को एक अनूठे कॉमिक अंदाज में पेश किया। 70 के दशक में कदम रखते ही उन्होंने निर्माता के रूप में बदलते समय के नए हुनर को पहचाना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर 1970 में आई फिल्म अभिनेत्री में संगीत के नए कीर्तिमान भी रचे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये सुरीला गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

नमस्कार श्रोताओं, विज्ञापन के बाद आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियांशी भटनागर और कार्यक्रम चल रहा है कलाकार बेमिसाल। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित निर्देशक सुबोध मुखर्जी के सिनेमाई योगदान और उनकी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों को। श्रोताओं, सुबोध बाबू की फिल्मों में जहां एक तरफ याहू का शोर था, वहीं दूसरी तरफ शास्त्रीय रागों की शुचिता के प्रति गहरा सम्मान भी था। जैसे उनके बैनर तले बनी फिल्म शर्मिली का गीत मेघा छाए आधी रात, ये शुद्ध राग पटदीप पर आधारित था। वे सिनेमा के उस महान राजवंश के स्तंभ हैं जिसकी कलात्मक विरासत उनके भतीजे जॉय मुखर्जी से होती हुई आज काजोल और रानी मुखर्जी जैसी प्रतिभाओं के रूप में स्क्रीन को रोशन कर रही है। तो वहीं ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र जैसी आधुनिक फिल्में बनाने वाले निर्देशक अयान मुखर्जी उनके पर भतीजे हैं। आइए इसी बैनर की फिल्म शर्मिली से सुनते हैं सचिन देव बर्मन की।

21 मई 2005 को रक्त कैंसर से लड़ते हुए सुबोध मुखर्जी ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। आज उनकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी परिवार इस महान स्वतंत्रता सेनानी, कानूनविद, बहुमुखी लेखक और युगांतरकारी निर्देशक को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अपनी अद्भुत कलात्मकता और सिद्धांतों से भारतीय सिनेमा का व्याकरण बदलने वाले सुबोध मुखर्जी वास्तव में एक कलाकार बेमिसाल थे। इस कार्यक्रम में आज सुबोध मुखर्जी की जादुई सफरनामे में बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली इक्तिसादी राब्तों को वसत देने के लिए भारत मशरक वस्ता यूरोप माशी राहदारी को मजीद फरोग देने पर मुत्तफिक हो गए हैं। हुकूमत ने सारिफीन, पेशावर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। मरकज ने इबोला बीमारी से मुतासरा मुल्कों से पहुंच रहे या ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी मदरसों में प्रेयर गीत के तौर पर वंदे मातरम को लाजमी करार देने का हुक्म जारी किया है। तमिलनाडु में वजीर आला सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली काबीना में 4 खवातीन वजीरों की इजाफे के बाद वुजरा की तादाद 33 हो गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने तिजारत सरमायाकारी को मजबूत और मुस्तहकम करने और सप्लाई के सिलसिले को बेहतर बनाने की गरज से भारत मशरक वस्ता यूरोप इक्तिसादी कॉरिडोर आईएमईसी को मजीद फरोग देने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने आईएमईसी की अहमियत और जरूरत को तस्लीम करते हुए इसे फरोग देने और इसकी अजसर नौ तश्कील देने से इत्तेफाक किया है ताकि आलमी तिजारत, खुशहाली और राब्तों को बढ़ाया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमईसी को एक अहम राब्ते से ताबीर किया जो यूरोप, मशरक वस्ता और भारत को जोड़ता है और इसके नतीजे में तिजारत, सरमायाकारी और सप्लाई के सिलसिले को बढ़ावा मिलेगा और ये मुस्तहकम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली पहुंचे थे जहां से वो आज सुबह नई दिल्ली वापस आए हैं। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने खुराक और जिरात से मुतालिक तंजीम का एग्रीकोला मेडल वजीर आजम मोदी को दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। जनाब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि जनाब मोदी अनाज की यकीनी फरहमी को मुस्तहकम करने, जिरात की पायदार तरक्की को फरोग देने और गांवों की तरक्की के लिए जो नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं उसे तस्लीम करने के लिए उन्हें इस एजाज से नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी को कल इटली के शहर रोम में खुराक और जिरात से मुतालिक सदर दफ्तर में पुरवकार एग्रीकोला मेडल से सरफराज किया गया था। हुकूमत ने सारिफीन, पेशावर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। दवाओं के पैमानों से मुतालिक मरकजी इदारे CDSCO ने कहा कि कॉस्मेटिक्स इंसानी जिस्म पर सिर्फ घिसने, लगाने या छिड़कने के लिए होती हैं। CDSCO ने कहा कि कॉस्मेटिक की फरोख्त, डिस्ट्रीब्यूशन, दरामदात और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक जाब्तों 2020 की गुंजाइशों के तहत मुंजबित होती है। CDSCO ने मजीद कहा कि कॉस्मेटिक सिर्फ सफाई, खूबसूरत बनाने, जाजिबियत में इजाफा करने और इंसानी जिस्म की जाहिरी शक्ल को बदलने के लिए होते हैं। CDSCO ने मजीद कहा कि कॉस्मेटिक मसनूआत में ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराहकुन दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक लेना कानून और जाब्तों की खिलाफ वर्जी है। सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल ने इबोला बीमारी से मुतासरा मुल्कों से पहुंच रहे या ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक जमहूरिया कोंगो, युगांडा और जुनूबी सूडान समेत ज्यादा खतरा लाहक ममालिक का सफर कर चुके ऐसे अफराद जिन्हें बुखार, सरदर्द, उजलात में तकलीफ, बिना किसी वजह के खून बहने और उल्टी आने जैसी अलामत जाहिर हो रही हैं वो फौरी तौर पर अपना इलाज कराएं। एडवाइजरी ने खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे मुसाफिर जो इबोला के तस्दीक शुदा या मुश्तबा मरीजों के खून या जिस्मानी मादों के सीधे राबते में आए हैं वो इमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले फौरी तौर पर एयरपोर्ट हेल्थ अफसर या हेल्थ डेस्क पर रिपोर्ट करें। मगरबी बंगाल हुकूमत ने तमाम मदरसों में प्रेयर की जगह वंदे मातरम गाना लाजमी करार दिया है। मदरसा तालीमी महकमे ने इस सिलसिले में एक हिदायतनामा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब अकलियती उमूर और मदरसा तालीमी महकमे के तहत आने वाले इदारों में जमातें शुरू होने से पहले तलबा को वंदे मातरम गाना लाजमी होगा जो पहले की रिवायत और रहनुमा उसूलों की जगह लेगा। आसाम की 16वीं कानून साज असेंबली का आज पहला इजलास शुरू हुआ। उबूरी स्पीकर चंद्रमोहन पतोवारे ने ऐवान की सदारत की और नए मुंतखब मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत वाली हुकूमत ने आज अपनी वजारत की तौसी की और रियासत में अब इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई है।
कांग्रेस के दो अराकीन समेत काबीना में 23 नए वुजरा को शामिल किया गया है। हालिया तौसी के बाद वजीर आला सी जोसेफ विजय समेत काबीना में वुजरा की कुल तादाद 33 हो गई है। 6 दहाइयों के बाद रियासती काबीना में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है, जो साल 1967 के बाद पहली दफा तमिलनाडु की वजारत में अपनी नुमाइंदगी कर रही है। नई तौसीशुदा काबीना में 4 खवातीन वजीरों को भी शामिल किया गया है। नए अराकीन को आज सुबह लोक भवन में गवर्नर विश्वनाथ अरलेकर ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफबरदारी की तकरीब में हुकूमत को हिमायत देने वाली इत्तेहादी पार्टियों

0: पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: It is ironic that Pakistan with its long
4: term... ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: टिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकर

0: ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं।
2: बिल्कुल, मैं हूं गौतम और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें

0: कि ये है फोन इन कार्यक्रम, यानी कि अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कोई भी प्रश्न आज के विषय से जुड़ा हुआ, तो आप हमें डायल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज का विषय भी बता दूं मैं आपको। आज का जो विषय है वो भाइयों बहनों किसान उन्मुक्त विस्तार सेवाओं को लेकर है, और अगर आपके जहन में इस विषय से कोई संबंधित सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिल्ली से अगर आप बाहर हैं तो 011 लगाना ना भूलें, उसके बाद 2342-1081, और दूसरा जो लाइन है हमारा वो है 2342-1083 पर हमें कॉल करें और आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और आज बात करेंगे किसान उन्मुक्त विस्तार सेवाएं क्या हैं। तो सबसे पहले यही प्रश्न उठता है और इसी का जवाब जो है एक्सपर्ट हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में कौन है हमारे साथ।
1: बिल्कुल, आज जो हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में वो है डॉक्टर प्रशांत, जो कि अपर आयुक्त हैं प्रसार कृषि एवं किसान मंत्रालय में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: मैं भी सभी किसान भाइयों और बहनों का यहाँ पे आज धन्यवाद अदा करता हूँ, और मुझे बेहद खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल कि ये जो किसान जो है किसान उन्मुक्त सेवाएं,
0: विस्तार सेवाएं
1: है क्या ये?
2: देखिए, भारत सरकार कई योजनाएं किसानों के लिए संचालित कर रही है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि किसानों को का सशक्तिकरण हो, उन्हें प्रशिक्षण मिले
1: जी,
2: उन्हें मतलब एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मौका मिले
1: जी।
2: तो एक हमारी ऐसी योजना है आत्मा योजना, जिसके अंतर्गत हम किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं, और किसान ये कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा ये मिलकर जिला स्तर पे काम करते हैं। आत्मा केवल जिला स्तर पर नहीं, लेकिन उनके ब्लॉक स्तर पर भी जो उनके विस्तार कर्मी है वो प्रत्यक्ष रूप से किसानों को मिलते हैं और उनको बताते हैं कि उनको किस तरीके से प्रशिक्षण का लाभ लेना है। अभी इस आत्मा योजना में किसानों को विविध विषयों पर, जैसे हम जानते हैं कि कृषि में जैसे अभी खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है, मौसम रबी का मौसम जब शुरू होता है, तो उससे जो संबंधित प्रशिक्षण है वही किसानों को उस वक्त उस प्रशिक्षण का लाभ कैसे लिया जाएगा, उस प्रशिक्षण में कैसे उनको सम्मिलित किया जाएगा, इस पर मार्गदर्शन करते हैं
0: जी।
2: इसके अलावा जो एक्सपोजर विजिट है जिसकी मैंने बात करी, तो इसमें भी वो जो अनुसंधान होते हैं कृषि क्षेत्र में
0: जी,
2: तो जो रिसर्च क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं उसको किसानों तक पहुंचाना, तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी किसानों को अवगत कराया जाता है, और इसमें डेमोन्स्ट्रेशन जो होते हैं, प्रदर्शनी हम जिसको कहते हैं खेत स्तर पर, उन डेमोन्स्ट्रेशंस को भी लगाया जाता है खेतों पर, कृषि विज्ञान केंद्र के खेतों में या प्रोग्रेसिव फार्मर्स के खेतों में, और उन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को ये बताया जाता है कि आप इस वैरायटी का चयन कीजिए, आप ये बीज कहाँ से आपको अच्छे उपलब्ध हो सकते हैं, कहाँ से आप खाद खरीद सकते हैं, कितना संतुलित मात्रा में आपको खाद को मतलब यूटिलाइज करना है फील्ड में, और अपने सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपका सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसको हम ये बोलते हैं कि खेत में जो हमारा मिट्टी की उर्वरकता है वो हमेशा ही बढ़नी चाहिए, उसकी मिट्टी की उत्पादकता बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, हमारे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, और जब ये अपने खेत से मृदा की जब जांच कराते हैं तो उससे ये पता चलता है कि उसमें कितनी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है, फॉस्फोरस उपलब्ध है, पोटैश उपलब्ध है, इसका मतलब यह है कि जितनी जरूरत है उतना ही रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, इससे किसानों को की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो जाती है और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है
0: जी। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बात की आत्मा योजना की, तो इसके अलावा और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों को लाभ हो सकता है?
2: इसके अंतर्गत जैसे अभी तो आत्मा योजना के बारे में ही पूरी तरीके से मैंने जानकारी नहीं दी किसानों को
0: जी,
2: क्योंकि इसमें प्रदर्शनी भी जैसे एक दो दिन के फेयर्स भी है वो भी लगाते हैं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। इसके अलावा इसमें फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन हम जिसको बोलते हैं, मतलब वैज्ञानिकों की किसानों के साथ सीधा वार्तालाप
0: जी, जी,
2: तो इसका भी प्रावधान है, तो ये एक बहुत ही अच्छी कड़ी है जिसके मतलब हम जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उसको हम जिसको लैब टू लैंड कहते हैं, हम अनुसंधान को लैब से किसानों के खेत तक पहुंचाने का काम करते हैं।

0: योजना के माध्यम से
1: जी।
0: तो मैं सभी जो हमारे किसान हैं उनसे, किसान भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमेशा ही आत्मा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़े रहे, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में जुड़े रहे और प्रशिक्षण का लाभ ले।
1: जी
2: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे विस्तार सेवाओं की बात कर रहे हैं हम लोग, तो विस्तार सेवाओं से किसानों को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं?
0: देखिए, विस्तार से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अलग अलग योजनाएं हैं भारत सरकार की
2: जी,
0: जिसमें अलग अलग योजनाओं का लाभ कैसे ले। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती है और फसलों का नुकसान होता है, ऐसे में आपको फसल बीमा कराना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा और आपको आपकी फसल का मुआवजा मिल जाएगा
1: जी।
0: तो लेकिन किसानों को इन सब योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता, तो कहाँ से पता करे, कहाँ से जानकारी ले, इसके लिए हम हमेशा ही भारत सरकार प्रयासरत है। तो हमने किसान हेल्पलाइन सेंटर, जिसको हम कहते हैं, और इससे पहले हम इसको किसान कॉल सेंटर बोलते थे, इसमें ये टोल फ्री नंबर जो है 1800-180-1551 1800-180-1551 ये नंबर है
2: जी।
0: तो इस नंबर पर किसान सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हर तरीके की जानकारी, चाहे वो कृषि की हो, चाहे बागवानी की हो, फल फूल सब्जी उत्पादन, या किसी तरीके से आपके फसलों पे कोई अगर कीटक का प्रादुर्भाव होता है
1: जी,
0: तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए कितना आपको फर्टिलाइजर यूज करना है, कहाँ से जानकारी मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता के आपको बीज, अच्छी गुणवत्ता के फर्टिलाइजर्स, अच्छी गुणवत्ता के पेस्टिसाइड्स, आपको प्लांटिंग मटेरियल ये कहाँ से मिलेगा, इस बारे में सारी जानकारी आपको किसान कॉल हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से दी जाती है
1: जी।
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका प्रश्न जान लेते हैं। नमस्कार, हेलो। हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार।
2: हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: लगता है हमारा संपर्क डॉक्टर साहब टूट गया है किसान भाइयों से, तो दोबारा अगर उनका कॉल आता है तो हम लोग एक बार पुनः जाएंगे और अभी जो हमारा विषय है सर उस पे आ जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे आत्मा योजना, उसके बाद आपने कई तरह की योजनाओं का जिक्र किया, तो किसान भाइयों के लिए आत्मा योजना में और मतलब क्या क्या लाभ हो सकते हैं, एक बार विस्तार से थोड़ा।
0: हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक हमारा फार्म स्कूल का भी इसमें प्रावधान है
2: जी।
0: फार्म स्कूल में जैसे यह है कि जैसे आपको कपास की खेती करनी है, तो शुरुआत से मतलब बुआई से लेकर उसके मार्केटिंग तक, मतलब एक फार्म स्कूल के माध्यम से इसके किसानों को जानकारी दी जाती है। फार्म स्कूल में लगभग लगभग 25 से 30 या 30 से 40 किसान एकत्रित होते हैं और समय समय पर, मतलब 3 महीने का ये फार्म स्कूल अगर रहेगा तो इसमें हर 15 दिन में 20 दिन में वहाँ पे वैज्ञानिक भी आएंगे, वहाँ पे रिसोर्स पर्सन आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, प्रगतिशील किसान होंगे और वो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उस एक मतलब फसल के बारे में, जैसे कपास की मैंने बात की
1: जी,
0: धान की मैंने बात की, तो एक फसल के लिए एक फार्म स्कूल होता है जो कि आपको निरंतर 3 महीने तक किसानों को मार्गदर्शन देते रहता है। तो इस तरीके से ये फार्म स्कूल भी बहुत ही एक अच्छा प्रावधान है जिसके माध्यम से हम किसानों तक पहुंचते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आत्मा योजना के अलावा और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं?
0: आत्मा योजना के अलावा जैसे मैंने किसान कॉल सेंटर की बात करी, उसके बाद में एक हमारी और योजना मास मीडिया से सहायता, विस्तार सहायता, ये भी एक हमारी योजना है
1: जी।
0: इसमें हम सारे किसान भाइयों बहनों को ये अनुरोध करेंगे कि जो हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है
2: जी,
0: जो सप्ताह में 3 दिन हमारा कार्यक्रम शाम के वक्त डीडी रीजनल केंद्रास पे आता है जो क्षेत्रीय भाषा में
1: जी,
0: तो इस कार्यक्रम में भी वो अलग अलग विषयों पर जो भी कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम जैसे अभी खरीफ का जो मौसम शुरू होने वाला है, तो खरीफ के मौसम से संबंधित सारे कार्यक्रम आएंगे, तो इससे भी किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में अगर ये आधे घंटे और या 45 मिनट का समय निकालकर अगर सभी किसान भाई बहन अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं तो उससे विशेष लाभ होगा
1: जी।
0: इसके अलावा जो आकाशवाणी है।

0: ऑल इंडिया रेडियो, इस पे भी किसान की बात, ये या किसान वाणी जो कार्यक्रम है, इसके इसका भी रेगुलर वो मतलब उस कार्यक्रम से जुड़े रहे, तो इससे भी किसानों को लाभ होगा। ये भी एक प्रसारक की बहुत अच्छी प्रसार और प्रसार की योजना भारत सरकार की है।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ।
0: जी
1: हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना नाम बताएं।
0: नमस्कार। हाँ जी,
2: हेलो।
1: हेलो, नाम बताएं सर अपना।
2: मेरा नाम राम जी है।
1: जी राम जी, स्वागत है।
2: मैं जैसे अपने खेत में
0: राम जी बताइए,
2: मैं अपने खेत में जैसे सब्जियां उगाना चाहता हूँ, तो उसमें मतलब जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो मैं क्या करना चाहूँ उस पर?
0: आप कहाँ के रहने वाले राम जी?
2: मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ।
0: अच्छा, कानपुर के रहने वाले हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी जिस योजना की बात मैं बता रहा था, आत्मा योजना की, तो ये जिला स्तर पे हमारी एक आत्मा का एक ऑफिस है, कार्यालय है। तो जैसे कानपुर है, कानपुर में भी आपका कृषि विज्ञान केंद्र होगा। कानपुर में आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र होगा। आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे और आत्मा के कर्मचारियों से मिलेंगे और उनको पूछेंगे कि मुझे सब्जी लगाना है और मुझे प्रशिक्षण चाहिए इस पर, तो कौन सी वैरायटीज लगानी है, कौन सी सब्जी हमें लगाने से फायदा होगा, हमारी खेत किस तरीके की है, हमारे पास सिंचाई की क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें जब आप उनको बताएंगे तब वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पर प्रशिक्षण लेना है और इससे संबंधित जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। नंबर एक। नंबर दो, जो मैंने आपको किसान कॉल सेंटर का नंबर दिया, 1800-1801551, आप इस नंबर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा राम जी, मैं आपको और भी बताऊंगा कि इसमें हमने आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शुरू किया है ऐप, जिसको हम कहते हैं ये अपना हम इसको जैसे इसको कहते हैं हम विस्तार, भारत विस्तार। भारत विस्तार में क्या होता है कि एक हम आपको एक नंबर दे रहे हैं जिसका नंबर है 155261, 155261।
3: जी,
0: तो भारत विस्तार में अगर आप इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको एआई बेस्ड भारती से आपकी बात होगी। ठीक है, जब भी आप ये नंबर मिलाओगे और आपको किसानी से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप भारती से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2-3-4 माध्यम से बताया कि जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं।
3: जी, आज हम बात कर रहे हैं किसान उन्मुक्त विस्तार सेवाओं के बारे में। सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहा है?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
7: पर हम तो सभी डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: नीरा, हम किसानों और अत्यंत भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को

0: कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए FAO के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने FAO के एग्रीकोला मेडल के भारत और किसानों को समर्पित किया है, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को और कृषि वैज्ञानिकों को भी समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत की खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, और साथ ही साथ यह सम्मान भारत के करोड़ों किसानों और कृषि के क्षेत्र में जुड़े लोगों का सम्मान है।
1: जी, बहुत ही गर्व का विषय है। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है ये भी एक तरह का वही उद्देश्य है गौतम, कि अधिक से अधिक जानकारी जो है वो किसानों तक पहुंचे और किसान जो है वो खुशहाल रहे। किसान खुशहाल होगा तो देश अपने आप खुशहाल होगा। और जहां तक इस प्रोग्राम का सवाल है, आज का जो हमारा विषय है वो है किसान उन्मुक्त विस्तार सेवाएं, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत और हम बात कर रहे हैं उन्मुक्त विस्तार सेवाओं के बारे में। तो काफी कुछ डॉक्टर साहब आप बता चुके हैं, लेकिन जितना जान लें उतना कम लगता है इन सब के बारे में। तो पहले ही आप जैसे बता चुके हैं कि भारत विस्तार के बारे में आपने बताया, किसान हेल्पलाइन सेंटर के बारे में आपने बताया, किसान कॉल सेंटर में आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं छोटे किसानों की, तो उनको किस तरह का लाभ इन सेवाओं से मिल सकता है और क्या क्या चीजें हैं जो कुछ नया रास्ता दिखा रही हैं?
2: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखो, अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में छोटे किसान जो है वो 85% लगभग है। अब इतने छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही हम मतलब हमारी जो योजना है वो बहुत ही उपयुक्त योजना है। जैसे अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम किसानों को सहायता देते हैं, सहायता राशि के रूप में 6,000 रुपये सालाना उनको दी जाती है, जो कि 2,000 रुपये के 3 किश्तों में उनको दी जाती है। तो इससे उनको काफी फायदा हो रहा है, उनको लाभ हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ये उनको राशि दी जाती है, सहायता राशि, तो उससे वो अपना जो बीज के लिए, अगर किसी बीज के लिए अगर उनको पैसा खर्चा करना है, या खाद के लिए, या कीटकनाशकों के लिए, या जो भी कृषि क्षेत्र में उनको जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है उससे रिलेटेड अगर उनको खर्चा करना है, तो उसके लिए उनको इस सहायता का काफी, उनकी इस सहायता की मदद होती है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इस योजनाओं से जुड़े कैसे? तो इसीलिए जो विस्तार सेवाएं हैं, जैसे हमने बताया कि आत्मा के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से, भारती के माध्यम से, जो विस्तार, ये भारत विस्तार योजना है हमारी, उसके भारत विस्तार का जो ऐप है, इसके माध्यम से ये किसान तमाम तरीके की जानकारी आज अभी मल्टीपल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी,
2: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे किसान उन्मुक्त विस्तार सेवाओं की तरफ से अगर कोई किसान प्रशिक्षण लेना चाहे तो कैसे, प्रशिक्षण के क्या समाधान है उसमें, कैसे ले सकता है?
2: देखो, प्रशिक्षण जो है वो एक दिन का प्रशिक्षण, या 2 दिन का प्रशिक्षण, या 3 दिन का प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण हमेशा ही चलते रहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। ये प्रशिक्षण जो किसानों के जो छोटे छोटे फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स है वहां पर भी चलते रहते हैं। तो जहां पर भी इन प्रशिक्षण, और जो हमारी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, कृषि विश्वविद्यालय, उनके जो रीजनल सेंटर्स है, उनके सेंटर्स है, वहां पे भी ये प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण किया जाता है।
0: बिल्कुल।
2: तो इन सब प्रशिक्षण का किसानों ने लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जो किसानी है, किसानी तकनीकी तरीके से अगर किया जाए, उसमें चाहे वो तकनीक बीज की हो, बीज उपचारण की हो, चाहे वो कीटकनाशक के छिड़काव की हो, हर तरीके की टेक्नोलॉजी, इवन जो किसान छोटे छोटे हमारी मशीनरीज है, छोटे छोटे खेतों में लगने वाले छोटे छोटे मशीनरीज, उन यंत्रों का किस तरीके से उपयोग करना है, तो इन सब अगर हम जो आधुनिक तंत्रज्ञान जो है इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो किसानों को निश्चित ही इससे फायदा होगा। उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो लागत है किसानी में, वो कम होगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। मैं एक और जानकारी किसानों को देना चाहूंगा कि केवल कृषि से आमदनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि साथ ही में मत्स्य पालन हो गया, या पशुपालन हो गया, या मधुमक्खी पालन हुआ।

0: जी,
1: तो इसकी भी तमाम संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ बागवानी। तो कृषि के साथ में अगर हम इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के माध्यम से अनेक तरीके की गतिविधियां करने से किसानों की आमदनी में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। तो इन सभी तरीके से ये एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है
2: जी। डॉक्टर साहब, जैसे किसी किसान भाइयों को मौसम संबंधी जानकारी चाहिए, तो विस्तार उन्मुक्त विस्तार, जो कृषि उन्मुक्त विस्तार है, वहां पे क्या व्यवस्था है उसके लिए?
1: देखिए, मौसम आधारित जो जानकारी है वो आजकल ये अपने किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ जाके वैज्ञानिकों से मिले, और ये जो IMD का हमारा ऐप है
2: जी,
1: जो कि वेदर बेस्ड एडवाइजरी जारी करते हैं, तो वो कहाँ से उनको मिले? इसलिए अगर वो ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, तो उनको सारी जो वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उनके मोबाइल फोन पर आ जाएगी कि किस दिन कैसा मौसम रहेगा, आने वाले एक सप्ताह में कैसा मौसम रहेगा, आने वाले 15 दिन में कैसा मौसम रहेगा, उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। और डिजिटल तकनीक कैसे किसान भाइयों को अपग्रेड कर सकती है, नई नई जानकारियों से अवगत करा सकती है?
1: देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी की जिसकी हम बात करते हैं, इसी की जानकारी मैंने आपको दो तरीके की जानकारी अभी मैंने दी है। एक तो आप ऐप के माध्यम से, जो कि आपका स्मार्टफोन है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के माध्यम से आपको सारी एडवाइजरीज मिलती रहेगी। दूसरा, ये जो मैंने भारत विस्तार की बात की है और जिसका मैंने नंबर आपको दिया है 1552611551261, ये भी AI बेस्ड, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो AI बेस्ड ऐप है
0: जी।
1: तो ये भी डिजिटल एग्रीकल्चर का ही माध्यम है
2: जी।
1: इसके अलावा जो जैसे आपने हमें पूछा था कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्या भारत सरकार की योजना या किस तरीके से योजनाओं का लाभ वो ले सकते हैं
0: जी,
1: तो इसमें मैं आपको एक बताऊंगा कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि अभी हम फार्मर ID जो है वो बनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे राज्य में सारे किसानों की फार्मर्स ID बने। फार्मर ID अगर किसानों की बन जाती है तो एक छोटे से कार्ड में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी कि उनके पास कितनी जमीन है, जमीन की उर्वरकता कैसी है, कितने वहां पे खाद की जरूरत है तो उतने ही खाद का उपयोग किया जाए, और उनके जो रिसोर्सेस है उसकी भी सब उसमें जानकारी रहेगी। तो फार्मर आईडी के माध्यम से उनको क्रेडिट फैसिलिटी, अगर उनको बैंक से लोन लेना है तो बैंक का मतलब अपना फार्मर आईडी दिखाकर वो बैंक से लोन भी बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना तो ये भी सब डिजिटल एग्रीकल्चर के ही प्रावधान है जो कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, जैसे आप बार बार बात हो रही है भारत विस्तार की और आपने नंबर भी 2-3 बार बताया है हमारे कॉलर्स को, तो एक चीज यहां जो है वो है, जैसे आपने कहा कि भारती से संवाद होगा, जैसे ये नंबर डायल होगा तो भारती से संवाद होगा, यानी कि जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो भारती द्वारा आपको आप तक पहुंचेगी। लेकिन यहां एक चीज और भी है कि अगर हम भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल होगा, किस तरह से वो जानकारी उन तक पहुंचेगी, समझ में आएगी या नहीं आएगी, है ना?
1: ये सवाल भी आपने बहुत अच्छा पूछा है, तो मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूं, मुझे बहुत प्रसन्नता है बताते हुए कि हम इसको स्थानीय भाषा में भी इसकी जानकारी उनको मिलेगी, मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम कोशिश अभी कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में, लगभग सभी भाषाओं में इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि किसानों को अलग अलग भाषाओं की जानकारी चाहिए होगी, तो इसका भी ध्यान रखा गया है।
2: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी हम लोग फार्मर आईडी की बात कर रहे थे, तो अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनाना हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे बना सकते हैं?
1: देखिए, फार्मर आईडी बनाने के लिए वो तो अपने जो जिला या ब्लॉक स्तर पे जो हमारा एग्रीकल्चर का जो कृषि का जो विभाग का जो हमारा अमला है, विभाग है, वहां पर जाके अधिकारियों से मिल सकते हैं। दूसरी जो मैंने आत्मा योजना जो बताई, तो आत्मा के कार्यालय में वो जा सकते हैं और वहां पे हमारे जो प्रकल्प अधिकारी जो है, आत्मा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हम जिनको बोलते हैं, परियोजना निदेशक, उनसे मिल सकते हैं या डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिल सकते हैं। इसके अलावा वो जो ब्लॉक स्तर पर हमारे ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर है, BTM हम जिनको कहते हैं, उन BTM के माध्यम से भी वो जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जिसको हम ये कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र में जाके वैज्ञानिकों से भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे माध्यम है कि वो जाकर वहां पे, या कम्युनिटी सेंटर जो है, कम्युनिटी सेंटर में भी उनको आजकल मार्गदर्शन किया जा रहा है,

0: तो ये बहुत अच्छे ऐसे साधन है। इसके अलावा हमारे जो एफपीओ योजना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के भी प्रशिक्षण की पूरी मतलब प्रावधान है, तो वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा सकते हैं। जिन किसानों ने इसका फायदा लिया हो या जिनकी फार्मर आईडी बनी हुई हो, वो ऐसे प्रगतिशील किसानों को भी पूछ सकते हैं कि फार्मर्स आईडी को कैसे बनाना है। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो है 1800 180 1551, ये जो नंबर है किसान कॉल सेंटर या किसान हेल्पलाइन सेंटर का, इसमें वो फार्म टेली एडवाइजर से बात कर सकते हैं
1: जी।
0: तो वो उनको मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे उनको फार्मर आईडी बनानी है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, कृषि विज्ञान केंद्र का यहाँ जिक्र हुआ तो उसकी भूमिका भी जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ किसान उन्मुख जो सेवाएं हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: देखिए, हम मतलब पूरी कोशिश यही है कि किसानों को जानकारी समय पर मिले
1: जी,
0: और उनको केवल समय पर जानकारी नहीं बल्कि उनको सही जानकारी मिले। तो इसलिए जो हमारे जो प्रोग्राम्स है, जैसे मैंने मास मीडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो स्कीम बताई, मास मीडिया जिसके माध्यम से हम आकाशवाणी पर जो कार्यक्रम आ रहे हैं, हमारे दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से रीजनल सेंटर पे जो हमारे कार्यक्रम आ रहे हैं, उससे वो हमेशा ही जुड़े रहे। इसके अलावा हमारे जो डेमोन्स्ट्रेशन लग रहे हैं, जो आत्मा के माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र के खेत पर डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं या प्रगतिशील किसानों के खेत पर जो डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं, उस डेमोन्स्ट्रेशन को हमेशा देखे कि किस तरीके से उस योजना, उस जो वैरायटी का कैसे लाभ हो रहा है। कोई एक हाई यील्डिंग वैरायटी है बीज की, धान की जैसे मैं बता रहा हूँ, उसको किस तरीके से उसका मतलब यील्ड कितना ज्यादा मिलेगा, किस तरीके से उसको हम लगा सकते हैं अपने को, उसके बीज कहाँ से उपलब्ध होंगे, ये सारी जानकारी उनको वहां से मिल सकती है।
2: बिल्कुल
1: जी।
0: और हमेशा ही वो जुड़े रहे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में, आत्मा के साथ में, और हमेशा ही जुड़े रहे। ये किसान कॉल सेंटर या किसान हेल्पलाइन सेंटर है, इससे जुड़े रहे। इसके अलावा जो farmerswelfare.gov.in ऐसी जो वेबसाइट्स है मंत्रालय की, जहाँ पे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, उस वो फार्मर्स वेलफेयर की वो वेबसाइट पे जाए और सारी जानकारी हासिल करे
1: जी।
2: डॉक्टर प्रशांत, आप स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से जानकारी दी आपने हमारे किसान भाइयों बहनों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी किसान भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। प्रोग्राम को यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, भरपूर जानकारी के साथ। तब तक के लिए
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने माना कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोप, मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है। इसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा इनका प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नई मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोक भवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लिकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने इन नए केंद्रों के लिए आवेदन किया है। झारखंड के रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया। इनमें 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to cooperate on IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. In a joint press conference with Prime Minister Modi in Rome, Italian Prime Minister Giorgia Meloni described IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the Middle East and India with

0: का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव हम मना रहे हैं और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसी आवाजें भी सुनने का अवसर मिल रहा है जिन्होंने आकाशवाणी को और समृद्ध किया है अपनी मेहनत से, अपने कार्यकाल के दौरान और अपने नए नए विचारों से। आकाशवाणी के संग यादों के रंग। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। आप आकाशवाणी दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं और विभिन्न केंद्रों पर महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां आपने संभाली हैं। लक्ष्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो।
1: धन्यवाद नीलम जी, धन्यवाद।
0: जब मैं आपका परिचय दे रही हूं और बता रही हूं कि यहां पर आप स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, तो एक विचार मेरे मन में आता है कि मुझे आपके अंडर काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन धन्यवाद इस कार्यक्रम को कि आज आपसे बात करने का अवसर मुझे मिल रहा है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आकाशवाणी की प्रथम स्मृति आपके मन में क्या है।
1: देखिए, जहां तक आकाशवाणी का प्रश्न है, अगर स्मृति की बात करें तो मेरे ख्याल में मैं 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ता था
0: जी।
1: तब मेरे घर में पहली बार रेडियो खरीदा गया था, तब मैंने पहली बार रेडियो क्या होता है, कैसा होता है, वो सुनना शुरू किया और अनुराग रेडियो के प्रति विकसित हुआ। लेकिन मूल रूप से जो रेडियो से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ, एक वार्ताकार के रूप में कहना चाहिए
0: जी।
1: मुझे आज भी याद है, वर्ष 1969 में तब मैं भोपाल के राजकीय हमीदिया कला वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए का छात्र था
0: जी।
1: और पहली बार आकाशवाणी भोपाल में
0: जी,
1: नई उमंग नई तरंग, इस ढंग से आकाशवाणी भोपाल से वो कार्यक्रम प्रसारित होता था। और पहली बार मेरी जो वार्ता कहिए या जो विचार कहिए, वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में
0: जी
1: प्रसारित हुए थे। जनवरी वर्ष 1969 में ये मेरा पहला जुड़ाव शुरू हुआ और उसके बाद आकाशवाणी भोपाल के एक वार्ताकार के रूप में, और एक वार्ताकार के रूप में ही नहीं बल्कि ऑडियंस रिसर्च यूनिट में एक सर्वेयर के रूप में भी
0: जी
1: मेरे को आकाशवाणी से जुड़ने का सौभाग्य मिला। और चूंकि समाजशास्त्र मेरा विषय था और मैं ये आज भी मान के चलता हूं कि आकाशवाणी ही नहीं, रेडियो ही नहीं, जनसंचार माध्यम के जितने भी साधन हैं, मूल रूप से वो समाज के विषय हैं
0: जी।
1: क्योंकि वो समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए समाज शास्त्र में उनका विशेष रूप से महत्व है। तो वही आगे चलकर विकसित होता रहा। मैंने किताब भी लिखी जनसंचार का समाज शास्त्र बाद में। वर्ष 1976 में जब आकाशवाणी का विकास हुआ अलग अलग केंद्रों में, तब एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया और मेरी जो ज्वाइनिंग हुई वो आकाशवाणी रायपुर में सबसे पहली बार ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में हुई। फिर 1982 में यूपीएससी से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के रूप में, 1990 में यूपीएससी से स्टेशन डायरेक्टर के रूप में मेरी ज्वाइनिंग हुई और मैं जबलपुर, जलंधर, भोपाल, इंदौर और जो अभी आपने आकाशवाणी दिल्ली की चर्चा की
0: जी,
1: तो मुझे जहां तक याद पड़ता वर्ष 2002, 2003, 2004 मेरे को सौभाग्य मिला आकाशवाणी दिल्ली में काम करने का और यहां आकर मैंने बहुत कुछ सीखा
0: जी।
1: और आकाशवाणी का जो मूल रूप से काम है या आकाशवाणी ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया है समाज को, लोग कहते हैं ज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन, ये तो हमारे साधन है ही, लेकिन आकाशवाणी ने समाज में एक नए आजाद हुए देश में
0: जी
1: धारणा के निर्माण का सबसे बड़ा कार्य किया और यहाँ की जनता को ये समझाया, जनता के बीच में एक धारणा विकसित की कि हमें अपने देश के विकास के लिए स्वयं मेहनत करना है, स्वावलंबी बनना है और राष्ट्रीय भावना का विकास करना है, वो आकाशवाणी ने विकसित की। और इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस देश के विकास में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान
0: जी। तो हम कहते हैं कि जो मजबूत नींव होती है, उस नींव को मजबूत करने में आकाशवाणी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
1: जी बिल्कुल
0: जी। आपकी पसंद का एक गीत,
1: अगर आप मेरी पसंद का गीत, तो मेरे को लगता है सतीश भाटिया जी की हमें चर्चा करना चाहिए। सतीश भाटिया जी का आकाशवाणी में बहुत योगदान रहा है, तो उनका बूंजो बन गई मोती का एक गीत है, ये कौन चित्रकार है, ये सतीश भाटिया जी को एक हमारी श्रद्धांजलि भी होगी।
0: जी बिल्कुल।

0: मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा कि आपकी शुरुआत ट्रैक्स के रूप में हुई
1: जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: और ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव कार्यक्रम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये बताएं कि आपके समय में कार्यक्रम तैयार करना कितना चुनौतीपूर्ण होता था, क्योंकि तकनीक में लगातार सुधार हुआ है, बेहतर चीजें आज हमारे पास हैं, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी मेहनत पर, तो कैसे आप कार्यक्रम तैयार करते हैं?
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। 1976 में जब मैंने ज्वाइन किया था
0: जी,
1: उस जमाने में हम लोग चाहे किसी भी पोस्ट में थे
0: जी,
1: हम सभी कार्यक्रम निर्माता थे
0: जी,
1: और हम सभी को इस बात का अवसर मिला था कि हम कार्यक्रमों का निर्माण करें, और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी पड़ती थी
0: जी।
1: अनुशासन बहुत पक्का था। आपकी बात से मेरे को याद आया, मेरे साथ ही घटा हुआ एक प्रसंग, आकाशवाणी रायपुर का प्रसंग आपको बताता हूँ। मैंने 1976 में ज्वाइन किया एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव
0: जी,
1: और तब हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे हेमेंद्र नाथ जी, बहुत गुणी स्टेशन डायरेक्टर थे, बहुत सिखाया उन्होंने, गुरु थे वो। तो बहुत थोड़े ही अरसे बाद वहां से युवाणी कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित होने लगा, और उन्होंने मुझे इसलिए युवाणी कार्यक्रम का इंचार्ज बना दिया, जबकि मैं ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव था। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि कोई युवा इसका इंचार्ज बने, ताकि वो युवा भावना से काम करे। तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, तो हमारा एक कार्यक्रम था सवालों के आईने में। मैं ये आपको बता रहा हूं कि उस जमाने में किस ढंग से जिम्मेदारी से काम किया जाता था। तो सवालों के आईने में कार्यक्रम में क्या होता था कि उस कार्यक्रम में हम श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से 5 प्रश्न देते थे, और उनसे ये निवेदन करते थे कि आप पोस्ट कार्ड पे इनके सही उत्तर लिख के भेजें। बुधवार को वह कार्यक्रम होता था, और अगले बुधवार को हम उनके सही उत्तर बताएंगे
0: जी,
1: और सही उत्तर जो बताएगा उसके नाम बताएंगे। अब मैंने एक प्रश्न उसमें रखा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताइए। अब जब उसके उत्तर आए तो 2-4 उत्तर को छोड़ के सारे उत्तर गलत थे
0: जी।
1: तो हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ, ये सब लोग कैसे गलत बता रहे हैं
0: जी।
1: बहरहाल हमने सही उत्तर जो था वो बता दिया बुधवार को। बृहस्पतिवार के अखबारों में, वो जमाना ऐसा था जब आकाशवाणी पर बहुत कड़ी दृष्टि रहती थी, खासकर अखबारों की, समाचार पत्रों की, तो उसमें बकायदा

प्रथम पेज पे एक वो था कौन सही है, आकाशवाणी रायपुर या भूगोल की किताबें। अब जब मैं पहुंचा ऑफिस 10 बजे, मेरे ख्याल में मॉर्निंग ड्यूटी थी, मेरी मॉर्निंग ड्यूटी के बाद, तो मेरे को अच्छे से याद है एक मलयाली सज्जन थे, स्टेनो मित्र भी थे, तो चोपड़ा जी इधर आइए क्या हो गया, आपके नाम मेमो है।

0: तो वो पेपर की कटिंग लगी थी और उसमें था कि आज 2 बजे तक एक्सप्लेनेशन कॉल दीजिए आप
1: जी
0: कि कौन सही है। आपने ये उत्तर दिया है और भूगोल की किताब में ये उत्तर दिया गया है। अच्छा, वो शशि जो थे वो हम उम्र थे, वो बहुत चिंतित थे बेचारे कि अभी इनकी नई नौकरी है, प्रोबेशन भी पूरा नहीं हुआ है, क्या होगा। तो मैंने उससे कहा, शशि आप चिंता नहीं करिए, अगर हमने ये उत्तर दिया है तो हमने सही उत्तर दिया है और हमारे
1: जी
0: पास इसका प्रमाण है। ठीक है, तो मैंने अपना जो स्पष्टीकरण था वो लिख के स्टेशन डायरेक्टर साहब को दे दिया। अब देखिए हुआ क्या था कि जब वो भूगोल की किताबें छपी थी तो उसमें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो वर्ग मील में दिया गया था।
1: जी
0: अब जब उसको सुधार किया गया तो वर्ग मील की जगह तो वर्ग किलोमीटर कर दिया गया,
1: जी
0: आंकड़े वही के वही रखे गए।
1: जी
0: तो नेचुरल है, अब वो
1: वो गलत हो गया
0: गलत
1: फिर।
0: हो गया। वो
1: जी
0: यहां मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि वो जमाना ऐसा था, जब मैंने अपना जवाब दिया मीटिंग में तो स्टेशन डायरेक्टर ने ये कहा कि लक्ष्मेंद्र आप वेट करेंगे थोड़ी देर। मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा, मीटिंग खत्म हो गई। उसके
1: जी
0: बाद में कॉल बेल बजाई और बोले इनको एक चाय पिलाइए इनाम में।
1: जी
0: अब वो बहुत बड़ी बात थी कि आप
1: बिल्कुल
0: स्टेशन डायरेक्टर के कमरे में एक कप चाय पी रहे हैं।
1: जी
0: पर मेरा मतलब यहां सिर्फ कहने का यह है, क्योंकि जब मैंने उस सवाल का चयन किया था और उसका उत्तर ढूंढा था तो मैंने बकायदा जो जिला सांख्यिकी विभाग था,
1: जी
0: उस जमाने में ये गाड़ियां वाड़ियां नहीं मिलती थी, अपनी साइकिल पे आना जाना पड़ता था। मैं बकायदा उस ऑफिस गया था, जिला सांख्यिकी अधिकारी से मिला था, उन्होंने पुस्तिका निकलवाई थी और उस पुस्तिका से वो आंकड़े हमें नोट कराए गए थे और वो सही आंकड़े। तो
1: जी
0: हमने उसका उत्तर दिया कि हमारे आंकड़े सही है। और बकायदा ऐसा नहीं है, हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब ने जिस अखबार में छपा था उनके संपादक महोदय को फोन किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि हमारे लड़के ने गलत काम नहीं किया है, आप किसी को दोष मत दीजिए, पर कल इसका भूल सुधार छापिए।
1: जी
0: यहां मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है नई पीढ़ी को भी कि अगर आप आकाशवाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया याद रखें आपके भरोसे पे बहुत से लोग परीक्षाएं भी देते हैं,
1: जी
0: बहुत से लोग अपनी जानकारियां, और वो ये मान के नहीं चलते हैं कि ये सोशल मीडिया पे जानकारी आई है या और किसी मीडिया पे आई है, वो ये मान के चलते हैं कि आकाशवाणी से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उन्हें विश्वास है आकाशवाणी पे, इसलिए ये आंकड़े सही होना चाहिए। तो ये
1: जी
0: वो युग था नीलम जी।
1: जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग आकाशवाणी पर जो समय बताया जाता है उसी से अपनी घड़ी भी मिलाते थे, ये
0: दुरुस्त
1: भी
0: कह रहा
1: हमने
0: हूँ।
1: सुना है।
0: जी
1: जी
0: जी जी जी
1: अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप श्रोताओं को सुनवाना चाह रहे हैं
0: जी
1: इस
0: जी
1: समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको, हम चूंकि आकाशवाणी दिल्ली में बैठे हैं
1: जी
0: और पंडित रविशंकर जी को याद ना करें, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी,
1: जी
0: देखिए आकाशवाणी के हमारे दो बड़े कलाकार ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, उनमें पंडित रविशंकर जी एक हैं, भूपेन हजारिका
1: जी
0: एक हैं,
1: जी
0: दोनों को भारत रत्न से विभूषित किया गया है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम पंडित रविशंकर जी का गोदान फिल्म का गीत
1: जी
0: जो है,
1: पीपरा के पथवा पे
0: हाँ
1: डोले रे
0: वो अगर
1: जी
0: हम
1: रा।
0: श्रोताओं को
1: जी
0: सुना, क्योंकि उसकी एक खास बात और भी है। पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई जब मैं यहाँ आकाशवाणी से दिल्ली में स्टेशन डायरेक्टर था, तो मैं उनके निवास पे मिलने गया था।
1: अच्छा आप मिले हैं
0: हाँ,
1: उनसे।
0: उनसे मैं
1: जी
0: मिला, उनके निवास पे मिला, और वो जितनी देर बात करते रहे वो यहाँ के स्टूडियो, यहाँ के आर्केस्ट्रा, यहाँ के अपने पुराने साथियों के बारे में ही मुझसे पूछते ताछते रहे, इतना
1: जी
0: प्रेम था उनको आकाशवाणी से। तो वो गीत श्रोताओं को सुनाते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल।
2: पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि ही यारा में उठे ते हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आई

0: और इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग, और आज यादों के रंगों को ताजा कर रहे हैं हमारे साथ लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। आप आकाशवाणी दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं और विभिन्न केंद्रों पर महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां आपने संभाली, और आज आपके बहाने हम भी आकाशवाणी का बीता वक्त फिर से जी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी लक्ष्मेंद्र जी, जब आपका सिलेक्शन हुआ आकाशवाणी में, बाकी के जो भी पद होते हैं, जो भी विभाग होते हैं, उनके बारे में लोगों को कुछ जानकारी पहले से होती है। आकाशवाणी एक ऐसा विभाग है जिससे सबका मन का रिश्ता तो है, लेकिन कार्य प्रणाली क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब आपने किसी को भी आप बताते थे कि आकाशवाणी में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या प्रतिक्रिया उनकी रहती थी?
1: आकाशवाणी का बहुत सम्मान था नीलम जी
0: जी।
1: और मैं आपको एक और अपने श्रोताओं को भी बात बताना चाहूंगा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिस साल मेरा आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हुआ था, उसी साल मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी चयन हुआ था
0: जी।
1: क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा मैं पहले दे चुका था, तो मैंने तय ये किया कि आकाशवाणी एक सामाजिक सांस्कृतिक सेवा करने का विभाग है और बेहतर हो कि मैं आकाशवाणी में ही कंटिन्यू करूं
0: जी।
1: और आकाशवाणी का समाज में बहुत सम्मान था, और माता पिता ने भी मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं, आपका आकाशवाणी में तुम्हारा हुआ है
0: जी,
1: तो तुम आकाशवाणी की ही सर्विस को कंटिन्यू करो। आकाशवाणी एक बहुत ही भावनात्मक रूप से भी इंसान को जोड़ता है, संगीत, संस्कृति, सामाजिक समस्याओं को लेके, इन सारी चीजों को लेके आकाशवाणी लोक संगीत के संरक्षण में, संगीत के संरक्षण में, साहित्य के संरक्षण में, तो और सबसे बड़ी चीज ये है जो मैंने अपने पूरे जीवन भर, मैंने एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आकाशवाणी में ज्वाइन किया और एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन से रिटायर हुआ
0: जी,
1: किसी ढंग का दबाव, जनता के दबाव को छोड़ के, श्रोताओं के दबाव को छोड़ के
0: जी,
1: किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात
0: जी। आपने अभी जिक्र किया कि श्रोता जो है वो चिट्ठियां लिखते थे, सवालों के जवाब भी देते थे और कार्यक्रम भी खूब सुने जाते थे। कोई बड़ी घटना आपको याद आती है उस समय की, किसी बहुत बड़े कलाकार का इंटरव्यू किया हो, या फिर किसी ने कमेंट किया हो, या कोई कार्यक्रम जो है उस पर बहुत विशेष चर्चा हुई हो? जैसे अभी आपने कहा कि आपातकाल का समय था, उस वक्त चल रही थी नौकरी, तब अलग तरह की कठिन परिस्थितियां थी, तो इसके अतिरिक्त कोई ऐसी घटना?
1: मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जो आकाशवाणी के श्रोताओं से ही संबंधित है
0: जी।
1: आकाशवाणी रायपुर मैंने एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा यूपीएससी से सिलेक्शन हो गया, मैं जगदलपुर चला गया
0: जी।
1: जगदलपुर में मैंने 4 साल आदिवासी अंचल में काम किया, आदिवासी क्षेत्र में, और आदिवासी क्षेत्र में काम करने का एक ये मेरे को नया अनुभव ये हुआ कि आकाशवाणी का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, जन जन की समस्याएं सुलझाना भी है। उसी दौर में जगदलपुर में खूनी पेचिश की बीमारी फैल गई
0: जी,
1: तो जो बाकी जनसंचार माध्यम थे उन्होंने तो चिकित्सकीय सेवाओं की आलोचना, प्रशासकीय सेवाओं की आलोचना, ये सब शुरू की
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में ये आया कि सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये बीमारी आदिवासी क्षेत्रों में क्यों फैल रही है। भाई जगदलपुर में तो नहीं फैली, जगदलपुर तो शहर है
0: जी,
1: ये गांव में क्यों फैल रही है? तो वहां पर एक मेरे मित्र थे और वो बस्तर के ही रहने वाले थे, अभी भी बस्तर में रह रहे हैं, असिस्टेंट एडिटर थे हमारे डिपार्टमेंट में, मायाराम नेताम, और गोंडी। तो मैंने मायाराम जी से बात की, और मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, और मैंने मायाराम जी से कहा कि मायाराम जी आप तो बस्तर के रहने वाले हैं
0: जी,
1: हमारी ड्यूटी है कि हम इस बात का पता करें कि भाई ये बीमारी यहाँ के गाँव में ही क्यों फैल रही है। तो मायाराम जी सहमत हुए, तो मैंने कहा अगर आप मेरा साथ दें तो अपन उन गांव में चलते हैं और उस गांव में चल के अपन खोजबीन करते हैं,
0: जो कि बहुत ही साहस का काम था क्योंकि बीमारी फैली हुई थी वहां पर।
1: अब मेरे को अभी तक याद है, एक कुंडू करके ड्राइवर थे, बड़ा यंग लड़का था, हेमनारायण पात्रो स्टेशन डायरेक्टर थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, उनसे मैंने डिस्कस किया, वो बड़े खुश हुए, बोले हाँ ठीक है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि एक नदी है, उस नदी पे पुल नहीं है, तो आप छोटी छोटी नाव बांध के उस पे जीप चढ़ाई जाएगी और नाव से उस पार हमें जाना पड़ेगा। अब मेरे को क्या लगा कि कुंडू जो है वो शायद मना कर दें कि भाई ड्राइवर है वो, कि भाई मैं तो नहीं। कुंडू से मैंने पूछा, भाई कुंडू क्या किया जाए? बोले सर जैसा आप कहें वैसा करते हैं। तो मैंने कहा चलते हैं उस पार के गांव में। अब वहां जाके हमें बात समझ आ गई कि बरसात का जो पानी है वो जमा हो जाता है वहां नालों में, और वही पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, और चूंकि आदिवासी भाई उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी उनको खूनी पेचिश्की हो जाती है। तो हमने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की
0: जी।
1: और रिकॉर्डिंग करके हम वापस जगदलपुर आए। उसके बाद में जाकर वहां पर कमिश्नर जो थे तो उनसे जाके मिले, हमने उनको सुनाया। उन्होंने हमसे कहा कि आप चिकित्सकों से करिए। हम जाके वहां महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर था, वहां जाके उनके डॉक्टर्स से मिले। उन्होंने हमें ये सुझाव दिया कि इसका एक ही हल है कि आदिवासी भाइयों को पीने का स्वच्छ पानी मिले। हम वो सुझाव लेके कमिश्नर साहब के पास दोबारा गए। उन्होंने पीएचई के कमिश्नर साहब को बुलाया, मिस्टर दुबेद कमिश्नर थे। हम लोगों की मीटिंग हुई आकाशवाणी के साथ, और तय हुआ कि इतना फंड दिया जाएगा और वहां पे नलकूप खोदे जाएंगे, और उन गांवों में वो नलकूप खोदे गए, और अगले साल से वो बीमारी वहां से खत्म हो गई। जनता की समस्याओं को प्रशासन तक या विशेषज्ञों तक पहुंचाने का काम ही जनसंचार माध्यमों का है, और चूंकि आकाशवाणी सबसे सहज सुलभ सबसे सस्ता
0: जी,
1: बस एक हिम्मत की जरूरत है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि रेडियो का सबसे बड़ा योगदान एक पुल के रूप में है
0: जी,
1: जो कि हमारी आम जनता की समस्याएं प्रशासन तक ना सिर्फ पहुंचाता है बल्कि उसका हल भी ढूंढता है, और उसको आगे वो काम ठीक चल रहा है कि नहीं इस पर भी निगरानी रख
0: जी।
1: तो ये एक घटना है जो याद रहती जीवन में, और ये लगता
0: बहुत
1: है
0: प्रेरक घटना है, और हाँ, अच्छा कि आपने ये हमारे साथ साझा
1: किया। ये लगता है कि एक किस्म की सोशल सर्विस है ये।
0: जी बिल्कुल, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
1: बहुजन सुखाय जी,
0: हैं,
1: जी तो बिल्कुल बिल्कुल
0: काम से।
1: देखिए महात्मा बुद्ध का है ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसी मोड़ पर मैं आपकी पसंद का एक और गाना,
1: हाँ मैं आपको एक गीत अब सुनवाना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को। हमारी मित्र हैं छाया गांगुली
0: जी।
1: छाया गांगुली की विशेषता

0: एक आकाशवाणी में विविध भारती में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी रही हैं। मेरे साथ दूरदर्शन में भी उन्होंने काम किया है
1: जी।
0: गमन में संगीत जयदेव जी का, मखदूम साहब की वो है एक गजल, आपकी याद आती रही
1: जी,
0: उस पर उनको अवार्ड भी मिला था। मैं ये चाहूंगा कि हमारे श्रोता ये समझें, जैसे उन्होंने पंडित रविशंकर जी का उदाहरण दिया है
1: जी,
0: कि छाया जी जो आकाशवाणी की ही है हमारी अपनी, उनकी गजल सुनी जाए
1: जी। बिल्कुल।

0: तो आपकी याद आती रही रात भर, लेकिन दिन में भी यादों के रंग हम ताजा कर रहे हैं अब आकाशवाणी के संग यादों के रंग कार्यक्रम में। और हमारे आज अतिथि हैं लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। मैं अब ये जानना चाहूंगी लक्ष्मेंद्र जी, आप बदलता हुआ वक्त देख रहे हैं, आपने जब ज्वाइन किया था आकाशवाणी, आपके अंडर जिस तरह के काम हुए जिनमें आप भी शामिल रहे, और आज जिस तरह के कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया का भी एक प्रभाव हम कई बार देखते हैं। आप इस प्रभाव को मीडिया पर किस तरह से देखते हैं और आकाशवाणी पर कैसे देखते हैं?
1: सोशल मीडिया को लेकर मैं कुछ निराश हूं जी, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, और धीरे धीरे सोशल मीडिया आम जनता का विश्वास खोता जा रहा है
0: जी,
1: क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी जानकारियां आती हैं जो सिर्फ इसलिए आती कि लाइक हमें मिलती रहे
0: जी,
1: और वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, सिर्फ आकाशवाणी नहीं कहूंगा मैं, जनसंचार माध्यम या मीडिया में हमारे पुरखों ने जो काम किए
0: जी
1: वो और अधिक महत्वपूर्ण काम किए गए। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया में हर काम गलत हो रहा, सोशल मीडिया में कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
0: जी,
1: जनता को बहुत अच्छा जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इतने गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम कर रहे हैं। अब मैं देखिए यहाँ आपसे एक स्कूप की चर्चा करना चाहता हूँ जो कि सीधा सीधा आकाशवाणी से जुड़ा है, और जो मैंने पहले बात यहाँ कही थी कि हमसे ज्यादा अच्छा काम हमारे पुरखों ने किया। मैंने जैसा शुरू में कहा कि हमारा देश यूरोप के कुछ देशों का एक उपनिवेश बन के रह गया था
0: जी।
1: बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि गोवा मुक्ति आंदोलन में ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सन 1942 के आंदोलन के बारे में हम सबको मालूम है, उषा मेहता जी ने कांग्रेस रेडियो चलाया था, जब 1942 में सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ जयप्रकाश नारायण जी भी उसमें शामिल, इन्होंने बंबई में एक कांग्रेस रेडियो चलाया था जिसमें कि 1942 के आंदोलन के बारे में जो जानकारियां थी वो आम जनता तक पहुंचाई जाती थी। इसी प्रकार 1955 से 1961 तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुर्तगीज गोवा, उस जमाने में पुर्तगालियों के अधीन था, के बीच में एक रेडियो स्टेशन चलाया गया था, गुप्त रेडियो स्टेशन, जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम। और वॉइस ऑफ फ्रीडम जो था ये वास्तव में किस प्रकार गोवा को आजाद कराया जा सकता है, गोवा की आजादी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में जानकारी देता था। और इसमें जो काम करने वाले हमारे लोग थे जिन्होंने इस रेडियो स्टेशन का संचालन किया, वॉइस ऑफ फ्रीडम के जो कर्ता धर्ता थे उनके नाम एक बार जरूर बता देना चाहता हूँ, मैं श्रोताओं को पता चले
0: जी।
1: ये रेडियो स्टेशन चलता था अंबोली घाट में जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा बॉर्डर पे था, और वॉइस ऑफ फ्रीडम के जो प्रसारक जिसे कहिए, वामन सरदेसाई, मिस लीबिया लोबो, निकोलो मेंजेस, ये तीन नाम थे। वामन सरदेसाई जो थे वो आकाशवाणी बंबई के एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन के एक प्रसारक भी थे
0: जी,
1: जबकि मिस लीबिया लोबो वहां की स्टेनोग्राफर भी थे
0: जी।
1: तो ये एक जानकारी ऐसी है कि जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। आकाशवाणी के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी गोवा मुक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से 1955 से 1961 तक, और जब 1961 में भारत सरकार ने आजाद कराया गोवा को
0: जी,
1: तब उसके बाद वो रेडियो स्टेशन बंद हुआ। तो इस तरह की जानकारियां बहुत जरूरी हैं कि सोशल मीडिया इस पर रिसर्च करे
0: जी,
1: और सही सही जानकारियां अपने श्रोताओं तक पहुंचाए।
0: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और मनोरंजन के तो अथा हमारे पास सागर है, लेकिन ऐसे में अभी भी लोग कहते हैं कि आकाशवाणी जो है उसकी अपनी जो जगह है वो बहुत सुरक्षित है, बहुत मजबूत है। आप क्या मानते हैं, जितने हमारे पास विकल्प हैं उनमें आकाशवाणी का अपना स्थान क्या है आज के दौर में?
1: अब आकाशवाणी के साथ एक चीज और हुई, हमने शुरुआत की शॉर्ट वेव से
0: जी,
1: मीडियम वेव से। मेरे को अच्छे से याद है जब हम लोग ओबी पे जाते थे तो बड़े बड़े सिर के ऊपर टेप रिकॉर्डर रख के, तब हेल्पर भी होते थे। अब आज का युग ऐसा आ गया है कि आप कार में चलते समय भी रेडियो सुन सकते हैं
0: जी,
1: आप घर में बैठ के भी सुन सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी आकाशवाणी को सुन सकते हैं
0: जी।
1: अब जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम ये पहचाने कि हमारे श्रोता कौन है, और नए श्रोताओं की तलाश करना आकाशवाणी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात
0: जी।
1: देखिए, अगर मैं कभी आकाशवाणी के इतिहास पर बातचीत करूं या सोचूं, तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आकाशवाणी के इतिहास में थे वो स्टॉक करेक्टर्स थे, बरसाती भैया, लोहा सिंह, है ना, ये सारे नाम ऐसे थे जो गांव-गांव में पहचाने जाते थे, और भी कई नाम होंगे, और वो उनके वास्तविक नाम नहीं थे, स्टॉक करेक्टर्स थे वो
0: जी।
1: और वो स्टॉक करेक्टर्स क्या थे, श्रोताओं को अपने में शामिल कर लेते थे। रायपुर में एक नाम था बिसाऊ भैया
0: जी,
1: तो वो

0: काम शामिल कर लेते थे। इसी प्रकार अब क्या हुआ है, जैसे महानगरों में सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती गई हैं, तो रेडियो की विशेषकर आकाशवाणी की एक विशिष्ट मार्गदर्शक भूमिका के रूप में हमें काम करना पड़ेगा
1: जी।
0: सिर्फ यही नहीं बल्कि समाज में बहुत सारी बुराइयां भी पनपी हैं, उन बुराइयों से हम स्त्री सुरक्षा के लिए कैसे काम कर सकते हैं
1: जी,
0: बच्चों की सुरक्षा के लिए कैसे काम कर सकते हैं, शिक्षा के और रोजगार के क्या क्या नए साधन आ रहे हैं
1: जी,
0: इन सब की जानकारियां इकट्ठी करके अपने श्रोताओं तक पहुंचाना भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व था है। जिस प्रकार एक युग में हम लोगों ने लोक संगीत, लोकनाट्य, शास्त्रीय संगीत, इन सबको बचाने के लिए जीतोड़ प्रयास किया और उनको बचा के भी रखा, मुझे इस बात का गर्व इस बात को कहने का कि हमारे रेडियो के आकाशवाणी का जो ऑडिशन, इसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आकाशवाणी से अगर वो अप्रूव्ड वॉइस है, अप्रूव्ड आर्टिस्ट है, तो निश्चित रूप से वो कुछ होगा। उस आकाशवाणी की एक महती भूमिका यही हो सकती है, जैसे इसी आकाशवाणी दिल्ली का ही मेरे को याद है, जब हम 2003 में हमारी डीडीजी मिस नूरिन नकवी थी, मैं तो उनसे जब नए फिक्स पॉइंट चार्ट का मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं नव दंपतियों के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। नूरिन जी ने मेरे से पूछा, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि अब ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई है
1: जी, बिल्कुल,
0: अब हमें मार्गदर्शन के लिए परिवार में कोई है नहीं, तो भाई एक साधन तो चाहिए ना, तो आकाशवाणी वो साधन बन सकता है। महिला कार्यक्रम का हमने नाम दिया था आधा आकाश हमारा
1: जी,
0: आधा आकाश हमारा, मतलब ये पूरी दुनिया पुरुषों की नहीं है, इसमें आधा हमारा भी हिस्सा है,
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कार्यक्रम यहाँ हमने नेत्रहीनों के लिए शुरू किया था, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि नेत्रहीनों के लिए आकाशवाणी से बड़ा कोई साथी नहीं है
1: जी, बिल्कुल
0: है ना, तो आवाजों के अक्षर, तो ये चीजें ऐसी हैं जो आकाशवाणी जैसे जैसे अपना बढ़ेगा आकाशवाणी, उसको हमेशा नए नए श्रोताओं की तलाश करती रहने पड़ेगी
1: जी,
0: और श्रोताओं की आवश्यकताओं को पहचानना होगा, समझना होगा और नए ढंग के कार्यक्रम जोड़ते रहना
1: जी। अब इसी मोड़ पर आपकी पसंद का एक और गीत।
0: हाँ, मैं यहाँ पंडित नरेंद्र शर्मा जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा
1: जी,
0: क्योंकि विविध भारती की स्थापना में पंडित नरेंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ज्योति कलश छल के भाभी जी की चूड़ियां लता जी का, सुधीर फड़के का संगीत है।

0: बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना हमारे श्रोताओं के लिए। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चलते चलते आकाशवाणी के जो आज के श्रोता हैं, जिसमें युवा साथी भी है, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: आकाशवाणी के युवा साथियों का ले दे तो हमारा तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन को जीवन जैसे जियो।
0: जी,
1: यहाँ मैं अपना एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ।
0: जी
1: नीलम जी, उम्र के अब मैं जिस पड़ाव पे पहुंच गया हूँ तो जो बातें हैं वो स्वीकार करनी चाहिए। मैं जब छात्र था स्कूल का तो एक ही दौर था कि क्या बनोगे, इंजीनियर या डॉक्टर, और इसलिए विज्ञान विषय ही पढ़ना चाहिए।
0: जी
1: है ना, और आपको जान के या श्रोताओं को जानकर बड़ा अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा पता नहीं, मैं बीएससी पार्ट वन में दो बार फेल हुआ।
0: जी
1: क्योंकि हाँ। माता पिता चाहते थे डॉक्टर बने।
0: जी
1: अब मैं डॉक्टर कहाँ से बनूं, भाई मेरे को तो फिजिक्स ही नहीं समझ आती थी।
0: जी
1: है ना, तो मैंने अपने विषय बदले और जब मैं आकाशवाणी भोपाल में स्टेशन डायरेक्टर था, बड़ी छोटी सी घटना, मैं बहुत छोटे में उसको खत्म करूंगा, तो एक मीटिंग चल रही थी, मेरे कई मित्र साथी थे, हम लोग एक ऑफिशियल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे, तो मेरे प्यून ने आके कहा कि मेरे एक साथी का नाम लिया जो स्कूल में मेरा साथी था, कि वो अपने बेटे के साथ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बुलाओ बुलाओ भाई, उनको अंदर बुलाओ। वो अंदर आए तो हम लोग, जयंत जोशी जी वहां डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके साथ मीटिंग हो रही थी और भी एक दो साथी थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो मैंने सुना कि वो मेरे जो मित्र बैठे हुए अपने पुत्र के कान में कह रहे हैं ये 2 साल फेल हुआ था।
0: जी
1: कोई बात नहीं, जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद चाय वाय बुलाई, फिर उसके साथ बैठा
0: जी,
1: तो उसने बताया कि मेरा ये बेटा है इसका पीईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, तो मैं सिर्फ जबलपुर से तुमसे मिलवाने के लिए इसको यहाँ लाया हूँ कि निराश मत हो।
0: जी
1: तो मेरा अपने बच्चों से यही निवेदन है कि दोस्त सिर्फ एक ही चीज जीवन में नहीं है, और भी जीवन में बहुत कुछ है, आप में हिम्मत होना चाहिए, आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, और यही संदेश मेरा आज आकाशवाणी के साथियों को भी है
0: जी,
1: कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका है समाज में और हमें उस भूमिका की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें करना चाहिए
0: जी।
1: और अंत में भूपेन हजारिका जी का, क्योंकि वो ना सिर्फ भारत रत्न थे बल्कि पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी में वो थे, तो एक पूरे भारत की मुकम्मल तस्वीर इस कार्यक्रम में आ जाए।

0: आप अपने कार्यालय आज आए और बहुत सारी बातें आपने साझा की। आपके प्रेरक शब्दों के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने दिया। आपको मैं जाते जाते ही पूछना चाहूंगी कि कुछ ही शब्दों में आप बताएं कैसा लगा आपको आकर और एक टॉकर के रूप में यहाँ बैठकर।
1: देखिए, आकाशवाणी ने मेरी जिंदगी बनाई है
0: जी,
1: मेरे बच्चों की जिंदगी बनाई है, मुझे समाज में सम्मान दिया
0: जी।
1: आकाशवाणी और दूरदर्शन को भी मैं श्रेय दूंगा इन दोनों ने, तो ये तो एक कर्ज है
0: जी।
1: और समय समय पर ईश्वर हमें इतना स्वस्थ रखे कि हम इस कर्ज को किश्तों में ही चाहे चुकाते रहे
0: जी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने याद किया, और अपने श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। तो अब मुझे यानी नीलम अलकानिया को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश

0: लौट आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्योन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं और पेशेवरों का किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का उपयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और इंजेक्शन का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग के प्रभावित देशों से आने और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी हैं। नए सदस्यों को आज सुबह चेन्नई के लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हो गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि अब सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने कहा कि अब अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के विद्यार्थियों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवारों ने इन नए केंद्रों के लिए आवेदन किया है। झारखंड में रांची के धुरवा में पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों ने समर्पण किया है। इनमें 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रूपये का इनाम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4थे स्थान के लिए पहुंचने के लिए कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India and Italy have agreed to further develop the India Middle East Europe Economic Corridor IMEC to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to cooperate on the India Middle East Europe Economic Corridor, recognizing its transformational potential in reshaping the promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. In a joint press conference with Prime Minister Modi in Rome, the Italian Prime Minister Meloni described the IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the West Asia and India with the potential to strengthen trade, investment and supply chain resilience. Ms. Meloni said, strengthening interconnectivity between the regions remains an important priority and added that both countries strongly support the development of the corridor. Both leaders also reaffirmed that innovation, science and technology are core drivers of the India-Italy partnership. Prime Minister Modi said, Italy is renowned

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: available for different categories including SC, ST, OBC, EWS, ex-servicemen and ex-agniveers. Candidates are advised to regularly check their application status and recruitment updates through the official recruitment portal. Do visit www.onlineregistrationportal.in. And detailed notification can also be accessed through the Employment News website, that is at www.employmentnews.gov.in. Indira Gandhi Institute of Development Research, IGIDR, has opened admissions for PhD programs in Economics, Development Studies and Energy, Environment and Climate Change for the 2026 academic session. Candidates with valid UGC, JRF and CSIR and JRF or GATE scores may apply. The last date for applications is 31st May 2026. For details, kindly refer to the website at www.igidr.ac.in. The Office of the Registrar General and Census Commissioner India, under the Ministry of Home Affairs, has announced recruitment for 6 posts of senior translator on deputation or absorption basis. Interested candidates should apply through proper channel within 60 days. Eligibility and application details available on www.censusindia.gov.in. The Uday Bhan Singhji Regional Institute of Cooperative Management, a training unit of the National Council for Cooperative Training, has invited applications for the post of a lecturer in Marketing Management, Computer and IT and Agribusiness Management on contract basis for a period of 3 years. The institute is located in Sector 30, Gandhinagar, Gujarat. Interested candidates may submit their applications by 25th May 2026. Details regarding the remuneration, qualifications and service conditions are available on the institute's website. And the website is www.urimanage.org.in. I repeat the website. It is www.urimanage.org.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार. रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता. आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित. भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, योग्य भारतीय नागरिकों से कुछ पदों पर संविदात्मक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है. कॉरपोरेट रिलेशन मैनेजर, यह है पद का नाम. रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 1 है जो कि अनारक्षित है. वेतन होगा प्रति माह स्तर 10 के हिसाब से और आवश्यक योग्यता और अनुभव की बात करें तो उनका 55% अंकों के साथ MBA या समकक्ष योग्यता आवश्यक है. प्लेसमेंट सेवाओं, करियर सेवाओं, B2B सेल्स, व्यवसाय विकास या कॉरपोरेट संबंधों में न्यूनतम उनका 6 वर्ष का अनुभव आवश्यक है. अभ्यर्थियों को इस पद के लिए तभी विचार उन पर किया जाएगा और आयु सीमा की बात करें तो 50 वर्ष है. सहायक प्रबंधक कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय के लिए 1 पद यहाँ पर रिक्त है और ये अनारक्षित है. वेतन की बात करें तो प्रतिमाह वेतन स्तर 8 के समकक्ष समेकित वेतन उन्हें प्राप्त होगा. आवश्यक योग्यता एवं अनुभव में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ MBA या समकक्ष योग्यता, 50 वर्ष इनकी अधिकतम आयु सीमा है. वरिष्ठ सहयोगी कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय के लिए 1 पद अनारक्षित है. 65,000 उन्हें प्रतिमाह समेकित वेतन मिलेगा. आवश्यक योग्यता होगी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर या समकक्ष योग्यता. किसी शैक्षणिक संस्थान के प्लेसमेंट कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय में 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव या फिर सेल्स मार्केटिंग क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है. इनकी आयु सीमा होगी 45 वर्ष. क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, 1 यहाँ पर पद रिक्त है जो कि अनारक्षित है. 65,000 रूपए इन्हें प्रतिमाह समेकित वेतन मिलेगा. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से क्लिनिकल क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल एमए अभ्यर्थी का क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के रूप में भारतीय

0: ये पुनर्वास परिषद यानी RCI में वैध एवं वर्तमान पंजीकरण होना आवश्यक है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पूर्व में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का अनुभव हो तो अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर भी आयु सीमा है 50 वर्ष। वेतन स्तर 8 एवं उससे ऊपर के पदों के लिए संस्थान की नीति के अनुसार समूह चिकित्सा बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 25 मई 2026 शाम 5 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, यहाँ पर प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। IIAC नई दिल्ली संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय नागरिकों से पूरी तरह से प्रतिनियुक्ति आधार पर कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पर सहायक रजिस्ट्रार, यह है पद का नाम, पदों की संख्या 1 है, वेतनमान होगा 7वें CPC के अनुसार लेवल 9। सहायक रजिस्ट्रार लेखा, ये भी एक पद यहाँ पर रिक्त है पे लेवल 9 के अंतर्गत। निजी सचिव, पद की संख्या 4 है, यहाँ पे लेवल 8 के अंतर्गत ये आते हैं। और सहायक अनुभाग अधिकारी लेखा, एक पद यहाँ रिक्त है पे लेवल 7 के अंतर्गत ये आते हैं। योग्यता, अनुभव और अन्य नियमों एवं शर्तों का विवरण आपको मिल जाएगा इसके वेबसाइट पर www.indiaiac.org। यहाँ पर समस्त जानकारी उपलब्ध है। मुंबई पत्तन प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक के एक पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक के पद के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है 29 जून 2026, पात्रता मापदंड वगैरह की जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार चाहें तो वेबसाइट देख सकते हैं, जो कि है www.mumbaiport.gov.in peopleandcareer/jobs। यहाँ पर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ऑनलाइन एप्लीकेशंस देख सकते हैं, वहाँ पर आप अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में स्वागत और अभिनंदन। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। और आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्या है इसका इतिहास। लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरूआत कर लेते हैं। आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार और मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। नमस्कार अनुजा।
2: नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून फरहत। फरहत, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रेफर यू टू यू द लेटेस्ट ट्रेंडिंग सिंस यस्टरडे।
1: जी,
2: आई जस्ट लव द फन एंड सिंबॉलिक गिफ्ट टू इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू रोम, अ पैकेट ऑफ पार्लेज मेलोडी टॉफी। द गिफ्ट वॉज अ प्लेफुल रेफरेंस टू द पॉपुलर मेलोडी इंटरनेट ट्रेंड विच कम्बाइंस द सरनेम्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी and Melanie, of course. And from a viral Colosseum selfie and Rome drive to dinner diplomacy and Melody Toffees, PM Narendra Modi and Italian Prime Minister Giorgia Meloni once again sent the internet into a frenzy during Modi's Italy visit. The hashtag Melody trended globally as the two leaders mixed diplomacy with viral moments while also boosting India-Italy ties in technology, AI, energy and connectivity. The trend exploded globally after Prime Minister Meloni posted a selfie-style video with Modi from COP28, where she smilingly referred to him as the most loved leader. The post sparked a huge meme trend online, especially among users in India and Italy who enjoyed the friendly chemistry between the two leaders. I'm sure you must not have missed it.
1: जी बिल्कुल, कल से बहुत ही ज्यादा हर सोशल मीडिया साइट्स पर ये वायरल हो रही है वीडियो और दोनों देशों की दोस्ती को ये बयां कर रही है।
2: The visit not only had important diplomatic goals, but India and Italy are expected to increase cooperation in areas such as trade, defense, maritime security, connectivity and strategic sectors. And of course, as you mentioned, Farhat, it's also International Tea Day today. Wishing all our listeners a happy tea time while tuned into today's fresh episode of Parikrama. It's time for our headlines first. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe Economic Corridor for deepening economic relations.
1: सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बौद्ध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया।
2: Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries.
1: पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश।
2: Chief Minister C. Joseph Vijay led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including four women ministers.
1: IPL cricket में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से।
2: And India Meteorological Department issues red color warning for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And of course, Farhat, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about International Tea Day.

0: पड़ी।
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई।
2: Certainly, there is something comforting about a cup of tea, isn't it, Farhad?
3: जी बिल्कुल अनुजा।
2: A cup of tea often feels like a pause that heart needs.
3: जी, घंटों काम करने के बाद आराम करता हुआ कोई थका हुआ कर्मचारी हो या फिर हमारी दादी जो अपनी सुबह की शुरुआत शांत प्रार्थनाओं से करती हैं।
2: और फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर ड्यूरिंग मॉनसून रेन्स टॉकिंग ओवर कप्स ऑफ चाय अक्रॉस द वर्ल्ड, टी इज फार मोर देन अ ड्रिंक।
3: जी बिल्कुल, और ये गर्माहट है, यादें हैं और मेहमान नवाजी हैं। लेकिन सुनने वालों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हर एक कप की चुस्की हम लेते हैं उसके पीछे कितने हाथ चुपचाप काम करते हैं और कैसे एक साधारण सी पत्ती हजारों सालों से संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं को आकार दिया है।
2: Of course, it's a pause shared across cultures, conversations and countless moments around the world. The story of tea began more than 5,000 years ago. Yet, even today, its importance continues to grow. Tea is now one of the most consumed beverages in the world after water.
3: जी अनुजा, चाहे आप भारत की हलचल भरी चाय की दुकानों की बात करें या जापान की शानदार चाय समारोह की, चाय एक सार्वभौमिक भाषा बोलती है। दिन की शुरुआत करना बिल्कुल संभव है अगर हाथ में एक प्यारी सी प्याली चाय न दी जाए। सर्दियों में तो ये और भी जरूरी हो जाती है, जब नरम रजाई से निकलने के लिए हम खुद को मना रहे होते हैं और एक गर्म चाय की प्याली से अपने हाथ सेक रहे होते हैं। ये सिर्फ एक कप चाय से कहीं बढ़कर आगे है।
2: एंड ऑफ कोर्स टी टाइम इज अ ब्यूटीफुल रिचुअल फॉर सोशल बॉन्डिंग, प्रोवाइडिंग द परफेक्ट एक्सक्यूज टू स्टेप अवे फ्रॉम स्क्रीन्स, रिलैक्स एंड शेयर स्टोरीज, वेदर इट्स मॉर्निंग फैमिली चाय, एन आफ्टरनून ऑफिस ब्रेक और अ कोजी वीकेंड गैदरिंग। It naturally fosters connection. And if we recognize the long history and the cultural and economic significance of tea around the world, as well as the significant role it plays in rural development, poverty reduction and food security in developing countries, the United Nations General Assembly proclaimed 21st of May as the International Tea Day.
3: बिल्कुल, यकीनन कभी न कभी हमारे सुनने वालों के मन में भी इस एक कप चाय के पीछे की यात्रा को लेकर जिज्ञासा जरूर जागी होगी। आज हम उसी जिज्ञासा के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों के लिए चाय महज एक पेय उद्योग नहीं है, ये उनकी आजीविका है, उनके जीवन का आधार है।
2: And in many developing countries, tea cultivation provides employment to millions of families. For countless women, especially, the tea sector has opened doors to financial independence and stronger participation in local economies there.
3: लेकिन चाय केवल बहुत ही खास तरह की जलवायु परिस्थितियों में ही उगती है। बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन चाय के बागानों पर असर डाल रहे हैं और कई इलाकों में पैदावार कम कर रहे हैं, और इसीलिए आज चाय को लेकर होने वाली बातचीत अब सिर्फ उसके स्वाद या खुशबू तक ही सीमित नहीं है, ये अब पर्यावरण को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।
2: Indeed, how do we ensure that tea production remains fair, transparent and environmentally responsible? That

0: This is exactly what International Tea Day seeks to highlight, how to build sustainable value chains from field to cup so that tea continues to benefit people, cultures and the planet for generations to come.
1: बिल्कुल अनुजा, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाय का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है. अक्सर चाय ही लोगों को आपस में जोड़ने का जरिया बन जाती है. जब कोई मेहमान घर आता है तो अक्सर पहला सवाल यही होता है कि आप चाय पीना पसंद करेंगे, और कोई मुश्किल बातचीत भी साथ मिलकर एक कप चाय पीने से आसान हो जाती है.
0: एंड दैट्स सो ट्रू फरहत. बिजनेस मीटिंग्स, ट्रेन जर्नीज, कॉलेज कैंटीन्स, रोड साइड स्टॉल्स, tea quietly accompanies life's moments. Different cultures have shaped tea in beautiful ways. Some prefer strong milk tea with spices, others enjoy delicate green tea or fermented varieties.
1: जी, और चाय खुद भी इस बात पर निर्भर करते हुए बदल जाती है कि उसकी पत्तियों को कैसे प्रोसेस, ऑक्सीडाइज या फर्मेंट किया गया है. फिर भी इन अंतरों के बावजूद भावना वही रहती है.
0: राइट, सो स्पीकिंग ऑफ असम, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स शेयर अ लॉन्ग हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद टी. सिंस एटलीस्ट द 12th सेंचुरी, the Singpho tribe in Assam utilized the leaves of wild growing tea bushes found in the forest for medicinal purposes. It is believed that the Singphos, considered to be among India's first tea drinkers, still process tea using a traditional centuries old method known as Dhuangchang.
1: जी अनुजा, और सिंगफोस का मानना है कि प्रत्येक भोजन के बाद पारंपरिक रूप से चाय सेवन करने से पाचन में सहायता मिलती है और समुदाय को कैंसर और मधुमेह से मुक्त रखती है. असम में अहोम राजाओं के शासनकाल के दौरान भी लाल चा, जो कि असम में उगाए जाने वाले विशेष जंगली पत्तियों से बनाए एक शराब का सेवन है, दोनों शाही और आम लोगों के घरों में एक लोकप्रिय स्वागत पेय है. वो सिंगफोस के अध्यक्ष बिसागाम थे और जिन्होंने 1823 में अंग्रेज रॉबर्ट ब्रूस और उनके भाई चार्ल्स को चाय पेश की थी. अंग्रेजों ने पाया कि आसामी चाय की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में करना अनामिका किस्म की चाय की तुलना में ज्यादा आसान था.
0: And soon they established tea plantations as an alternative to the expensive Chinese teas they were accustomed to drinking. The production of Indian tea witnessed a remarkable increase under British rule, and they paid wages to Indians to work in the tea plantations. And interestingly, tea's cultural importance is so profound that 6 tea cultivation sites have been recognized by Food and Agriculture Organization of United Nations as globally important agricultural heritage systems.
1: जी अनुजा, और ये केवल कृषि पद्धतियों बल्कि परंपराओं, जैव विविधता और सदियों के मानवीय ज्ञान को भी संरक्षित रखते हैं.
0: So maybe the next time we take a sip of tea, we'll remember that life's simplest moments can also be the most meaningful. Let's celebrate the comfort, calm and connection that every cup brings. Tea with friends is a therapy in disguise.
1: जी, और ये जिंदगी की सबसे शक्तिशाली चीजें जरूरी नहीं कि जटिल हों. ईमान कैसरानी भी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं. फिर कहीं बैठकर पी जाए इकट्ठे चाय, फिर कहीं बैठकर पी जाए इकट्ठे चाय, फिर कोई शाम का पल साथ गुजारा जाए. तो चाय बेहद जरूरी है. और श्रोताओ, अब हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं का. तो अनुजा, सबसे पहले हम कहां जा रहे हैं?
0: वी ऑल टेक आवर लिसनर्स फर्स्ट टू लेह टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ एपिकल्चर एज अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन लद्दाख. 2-day सेमिनार इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन लेह फ्रॉम यस्टरडे, एंड इट इज एन एफर्ट टू इंट्रोड्यूस एपिकल्चर इन द कोल्ड एरिड रीजन ऑफ लद्दाख आफ्टर अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स एंड स्टडीज एट कृषि विज्ञान केन्द्र इन लेह. वी हैव अ रिपोर्ट ऑन दिस.
2: A series of studies on production of honey in the cold, arid region of Ladakh has found that apiculture has a promising livelihood option for the farmers of Ladakh. With this result, the first ever seminar is being organized in Leh, Krishi Vigyan Kendra Leh, Head Professor Dr. Ferozdin Sheikh, sharing the successful trial on extraction of honey through buckwheat and alfalfa, said,
3: पिछले 2-3 सालों से इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी लार्ज स्केल में हमें हनी प्रोडक्शन हो रहा है. इसमें हम जो है कॉलोनीज यहाँ पे हमारे स्थापना सेंटर में वहाँ पे रखा है, तो वहाँ से जो है ये कॉलोनीज को वहाँ पे रखने के बाद वो जो बकवीट और जो अल्फा अल्फा है वहाँ के फ्लावर्स में, उसके हिसाब से फिर हमने वहाँ प्रोसेस सेंटर करके हमने यहाँ पे हनी लगाया, और फार्मर्स के लिए बहुत इनकम अच्छा है. बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डेवलप किया है, जिसमें हमने जैसे चॉकलेट है, केक्स है, और भी वैल्यू एडिशन के हमने किया. हमने यहाँ के कैंडल्स भी हनी का जो वैक्स है बनवाया है.
2: This initiative, titled as Honey, Sustaining and Sweetening Future, has brought together renowned scientists, researchers, accommodation and entrepreneurs from different parts of the country. It is being organized by University of Ladakh in collaboration with Sheri Kashmir University of Agriculture, Science and Technology, Jammu, with support of several reputed

0: credit institution and banks. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
1: और श्रोताओं अब चलते हैं भोपाल, देशी बीजों को बचाने की अनोखी मुहिम मध्य प्रदेश से चल रही है। जानते हैं कैसे सुनीता सिहोरे खास बीज बैंक के जरिए किसानों की जिंदगी बदल रही हैं।
2: मध्य प्रदेश के बालाघाट की सुनीता सिहोरे के घर एक अनोखा खजाना है। इस खजाने में सोना चांदी नहीं बल्कि 70 तरह के देशी बीज हैं। सुनीता आजीविका मिशन की बीज सखी हैं। वो किसानों को ये बीज मुफ्त देती हैं, बस एक वादे के साथ, फसल होने पर जितना बीज लिया था उसका दोगुना वापस करना होगा ताकि अगले किसान तक भी ये अमानत पहुंच सके। ये बीज भी बहुत खास हैं, कम पानी में उगते हैं, कम खाद मांगते हैं और सूखे में भी डटे रहते हैं। रासायनिक खेती की दौड़ में जो बीज पीछे छूट गए थे, सुनीता सिहोरे जैसी महिलाएं उन्हें फिर से जिंदा कर रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अब 454 बीज सखियां हैं और 29 जिलों में 99 बीज बैंक बनकर तैयार हो चुके हैं। आगामी खरीफ फसल के लिए किसान बीज सखियों से देशी बीज ले सकते हैं। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: And from Leh to Bhopal, and now we take you to Panaji, where MICE Tourism, or MICE Tourism, which stands for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, is emerging as an important part of Goa's tourism sector. The Goa Tourism Department is planning new initiatives to promote the state as a preferred destination for business events and conferences. We have more on this from our correspondent from Goa.
4: Goa Tourism Department is setting up a single window MICE Bureau to promote business tourism in the state. The Bureau will function as a nodal agency for meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism in Goa. The decision was discussed during a meeting with tourism stakeholders on the roadmap for the next 6 months. The proposed Bureau is expected to help strengthen Goa's position as a preferred MICE destination. Regarding this, Tourism Minister Rohan Khamte said,
5: Tour operators, the OTAs, everybody is coming together, including the airport authority, to ensure the monsoon sells well as a package. So, Honorable Prime Minister is ensuring that domestic tourism in India is absolutely witnessing unprecedented growth. And we need to ensure that Goa continues to remain one of the country's most aspirational destinations.
4: Despite global challenges affecting airline operations, tourist arrivals to Goa continue steadily. It is clear that Goa no longer sees an off-season and remains a preferred destination for visitors, and efforts are also underway to promote monsoon tourism in the state. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
1: और एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का विकल्प देने की शुरुआत की है। इसके लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय खोले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि फिलहाल वर्ष 2026-27 के बजट घोषणा के अनुरूप पहले चरण में चिन्हित 250 विद्यालयों का शुभारंभ किया गया है। इन विद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे तथा इनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में आधुनिक संसाधन, बेहतर आधारभूत ढांचा, प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रमदान को अनिवार्य किए जाने का निर्णय भी लिया गया है ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। ये निर्देश भी दिए गए हैं कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। शिक्षकों के मोबाइल विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में जमा रहेंगे तथा शिक्षण कार्य के दौरान मोबाइल के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
3: And a three-day workshop on palm oil development in Northeast region concluded at Pasighat in East Siang district of Arunachal Pradesh. We have a report on this.
7: A three-day national workshop on strategic solutions for rapid development of oil palm in the Northeast at Pasighat College of Horticulture and Forestry, CHF, in East Siang district of Arunachal Pradesh concluded today. The workshop aimed on strategic approaches for rapid expansion of oil palm cultivation in the Northeastern hill regions and formulation of a roadmap for achieving self-reliance in vegetable oil production following the central government's Atmanirbhar Bharat mission. On the occasion, representatives of Northeast eastern states placed reports of oil palm cultivation in their respective states and explained opportunities and challenges in oil palm cultivation and process.

0: The workshop was jointly organized by the CHF Society for Promotion of Oil Palm Research and Development, ICAR, IIOPR, Central Government's Agriculture and Farmers Welfare Department, and Oil Palm Processing Companies. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट की सबसे पहले बात, आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी।
2: एंड नाउ कमिंग टू द बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट आफ्टर अ choppy trade today. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. The broader market on the National Stock Exchange ended mixed. The mid-cap 100 ended flat with negative bias, while the small-cap 100 rose by 0.6%. For more updates about the market activities, of course, tune in to Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: आज गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे।
4: ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकति ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया।
3: ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने।
4: जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया।
3: 1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल।
4: जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।
3: ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया।
4: ओमियो समाज सुधारक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जीर जीवन और आसोमोत महात्मका जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मूर सत्य अनीश चवनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
3: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।
4: आज हम थाला सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी थे। थाला सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाला सिंह मलाया में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हवलदार के रूप में सेवा

0: दी।
1: बर्मा के मोर्चे पर 21 मई 1944 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान थाला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के महान सपूत को शत शत नमन।
2: एंड वी ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू द मैन हु टॉट इंडिया टू हग ट्रीज, द गांधियन हु वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द चिपको मूवमेंट, हु डाइड ड्यू टू कोविड-19 ऑन दिस डेट इन 2021। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सुंदर लाल बहुगुना। इट वॉज अ नॉन वायलेंट एजिटेशन, द चिपको मूवमेंट, विच ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश चमोली डिस्ट्रिक्ट इन 1973। एंड द नेम ऑफ द मूवमेंट चिपको कम्स फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेस, एज द विलेजर्स हग द ट्रीज एंड एनसर्कल देम टू प्रिवेंट बींग हैक्ड। इट इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर द कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन फॉर द कॉज ऑफ प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, विच ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन एटीट्यूड regarding their own status in society. Its biggest victory was making people aware of their rights to forests and how grassroots activism can influence policy making regarding ecology and shared natural resources. It led to a ban on commercial felling of trees above 30 degrees slope and above 1000 mean sea level in 1981. Of course, the person was known for coining the Chipko slogan, the ecology is permanent economy. After the Chipko movement in the 1970s, he gave the message across the globe that ecology and ecosystem are more important, and he was of the opinion that ecology and economy should always go together.
3: बिल्कुल अनुजा, और इसके अलावा उन्होंने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किया और उनके लिए टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना की। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा था।
2: We really need another such man now, Farhad, and he was awarded the Padma Vibhushan in 2009.
3: जी, और अब आगे बढ़ते हैं, एक और शख्सियत को याद करते हैं, गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक रही जानकी देवी बजाज को। उन्होंने कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में काफी सहयोग किया और एक स्वावलंबी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।
2: She was inspired by Mahatma Gandhi and her husband Jamna Lal Bajaj embraced a life of rigorous simplicity and patriotism. Her dedication to nation building continued long after India gained independence in 1947. And today we also pay respectful tribute to former Prime Minister Bharat Ratna Shri Rajiv Gandhi, who served as the Prime Minister of India from 1984 to 1989 for two terms, on his death anniversary today. His life was cut short by an act of terror, and that is why the day is observed as National Anti-Terrorism Day, reaffirming our firm resolve to fight terrorism in all its forms. Terror has no religion, no humanity, and no place in a democratic society. It also reminds us that peace is not merely the absence of violence, but the strength of a nation that refuses to surrender to fear.
3: और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं समय के अनूठे व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी को। अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाह से देखा। अपनी पैनी कलम से बड़ी साफगोई के साथ इन्होंने सटीक शब्दों में व्यक्त किया। शरद जोशी पहले व्यंग्य नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से खिन्न होकर व्यंग्य लिखना शुरू किया।
2: नोन फॉर हिज रेजर शार्प विट, ही मास्टरफुली ब्लेंडेड टाइमलेस ह्यूमर विद सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री। ही वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट of India in 1990. Shara Joshi has written many satirical essays on political, social, cultural and economic topics. And of course, he has also given dialogues for many of films, and we have chosen a dialogue from a film, Choti Si Baat, for which he had written a dialogue.
4: Mujhe maloom hai aapka naam Prabha Narayan hai aur aap Khar mein 9th lane mein rehti hain, Shyam Niwas Teesra Mala.
5: कितने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहे हैं?
4: बस मैं हमेशा कोई किताब पढ़ती रहती हूँ, डेनिस रॉबिन्स के रोमांटिक नॉवेल्स।
5: चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी।
4: पिछले सोमवार को आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और शुक्र को हरी। अक्सर हल्के रंग की साड़ी पहनती हैं आप। आपका बैग हमेशा सफेद रंग का रहता है ना? बैठते समय आप अपना पैर एक दूसरे के ऊपर रखती हैं और आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून बड़ा है।
2: And today we also pay tribute to Rai Bahadur Sir Sundarlal, who was a prominent Indian jurist, academic administrator and the founding vice chancellor of Banaras Hindu University. He is widely remembered for his major contributions to Indian education and the Indian legal system.
3: और श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में अब हम याद कर रहे हैं कुछ ऐसे डायरेक्टर की बात कर रहे हैं जो कम फिल्मों का निर्देशन करते थे, लेकिन जितनी भी फिल्में बनाते थे वो कमाल की होती थी। उन डायरेक्टर्स में से एक यश चोपड़ा थे और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा। और सोशल मीडिया पर भी आदित्य चोपड़ा की बहुत कम तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका काम बोलता है। 23 साल की उम्र में आदित्य ने पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
2: यस, एंड द फिल्म्स ही हैज प्रोड्यूस्ड मेक हिम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर of all time. And of course, the first one was Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, a genre-defining Bollywood film directed by him and released in 1995. The movie had Shah Rukh Khan and Kajol. Of course, we remember all that those things. And the film is regarded as the definitive Bollywood romance and has significantly shaped Indian popular culture and imagination over the years.
0: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
6: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।

0: इसके अलावा आदित्य ने रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्रे जैसी फिल्में भी की और आदित्य चोपड़ा ने धीरे धीरे अपने पिता की कंपनी यशराज फिल्म संभालना शुरू किया और नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए।
1: टुडे वी ऑल्सो विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मोहनलाल हु इज एन इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर होस्ट एंड प्लेबैक सिंगर हु हैज स्टार्ड इन मेनस्ट्रीम ब्लॉकबस्टर एंड आर्ट हाउस फिल्म्स Malayalam films mainly. He has made over 360 appearances in feature films and worked in Malayalam cinema, Tamil, Telugu, Hindi and Kannada films as well.
2: Pradesh Chavil Nina, Inikyonam Kittila, Sneham Pudu, Avarada Gutta Lairka, E. Benthangalanaka Parana, Achanamamar Jivichirikina Vareulu, Adagarjan Nilangarjum.
1: Mohanlal is today one of the best actors in India has ever produced and he is also rated as one of the most talented actors in India.
0: और अनुजा आप घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें कहना होगा अपने श्रोताओं को अलविदा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। तो इसके साथ ही अनुजा और फरहत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्री

0: कोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to cooperate on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. In a joint press conference with Prime Minister Modi in Rome, Italian Prime Minister Meloni described the IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the West Asia, and India, with the potential to strengthen trade, investment, and supply chain resilience. Prime Minister Modi said Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG, with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। शो है गाते गुनगुनाते, जिसमें हम शामिल करते हैं 80 और 90 के दशक की फिल्मों के गीत। और ये वाला जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, फिल्म कामचोर से है। 1982 में ये फिल्म बनी थी। बहुत ही प्यारा इसका म्यूजिक था, म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने, और जया प्रदा इसकी हीरोइन थी। बहुत बहुत खूबसूरत लगी थी इस फिल्म में और बेहद उम्दा अदाकारी की थी उन्होंने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, नसरीन है आपके साथ। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर, जिनकी फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई। राजीव कपूर और मंदाकिनी की ये फिल्म थी, रणधीर कपूर ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म। रविंद्र जैन का म्यूजिक था और कहते हैं इस फिल्म की कामयाबी

म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड। इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी ये उनकी आखिरी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को बनाने का जो आइडिया था उन्हें 1959 में आई फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के दौरान ही आया था। फिल्म किसी न किसी वजह से डिले होती गई और 25 साल के बाद ये फिल्म बनी। राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर के लिए बनाई थी ये फिल्म और कहते हैं कि उनके करियर की ये सबसे यादगार फिल्म कही जाती है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा

0: बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कम्प्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month. Additional Secretary in the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, said they are continuously coordinating with the Ministry of External Affairs, Indian Missions and maritime stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed the commitment to cooperate on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India has presented a new model.

साथियों, गीत तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गीत जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, कभी कभी बहुत ही अपने लगते हैं। कुछ ऐसे ही गीतों को लेकर आए हैं हम आज सदाबहार गीत में। तो आइए सुनते हैं सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हुआ है 6:11:27। आप हैं इस खूबसूरत से बेहतरीन सफर पर रूपा धवन के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इसी के साथ सुनते हैं पहला गीत जिसे हम शामिल कर रहे हैं पड़ोसन फिल्म से, जो कि लता दीदी के भी दिल के बेहद करीब था।

भाई बद्दूर, भाई बद्दूर, अब जाएंगे कितनी दूर। भाई बद्दूर, भाई बद्दूर।

वन्दे मातरम् इत्यस्य गानम् अनिवार्यं कृतम्। अयमादेशः मदरसा शिक्षा निदेशालयेन प्रसारितः। अधिसूचनायाः अनुसारं एषः निर्देशः सर्वकारीय प्रारूप मदरसा इत्येतेषु, सर्वकारीय अनुदान प्राप्त मदरसा इत्येतेषु, मान्यता प्राप्त मदरसा इत्येतेषु तथा च अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालयस्य एवं मदरसा शिक्षा विभागस्य अन्तर्गतं कार्यरतासु अनुमोदितासु शिशु शिक्षा केन्द्रेषु, माध्यमिक शिक्षा केन्द्रेषु च प्रवर्तिष्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह तथा दक्षिण कोरिया देशस्य देशभक्ति भूतपूर्व सैनिक कार्यमन्त्री क्वोन ओहयोल च अद्य सियोल नगरस्य इमजिंगक उद्याने भारतीय युद्ध स्मारकस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति। क्रीडा सायं सार्धसप्तवादनतः आरभ्यते। गुजरात टाइटन्स दलेन पूर्वमेव अन्तिम चतुष्क क्रीडायां स्वस्थानं निश्चितम्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं च अंकतालिकायां चतुर्थ स्थानं प्राप्तुं स्वस्य सम्भावनां सुदृढीकर्तुं प्रयतते। अत्रांतरे गतरात्रौ कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन मध्ये कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुर्भिः स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी एक नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ एसपी शर्मा। डॉ शर्मा, कार्यक्रम में आपका करजोर अभिनंदन।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। In Indian stock market, Sensex drops 135 points, Nifty settles on a flat note. Major Asian indices end mixed and global crude oil prices rise.
1: Bombay Stock Exchange ke Sensex mein 135 ankon ki giravat, wahi National Stock Exchange ka Nifty sapat band hua. Pramukh Asiai share suchakankon mein raha mila jula rukh aur vaishvik kacche tel ke daam badhe.

0: And a quick reminder before we begin the program, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, अब आइए जानते हैं कि आज पूरे दिन के दौरान हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने, यानी कि हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद घरेलू शेयर बाजार नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 135 अंक गिरकर 75,183 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली रूप से 4 अंक लुढ़ककर 23,655 पर स्थिर हुआ। व्यापक शेयर बाजार में भी मिला जुला रुख देखने को मिला। श्रोताओं, मिड कैप 100 नकारात्मक रुझान के साथ सपाट बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.6% की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बाजार में तेजी देखी गई। हालांकि ये तेजी अल्पकालिक थी, क्योंकि दोपहर के सत्र में दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट आफ्टर अ चॉपी ट्रेड टुडे। The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by only 4 points to settle at 23,655. The broader market on the National Stock Exchange ended mixed. The Mid Cap 100 ended flat

0: with negative bias, while the small cap 100 rose by 0.6%. Earlier, the markets opened higher amid positive global cues. However, the momentum proved short-lived as both indices gave up their initial gains during the afternoon session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस 1.7%, टेक महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलिवर में लगभग 1.5% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में इंडिगो लगभग 3.2%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1.8% और ट्रेंड के शेयरों में 1.7% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices at the BSE, 16 out of 25 sectors ended in positive territory. In the top gainers, services rose 1.6%, capital goods climbed 1.3%, and industrials as well as realty added 1.1%. Among the top losers, IT as well as focused IT fell over 0.5%. Mid-small private banks index lost almost 0.5%, and FMCG dropped by 0.4%. The overall market breadth was at the BSE was positive as shares of 2,426 companies advanced, shares of 1,745 companies declined, and shares of 191 companies remained unchanged.
1: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं हम रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 63 पैसे मजबूत होकर 96.20 रूपये पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 99.22 पर कारोबार कर रहा था। डॉ शर्मा, पिछले 3 सत्रों से हम दोनों ही प्रमुख सूचकांकों को जब ट्रैक करते हैं तो देख पाते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि हमने देखा ट्यूजडे को यानी मंगलवार को 114 अंक की गिरावट, हमने देखा वेंसडे को 118 अंक का उछाल, फिर हम देख रहे हैं आज थर्सडे को 135 अंक की गिरावट। ये आसपास के ये क्या संकेत देते हैं हमें?
2: देखिए राजी, काफी वॉलेटाइल मार्केट है
1: जी,
2: और बहुत अनसर्टेनिटी अभी भी है, जो हम पीछे काफी महीनों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी जो अनसर्टेनिटी है कि युद्ध होगा वापिस या नहीं होगा, शांति हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, या इतने घंटे का अल्टीमेटम है, तो ऐसी न्यूज जो है वो बार बार मार्केट्स के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रही है। और दूसरा जो क्योंकि कॉमोडिटी मार्केट, खास करके जो क्रूड मार्केट है, वो ऐसी न्यूज से बहुत ही सेंसिटिव है, तो उसमें बहुत उछाल आता है, कई बार गिरावट आ जाती है। अभी जैसे कल ट्रंप साहब ने बोला कि भाई ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो प्राइस करेक्शन हुई कि क्रूड के प्राइसेस भी बहुत अच्छे से करेक्ट होंगे, तो उसी टाइम उनमें करेक्शन आई। तो फिर बोले कि भाई अभी युद्ध हो सकता है 48 आवर्स में, मैं संडे तक का अल्टीमेटम देता हूं। तो उसके बाद पहले मार्केट्स हमारे ठीक ठाक थे, तो सेंटीमेंट अच्छा था। मैं देख रहा था कि जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो भी लगभग कोई 150 अंक के उछाल से चल रहा था कल शाम को, लेकिन आज हमने गिरावट देखी। तो ये दिस इज ऑल न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी, अभी कुछ हुआ नहीं है
1: जी।
2: अभी रिसेंटली युद्ध विराम तो अभी चला ही हुआ है, लेकिन जो ऐसी न्यूज है वो सेंटिमेंट को वॉलेटाइल कर रही है, जिसे के प्रभाव आना लाजमी है। मार्केट्स तो बहुत सेंसिटिव होती हैं ऐसी न्यूज के, और इन्वेस्टर खास करके, क्योंकि इन्वेस्टर ही तो मार्केट को बनाता है। जब इन्वेस्टर अनसर्टेन होगा तो मार्केट्स वैसा ही बिहेव करेगी। तो मैं समझता हूं कि कुल मिला के जो स्थिति है वो अनसर्टेनिटी की वजह से है। अदरवाइज अगर आप ये देखेंगे, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो हमारी मार्केट बहुत ही तेज गति से रिबाउंड करती है। मेरे ख्याल से वो उछाल होता है जो कई कई महीनों के स्तर को तोड़ देता है। कई बार मार्केट में पोटेंशियल वहां से पता चलता है हमें कि हमारी मार्केट बहुत पॉजिटिव है, बट बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ वॉलेटाइल न्यूज वो इम्पैक्टेड है, कंफ्यूज्ड है, अनसर्टेन है।
0: तो डॉक्टर शर्मा, यू नो, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस वॉलेटिलिटी, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी, फॉर दोज पीपल हु आर न्यू टू द स्टॉक मार्केट एंड हु मे वॉन्ट टू एंटर द मार्केट, यू नो, वॉट वुड यू से? Should they enter at this point? Because, like you said, there's a lot of volatility, there's a lot of uncertainty. Even the experienced investors and, you know, people who are experienced, they may not be, you know, so very sure of where things are going. But for somebody who wants to enter the market at this point, what would you say for them?
2: Yes, I suggest some gradual entry on the basis of some SIP, because you can't time the market.
0: Right.
2: यू हैव टू इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट देन यू शुड एंटर इन द मार्केट विथ सम इन्वेस्टमेंट नॉट एट अ सिंगल गो बट इन स्टेप्स
0: राइट
2: एंड SIP इज द बेस्ट मेजर टू एंटर इन द मार्केट टू कैप्चर द वॉलेटिलिटी ऑल्सो एंड टू टेक द मार्केट अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी समटाइम्स स्टॉक्स आर सिग्निफिकेंटली लो सो दैट इज द राइट पॉइंट टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक सो आई बिलीव देयर शुड नॉट बी एनी सिंगल नीजर्क एंट्री that then the market is now decelerating, I should enter with full amount of money. Mm-hmm. So there must be some homework with some expert's advice, right. Then they can enter in the market. But that too gradually with the SIP.
0: Right.
1: जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई हमारे श्रोताओं के लिए मगर डॉक्टर शर्मा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी FII की निकासी पर
2: जी.
1: मैं जब ट्रैक कर रही थी डेटा को जब मैंने आंकड़ों को देखा तो कल तक की जो निकासी हुई है इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से वो तकरीबन 218,273 के आंकड़े आए हैं सामने तो ये किस तरीके से भारतीय बाजार के सेंटिमेंट को क्योंकि कई सारे श्रोताओं ने कॉलर्स डे पर कॉल करके पूछा है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि निकासी ना हो क्या कुछ ऐसे मतलब सबकी अपनी अपनी योजनाएं हैं कि नहीं निकले हमारा पैसा लेकिन निकासी तो हुई है
2: देखिए पहला नंबर तो प्राची के वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी FII मनी नाउ वी आर सेल्फ रिलायंट हमारी जो मार्केट है वो अपने आप में चलना सीख गई है हमें हमारा कोई डिपेंडेंस FII मनी के ऊपर ज्यादा नहीं रहा है
1: अच्छा।
2: और वो मनी बहुत ही स्पेकुलेटिव होती है वो अभी आपको अभी निकासी में आपने देखा आप 10 दिन के बाद अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है क्योंकि वो देखते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल तो है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो वो वापिस आपको इससे भी ज्यादा तेज गति से एंटर करते दिखाई देंगे लेकिन उनको ऐसे कुछ मायने चाहिए होते हैं एक कोई बहाना चाहिए होता है मैं ये कहूंगा जहां से वो प्रॉफिट बुक करके अपना निकलने का प्रयास करें
1: हाँ बिल्कुल पिछले अगर मैं 3 दिन की बात करूं तो 3 दिन में DIIs ने केवल खरीदारी की है और एक तरीके से कुशन किया है
2: जी वही तो DII जो है उन्होंने हमारी मार्केट को बहुत तकड़ी सपोर्ट दी है और रिटेलर ने जो अब हमारा रिटेलर पार्टिसिपेशन है वो FII के जो फ्लो है उनसे कहीं तेज गति रखता है उसका मार्केट को उनसे भी ज्यादा सपोर्ट है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी FII मनी वी आर सपोर्टेड बाय अवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स DIIs एंड अवर रिटेल इन्वेस्टर्स तो उनका तो अभी कुछ खास पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कितना ये 217,000-218,000 करोड़ इज नथिंग इन दी सच अ ह्यूज मार्केट कैप तो मैं ये कहूंगा कि उसको देख के हमें चिंतित नहीं होना चाहिए वी आर बस हमें ये जानना चाहिए कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग दी मेजर इकोनॉमीज एंड अवर फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग एज कम्पेयर्ड विद एनी एडवांस्ड इकोनॉमी और इमर्जिंग इकोनॉमी
0: सो डॉक्टर शर्मा आई जस्ट वॉन्ट टू स्टेप आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर जस्ट यू नो फॉर माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दोज ऑफ आर लिसनर्स हु मे बी प्रोबेबली यू नो आर रिस्क अवर्स और हु मे नॉट हैव द इंक्लिनेशन टू एंटर यू नो टू इन्वेस्ट थ्रू अ स्पेक्युलेटिव मीडियम और स्पेक्युलेटिव वे वॉट आर द वेज इन दिस प्रेजेंट सिनारियो वॉट आर द डिफरेंट options for them you know for investment so that they can invest and still you know be make some money and benefit
2: I would say there should be some mix of investments not a single commodity or single segment like the stock market or the commodity market or the debt market or bond market kuch aisa
0: ji
2: there should not be any single focus
0: ji
2: investment must be diversified in different segments like some money in the equity market some money in the commodity market some in real estate some in bond market so this is the time to diversify actually you should not be dependent on a single investment like whole money is going in gold or silver or equity because all are very very volatile at this juncture
1: इस संदर्भ में क्योंकि आपने कहा कि एक विस्तृतीकरण हमें करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का हमें डाइवर्सिफाई उसे करना चाहिए तो मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि आपके लिहाज से ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं इस समय पर जहां हमें निवेश करना चाहिए
2: देखिए हमारा जो सेक्टर है जो पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर अ प्रॉमिसिंग इकोनॉमी हमारा हर एक सेक्टर ही बहुत ही प्रॉमिसिंग है लुक्रेटिव है प्रोग्रेसिव है बहुत अच्छा इकोनॉमी तो फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि

0: हम पॉलिसीज को देखें
1: जी
0: तो हमारा लक्ष्य क्या है, विकसित भारत, देन वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर आपका मार्केट के थ्रू हो, जैसे भी हो, दैट इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर, नॉट ओनली फॉर द ईयर्स और द डेकेड्स बट फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, मेनी डेकेड्स. ये तो हमारा डेवलपमेंट चलेगा बिकॉज एक एडवांस्ड इकोनॉमी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी के पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. और जैसे हमने पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखी है, उसको देख के हमें लगता है कि दिस स्टोरी विल नेवर एंड.
1: यस, आई वाज अबाउट टू से दैट सेम डॉक्टर शर्मा, दैट इफ यू लुक एट द बजट्स इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, द गवर्नमेंट्स फोकस हैज बीन, यू नो, द एलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन द मैक्सिमम, एंड यू नो द गवर्नमेंट इज फोकसिंग गोइंग फुल फ्लेश्ड इन दैट डायरेक्शन. सो लाइक यू सेड, दैट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर.
0: यस, नाउ आई वुड से एवरी रोड goes to Viksit Bharat.
1: Yeah. Okay.
0: So your capital expenditure increased from 2-3 lakh crore to now 11 lakh crore.
1: Yes, yes.
0: So that is a significant increase during the last few years. So this trajectory will go up and up. There is no full stop to this infrastructure development.
2: Right. श्रोताओं, भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को दिल में लिए अब आइए चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में मिलाजुला रुझान रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 8.4% से अधिक बढ़ा. जापान का निकेई 3.1% बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहा. वहीं बात अगर चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स की करें तो 2% और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1% गिरा. आर्थिक मोर्चे पर जापान का निर्यात लगातार 8वें महीने बढ़ा. सेमीकंडक्टर शिपमेंट में उछाल के कारण अप्रैल में कुल निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई, जो जनवरी के बाद सबसे तेज वृद्धि दर है. बात अगर यूरोपीय सूचकांकों की करें श्रोताओं, तो आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं ये तमाम सूचकांक. जर्मनी का डैक्स 0.8%, फ्रांस का कैक लगभग 0.5% और लंदन का फुटसी लगभग 0.4% नीचे कारोबार करता नजर आया अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक.
1: Let's move on to the US markets. US equities ended higher yesterday as crude oil prices and US Treasury yields declined. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index surged more than 1.5%, the Dow Jones Industrial Average climbed 1.3%, and the S&P 500 soared 1.1%. Meanwhile, investors assessed the first quarter results of a major artificial intelligence chip maker and its growth forecast for the second quarter. On the policy front, minutes from the latest Federal Reserve meeting showed that most officials expected further interest rate hikes if the West Asia conflict continued to fuel inflation. Dr. Sharma, we are of course talking about the Federal Reserve meeting minutes, but I want to, you know, come back to our own central bank, the Reserve Bank of India. The next round of MPC meet is just in about 10 days. It's going to be on June 5th. What are your expectations at this point of time because of the way the whole geopolitical situation is? Crude oil prices are rising. That's obviously going to put some pressure on, you know, inflationary pressures are also there. So what's your expectation?
0: Our expectation is status quo, because now time is not permitting to increase or decrease the repo rate, because both the situations are not favorable. We are facing some inflation challenge because WPI is already 8.3%, and there are chances that CPI will also go up because now the petrol and diesel prices have been increased a little bit.
1: Yes.
0: So there will be some impact on the CPI inflation in the coming month. So, but at this juncture, I believe RBI should take some calibrated measures, and status quo is the best way to move forward, to remain strong and resilient in the market.
2: तेल की आपूर्ति को लेकर के इतनी चिंताएं हैं और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसका प्रभाव, उसके बंद होने का प्रभाव तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है. लेकिन इस ये बात कितनी अच्छी बात है हमारी अर्थव्यवस्था की और हमारी पॉलिसीज की, कि हमारे देश में जो प्राइस हाइक हुए हैं पेट्रोल और डीजल के, उसमें वो सिंगल डिजिट में हुए हैं, जो बाकी म्यांमार है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, ये यहां पर जो प्राइस हाइक हुए हैं वो डबल डिजिट्स में हुए हैं. तो ये इसे आप किस तरह से देखते हैं?
1: एंड डॉक्टर शर्मा, बिफोर यू आंसर दैट, यू नो, आई जस्ट वांट टू ऐड टू व्हाट प्राची सेइंग. इट्स नॉट जस्ट कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार और पाकिस्तान, इट्स इवन, यू नो, डेवलप्ड इकोनॉमी, इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, यूएस, where we have seen pump prices increasing by some

0: something like 44%, more than 44% hike in petrol prices, 48.1% in diesel. If you look at China, 21.7% hike in petrol and 23.7% in diesel. So it's also these, the major economies of the world where the pump prices have shown a very sharp increase vis-a-vis India, where it's just a week ago, after 4 years, that we've seen this increase of approximately 4 rupees per liter.
1: I would say this is the best management by the government because now our inflation, particularly, I was talking about CPI inflation, that remains at around 3.5%. A small increase from 3.3 to 3.5%, 0.3 percentage point increase from February to April. So this is the best management. So now inflation, WPI trajectory is very high, 8.3%. So we have to percolate or pass on some effect of the such kind of rise in the international crude oil prices to consumers. And the government is very, very wise in this segment because they don't want to increase the prices. But they have increased a little bit so that the whole burden is not borne by the oil marketing companies. तो मैं इसको कहूंगा कि बहुत जैसे प्राची आपने क्वेश्चन किया तो एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है कि सरकार अभी भी नहीं करना चाहती थी शायद फिर भी जब देखा कि WPI इन्फ्लेशन जो हमारा होलसेल इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा है तो हमें कुछ ना कुछ पास ऑन करना चाहिए तो उसी के मद्देनजर ये सिंगल डिजिट और सिंगल का भी आधा जैसे हम
2: बिल्कुल
1: उसी का हुआ है वो भी डबल से बहुत दूर है तो मैं ही कहूंगा कि आने वाले टाइम में शायद आगे ऐसे ही हमारा रवैया रहेगा हमारी सरकार का कि जो बर्डन है कंज्यूमर तक ज्यादा ना जाए मजबूरन जो देना पड़ा वो उनको करना पड़ा लेकिन अगर कुछ अब शांति हो जाती है जैसे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस विल करेक्ट सिग्निफिकेंटली कल ही स्टेटमेंट दिया कि प्राइसेस बहुत नीचे आ जाएंगे तो हमें शायद आगे जरूरत ही ना पड़े अगर ऐसा हो जाता है उनकी इस ये बात ये तथ्य सच हो जाता है जिसकी बहुत कम उम्मीद है वैसे अभी शॉर्टर पीरियड में कि ऐसा कुछ होगा कि इतनी जल्दी कुछ शांति हो जाएगी जिस तरीके के हालात चले हुए हैं लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्रूड प्राइसेस में अगर करेक्शन आती है
0: इट विल टेक टाइम
1: देखो क्रूड प्राइसेस डबल हो चुके $55 के एवरेज से अभी हम 110 देख रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर इम्पैक्ट कितना हुआ है आपने बताया कि 4-5 रुपए का
0: लगभग
1: लगभग उसका कोई जो डबल है उसका
2: लगभग 3% से कुछ
1: आप उसका समझिए आप उसका समझिए कि 5% इम्पैक्ट भी अभी नहीं हमारे ऊपर पास ऑन हुआ है 95% जो इम्पैक्ट है वो तो सरकार ने आने ही नहीं दिए
0: तो उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर शर्मा आई वांट टू आस्क यू व्हाट आर द you know factors that have worked in our favor what are the factors that gave the government this you know leeway to cushion and you know, not pass on the prices onto the consumer. The pump prices, they were able to hold
1: yes.
0: for such a long time. So what were those factors?
1: Factors are our resilience of our oil marketing companies, number one. Yeah. And number two, our best fiscal management.
0: Right.
1: We are very good in our fiscal management. Our fiscal deficit is anticipated at around 4.3-4.4%. So that is a great thing. And we are very resilient in managing our public finances.
0: Right.
1: And the third thing is the inflation management.
0: Right.
1: And fourth is the government's will to support the economy and to support the consumers and yes. to make it more and more resilient and strong in the global marketplace.
0: Right. Let's move on.
3: अन्य खबरों में श्रोताओं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का यह दौरा दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है श्री गोयल ने यह भी बताया कि 5 देशों की इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है
4: बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो सीईओज हैं उनके साथ बातचीत हुई उनके साथ आगे भारत में निवेश व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई अगर हम सिर्फ ये जिन सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 trillion से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है यानी भारत की GDP के लेवल के सीईओ मिल के सब उनके साथ चर्चाएं हुई है

0: आगे की भारत की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए।
1: डॉक्टर शर्मा, ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा, ये लाजमी है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एक कदम है, लेकिन ये किस तरीके से भारत को लाभान्वित करेगा, मैं चाहूंगी कि आप उस पर प्रकाश डालें।
2: देखिए, ये जो 5 कंट्री हैं, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंट्री है, मैं ये कहूंगा। जो 5 के 5 हमारे साथ किसी न किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे इंडिया यूएई सीपा हमारा है, नीदरलैंड इंडिया में वो इंडिया यू एफटीए के अंडर आता है, स्वीडन भी इंडिया यू एफटीए में है, इटली भी इंडिया यू एफटीए में है, और नॉर्वे जो है, जो हमारा एफटा एक एग्रीमेंट है टेपा, तो उसमें नॉर्वे आता है। और अगर हम देखें ट्रेड ट्राजेक्ट्री, तो लगभग कोई $140 बिलियन का ट्रेड हमारा इन कंट्रीज के साथ होता है,
1: इन पांचों देशों के साथ।
2: 100 से ज्यादा तो हमारा यूएई के साथ ही है जी। तो $140 बिलियन का मतलब है कि दिस इज लार्जर देन दी मर्चेंडाइज ट्रेड विद चाइना एंड मर्चेंडाइज ट्रेड विद यूएसए ऑल्सो। तो इम्पॉर्टेंस बहुत सुदृढ़ बन जाती है कि हम इनके साथ अपने जो बायलेटरल रिलेशंस हैं उनको और संगठित करें, उनको और मजबूत करें, और इस ट्राजेक्टरी को जो अभी 140 बिलियन डॉलर की है, उसको हम आने वाले 5 वर्षों में 350 बिलियन डॉलर तक लेके जाएं। तो दैट इज द आई बिलीव ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 5 countries.
3: Right. Let's move on to the next story. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that India's GDP upgraded from 6.4% to 6.5% in the middle of global crisis, demonstrating the capability of 1.4 billion Indians. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, the minister said that this achievement reflects the country's growing ability to engage with the world from a position of strength with confidence. Talking about current account deficit, the minister underlined that the government is taking various steps and all government departments are working in coordination to tackle the situation. Mr. Goyal also said that that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high precision defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Dr. Sharma, very quick comment on the fact that the minister, you know, talked about the GDP upgrade in the middle of a global crisis. More than that, the fact that he said that demonstrates the capability of 1.4 billion Indians and the whole world is looking towards India.
2: Yes, that is true, because now many expectations are that our GDP will be at around 6.5% and RBI even anticipated at around 6.9% during the last policy. Yes, and many other estimates are at around 7%. So the median, I believe, is at around 6.5 to 6.7. So I think that is going to become a reality in the current year also.
3: Right. Let's move on to the next story. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that the government aims to make the Indian automobile industry number one in the world. Addressing the American Chamber of Commerce in India's annual leadership summit in New Delhi, the minister added that the government is also working on alternative fuel and biofuel, ethanol, methanol, biodiesel, LNG, electric and hydrogen.
4: The ministry total size of the automobile industry was at time was 14 lakh crore. Now the size of the automobile industry is 22 lakh crore. And now we have just surpassed Japan and our number is third. The first is USA having the size of 79 lakh crore. Second is China 49 lakh crore. And India is now 22 lakh crore. Our every year growth is 30 to 40%. Now our aim is to make Indian automobile industry number one in the world.
3: And let's move on to the commodity prices. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading over 2.1% up at $107.26 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading over 2.7% up at $100.94 per barrel when reports last came in. And let's have a look at the gold and silver prices in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading over 0.5% down at 1,59,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% down at 2,71,020 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट वाइल अगो।
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना आधा प्रतिशत गिरकर 1,59,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध वाली चांदी लगभग 1.5% लुढ़ककर 2,70,431 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। डॉक्टर शर्मा, सोने के दाम घटे हैं, इस पे आपकी मैं संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि समय की बाध्यता है।
2: थोड़ा सा डॉलर स्ट्रांग हुआ है अभी, जो जिस तरीके के बॉन्ड मार्केट भी स्ट्रांग हुई है, तो उसी वजह से जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो कॉमोडिटी मार्केट के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आता है। वही वजह है कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी शाइन,
1: यानी कि अब जो निवेशक हैं जो सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए आप ग्रीन फ्लैग दे रहे हैं कि अब आप खरीद सकते हैं।
2: देखिए, मैं अभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि गोल्ड प्राइसेस काफी ऊपर हैं एज कम्पेयर विद, और जो उछाल है पिछले कुछ महीनों में ही है, तो अभी थोड़ा रुक के ही थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए।
1: डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, मेरे और अनुभा के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।
2: थैंक यू।
3: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। इन इंडियन स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स ड्रॉप्स 135 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स ऑन फ्लैट नोट, मेजर एशियन इंडिसेस एंड मिक्स्ड, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। फॉर नाउ फ्रॉम द एंटायर टीम, गुड बाय, नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुवन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्यसमूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया। यह सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The government today reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG, with refineries operating at optimum capacity to meet the demand. LPG production has been ramped up and every day around 46 to 47,000 tons of LPG are produced in refineries. Addressing an interministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that supply remains stable and steps are being taken to ensure availability across all petrol pumps. Additional Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, said they are continuously coordinating with the Ministry of External Affairs, Indian Missions and maritime stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests.
4: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
3: Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw today held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in the trains have revealed the involvement of anti-social elements. The ministry said that such incidents has been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The discussions during the security review meeting focused on strengthening intelligence gathering mechanisms from the field through an improved reporting system. India has called for united global efforts to combat terrorism in all its forms, including cross-border terror. Addressing the 11th annual BRICS Counter-Terrorism Working Group meeting in New Delhi today, Ministry of External Affairs Secretary West C.B. George stressed the need to hold accountable those sheltering and supporting terrorism. He called for zero tolerance against terrorism and stronger international cooperation to tackle terror financing, radicalization and misuse of emerging technologies by terrorist groups. The fourth India-Africa Forum Summit, which was scheduled to be held from

0: 28th to 31st of May in New Delhi has been postponed in view of the evolving health situation in parts of Africa. External Affairs Ministry said in a statement that consultations were held between India, Chairperson of the African Union and the African Union Commission. In Uttarakhand, five people, including two women, were killed today after a vehicle plunged into a deep gorge near Dhaila village on the Santoriam Ratighat bypass road in Bhavali area of Nainital district. Teams from the local police and the state disaster response force recovered all the bodies from the gorge. Police are investigating the cause of the accident. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar conducted the computerized draw for selection of yatris for the Kailash Mansarovar Yatra 2026. The 2026 edition of the Yatra will commence in June and conclude in August. External Affairs Ministry said in a statement that a total of 1,000 yatris have been selected through a fair, computer-generated, random, gender-balanced selection process. Benchmark domestic equity indices ended on a negative note after a volatile trade today. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. And that is the end of this news bulletin.
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की। कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे। 5 देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया। दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
3: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया। एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुंचा जाएगा। ये इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है। ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब US डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया। 3 अरब डॉलर्स इमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से आरबीएल बैंक में आएंगे। दोनों देशों ने गुजरात की वडीनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे। ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी। नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में

0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
1: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है। यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड साझेदारी का जीवंत सेतु हैं। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसली डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसलेट डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफसलेट डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है, जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खम्बात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढ़र जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी। इस यात्रा के परिणामों को 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रूपरेखा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए दुर्लभ खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डच सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुँचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
2: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
3: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर।

0: वर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडिश उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहां के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीता गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट, जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
2: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
1: 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
3: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है।

0: और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और यूएई के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में

दोस्तों, इंतजार शब्द दूरियों को मिलाने का एक बेहद खास शब्द है। जी हाँ, इंतजार जो हमें अपनों का होता है हमेशा शाम का वक्त और अपने ऑफिस से रोजमर्रा की तरह राह पर निकलते हुए अपने अपनों की यादों में खोता हुआ अपना दिल संभालते हुए अपना वाहन चलाते हुए हम पहुंचते हैं धीरे धीरे अपने उन खास अपनों के पास जिनका हमें इंतजार रहता है उनसे मुलाकात करने का, और साथ ही उन्हें भी हमारा इंतजार रहता है हमसे मुलाकात करने का। ठीक इसी तरह हमें भी इंतजार रहता है आपसे ढेर सारी बातें करने का। तो लीजिए जनाब, इंतजार खत्म हुआ और हम हैं आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये राही जो हमें आपसे मिलवा रही हैं वो है सांझ ढली का सफर, बेहद ही खूबसूरत और उम्दा सफर। चलिए इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस गीत के साथ जिसे हम शामिल कर रहे हैं पॉकेट मार फिल्म से। और आज के इस खूबसूरत सफर पर आपके साथ मैं हूं आपकी हम सफर, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 अप्रैल तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी जनाब, आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो जनाब, गीतों में जो छुपी हुई होती है ना बातें, किस्से, कहानियां, वो हम लोग नहीं जानते हैं अक्सर। लेकिन हाँ, आज एक ऐसा ही किस्सा आपके साथ बयां कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। बात है साल 1955 की फिल्म बाप रे बाप फिल्म की, और इसका एक गीत जिससे जुड़ा है एक बेहद दिलचस्प किस्सा, जो हम आपको बताएंगे तो सही, पर फिलहाल सुनिए आप ये गीत ससुराल फिल्म से लता जी की आवाज में आप सभी के लिए।

तो जनाब, अभी हमने आपसे बात की थी कि एक ऐसा दिलचस्प किस्सा हम आपको सुनवाएंगे जो कि एक गीत से जुड़ा है। बाप रे बाप फिल्म से एक गीत जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी और इसमें स्वर दिया था किशोर दा और आशा जी ने। दरअसल हुआ यूं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय गलती से किशोर दा की पंक्ति की जगह छोटा सा आलाप ले लिया था आशा जी ने, पर उस समय इस गलती को किशोर दा ने आशा जी को नजरअंदाज करके गीत को पूरा करने का इशारा कर दिया। रिकॉर्डिंग के बाद आशा जी गीत को दोबारा रिकॉर्ड करना चाहती थी, पर किशोर दा जो कि इस फिल्म में भी मुख्य कलाकार थे, उन्होंने इस गीत की शूटिंग के वक्त में नायिका के मुंह पर उन्होंने कहा मैं हाथ रख दूंगा, तो ये गलती नहीं लगेगी। खैर, गाने को इसी तरह से शूट कर दिया गया, रिकॉर्डिंग कर दी गई और शूट भी इसी तरह से कर दिया गया जो कि दरअसल बिल्कुल असल में लगा। और जानते हैं, ये गीत सुपरहिट हुआ और दर्शकों ने इस गीत को बेहद पसंद किया। आइए सुनते हैं इसी फिल्म के गीत को किशोर दास साहब की आवाज में और आशा जी की आवाज में।

इसी तरह हंसते गाते आपका ये सफर और जिंदगी का सफर हमेशा यूं ही बीतता रहे और हम भी आपके साथ रहें। फिलहाल विदा दीजिए रूपा को, नमस्कार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 12 दिवसीय संपर्क अभियान शुरू किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 सीएमसी स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। और दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किये। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 12 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के छठे दिन आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। एक रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री आशीष सूद ने कहा कि संवाद के दौरान उन्होंने आधुनिक कक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, आईसीटी लैब्स, विद्यालयों की सुरक्षा, विद्यालयों के मानसिक स्वास्थ्य और सीबीएसई के पैमानों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही नवाचार आधारित गतिविधियां, शून्य अपशिष्ट अभियान, नशा विरोधी जागरूकता, बेहतर आधारभूत संरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। इस जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व शिक्षा मंत्री आशीष सूद और शिक्षा निदेशालय कर रहे हैं। इसका देश राजधानी के स्कूलों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से सीधे संवाद कर सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर बनाना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रविवार को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सेवाएं 1 घंटे पूर्व शुरू की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीयकरण, सांस्कृतिक जुड़ाव और विद्यार्थियों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत सहयोग को बेहतर करना था। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान दोनों संस्थानों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने की रणनीतियों पर चर्चा की। साथ ही विश्वविद्यालय को वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के तरीकों पर विचार किया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और सहयोगात्मक पहलुओं पर भी बात हुई। चर्चा के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति और छात्रों के कल्याण के महत्व पर भी बल दिया गया। इस संबंध में दोनों पक्ष विदेशी छात्रों के लिए योग सत्र शुरू करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही भारतीय नृत्य और संगीत के सत्र भी आयोजित करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कल्याणकारी परंपराओं से गहराई से परिचित कराना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 सीएमसी स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष संबंधित अधिकारियों ने इस बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें विद्यालयों में मौजूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की स्थिति, उनकी कमियां और उन्हें कार्यशील बनाने की कार्य योजना रखी गई।
5: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में वर्षा जल संरक्षण को मजबूत करना, भूजल स्तर सुधारना और छात्रों तथा समाज में

0: जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में वर्षा जल संचयन के लिए गैर सरकारी संगठन एहसास प्रणाली को अपनाया जाएगा, जिसे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में स्वीकृति दी गई थी। इसके माध्यम से छतों से आने वाले वर्षा जल को फिल्टर कर स्टोरेज व बोरवेल से जोड़ा जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और सूखे बोरवेल को भी पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान कई कमियां पाई गईं, जिसे दिल्ली सरकार ने दूर करने के लिए विस्तृत सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत वर्षा जल पाइपों को उचित चैनलों से जोड़ा जाएगा, जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य के साथ शिवांग मिश्रा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राजधानी में बड़े स्तर पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से दोबारा शुरू कर दी गई है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अंत्योदय संकल्प को आधार बनाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं।
4: 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि हमने पूरी की पूरी राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया है।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं और जांच में लगभग 7 लाख अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं।
4: 1,44,000 लोग ऐसे थे जो कि इनकम क्राइटेरिया के ऊपर थे। 35,800 लोग ऐसे थे जो कि राशन उन्होंने एक साल से लिया ही नहीं, पर उनके नाम के राशन कार्ड लगातार चलते जा रहे।
3: उन्होंने बताया कि राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।
4: राशन दुकान में जो कांटे हैं उसे हमने ई वेइंग मशीन में कन्वर्ट किया है, ई बायोमेट्रिक मशीन में कन्वर्ट किया, जो कि पूरी तरीके से अटैच है राशन कार्ड के साथ।
3: उन्होंने जानकारी दी कि अब नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा। इससे पात्रता की सही जांच हो सकेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। साथ ही इनमें पारदर्शी और त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया भी इनमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत राशन कार्ड के लिए अनिवार्य वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली, गौरवशाली संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को निकट से समझने के लिए आज परंपरा लेखन समिति प्रबंधक के समूह ने परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने समूह से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी।
5: हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम गौरव करते हैं अपने अतीत पर और उससे प्रेरणा लेकर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो आज के दिन बहुत ही एक एकेडमिक डे है दिल्ली विधानसभा में, जो सब लोगों से यहाँ पे एक परिचर्चा हुई है और इतिहास के बारे में यहाँ पर उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, कॉफी टेबल बुक का सबने अवलोकन किया और सदन के पटल पर जाकर वहाँ भी सदन का अवलोकन किया। तो ये एक बहुत ही सुंदर अवसर है।
1: राजधानी के देवली विधानसभा तिगड़ी क्षेत्र के पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़कों के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विकास निधि से लगभग 1,61,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने यह जानकारी साझा की है। श्री भिदुड़ी ने बताया कि इन विकास कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री

रेखा गुप्ता रविवार को करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कल से नमो भारत की 8 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। इसके तहत सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सराय काले खां से मेरठ साउथ स्टेशनों के बीच ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही ये अतिरिक्त सेवा प्रदान करने के लिए 2 और ट्रेनें कॉरिडोर पर चलाई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सक्रिय मादक पदार्थों के एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया है कि तस्करों के पास से लगभग 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए गए। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो सतर्क रहें और अपने आसपास नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देकर नशे के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दें। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम प्रतिबंधित हैं। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि पशुओं की तस्करी, अवैध कुर्बानी और पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री मिश्रा ने आज आगामी बकरीद के मद्देनजर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी जाए। साथ ही गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित किया जाए। श्री कपिल मिश्रा ने निर्देश दिए कि सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी न हो। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री भी पूर्णतः गैर कानूनी है। उन्होंने इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने और ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवंशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। ये पहल निदान, परामर्श, रोकथाम, प्रशिक्षण और जन स्वास्थ्य जागरूकता को समाहित करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से आनुवंशिक विकारों से निपटने का भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय प्रयास है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्व शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेक और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। दोनों मार्गों पर वाहन से जा सकते हैं और ट्रैकिंग का रास्ता भी बहुत कम है। यात्रा मार्ग और जत्थे का ब्यौरा यात्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन संस्थानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल भी राजधानी में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 12 दिवसीय

संपर्क अभियान शुरू किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को पिंक लाइन, मजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 सीएम श्री स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। और दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका स्वाभाविक साझेदार हैं तथा प्रौद्योगिकी, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: अमेरिका एंड इंडिया,
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
2: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह

फिल्म जगत के संगीतकार और उनके संगीत की बहुत सारी बातें और सुनवाएंगे आपको रागों पर आधारित गीतों को मधुरिमा में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूँ आज मैं रूपा धवन। नमस्कार, आपके लिए लेकर आए हैं मधुरिमा कार्यक्रम। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गीत की, जिसे हमने लिया है नवरंग फिल्म से। स्वर है महेंद्र कपूर और आशा जी का, राग है मालकोस, और जिस ताल का प्रयोग हुआ इस गीत में उस ताल का नाम है ताल दादरा। संगीत से सजाया संवारा सी रामचंद्र जी ने और गीतकार हैं इसके भरत व्यास। तो चलिए सुनते हैं नवरंग फिल्म का ये गीत और इसी के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करैक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूँ और ड्रा भी कर रहा हूँ और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करैक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम, विविध भारती का अपना एक अलग मजा था क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक मिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था जो मैं रात को हवा महल जिस पे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12

या 13 साल का था, तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था, इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां आप हैं रूपा के साथ और रूपा आपके लिए लाई है मधुरिमा कार्यक्रम। 1950 के दशक में हंसराज बहल फिल्मी दुनिया के चर्चित संगीतकार रहे। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में चंगेज खान 1957 जिसमें प्रदर्शित हुई थी, उसका नाम लोकप्रियता की दृष्टि से आज भी सबसे ऊपर आता है। जौनपुरी पर आधारित एक गीत जिसे न केवल रफी के श्रेष्ठ गानों में शुमार किया जाता है बल्कि लोकप्रियता के तौर पर भी ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। सुनते हैं यही गीत।

दोस्तों, सचिन दा की अगर बात करें तो वो हमेशा से ही उनकी विशेषता रही कि वो किसी भी एक गायक पर निर्भर न रहकर सभी गायकों को चुनते थे। फिल्म आराधना, जो कि 1969 में प्रदर्शित हुई थी, इसके गीतों से किशोर दा भी रातों रात चोटी पर आ पहुंचे थे और इसकी असली वजह थी पंचमदा। सुनते हैं इसी फिल्म आराधना से ये गीत राग दुर्गा पर आधारित।

0: नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन में आज आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेलों की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। हॉकी इंडिया ने पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता गोरखपुर में संपन्न हुई। अश्मिता चलिहा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन कल से झारखंड के रांची में शुरू। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 117 रन बना लिए हैं। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। गुजरात की टीम जो है वो पहले ही प्लेऑफ का अपना टिकट कटा चुकी है, जबकि चेन्नई चाहेगी कि आज का मैच जीता जाए, अच्छे अंतर से जीता जाए और टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत रखी जाए। इससे पहले कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखा। सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
1: ईडन गार्डन्स में कल करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। कॉर्बिन बॉश ने टीम के लिए 18 गेंद में सर्वाधिक 32 रन की नाबाद पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन का योगदान दिया। कोलकाता की ओर से सौरभ दुबे, कैमरन ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट लिए। 148 रन का सामान्य लक्ष्य केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोलकाता की ओर से मनीष पांडे ने 33 गेंद में 45 और रोबमैन पॉवेल ने 30 गेंद में 40 रन बनाए। अंतिम ओवर में रिंकू सिंह 9 और अनुकूल रॉय ने 4 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को 7 गेंद शेष रहते जीत दिलाई। कॉर्बिन बॉश ने मुंबई के लिए सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि दीपक चाहर, गजनफर और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिला। मनीष पांडे को उनकी पारी और शानदार फील्डिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी और राजस्थान और पंजाब के अगले मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि कोलकाता अपने कल के मैच के बाद आने वाले लीग के सभी मैच बहुत ध्यान और सतर्कता से खेलेगी भी और देखेगी भी। और अब आईपीएल के बाद रुख करते हैं हॉकी के टर्फ का, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। जापान के काकामिघारा में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए केतन कुशवाहा को टीम का कप्तान बनाया गया है। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली।
2: सावन कुमार और आयुष रजक गोलकीपर की भूमिका में टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि डिफेंडर के रोल के लिए अंश बहुता, अरमान सोरेंग, आशीष तानीपूर्ति, अर्शदीप सिंह, अवि मानिकपुरी और रोमित पाल को चुना गया है। मिडफील्ड की जिम्मेदारी राहुल यादव, प्रेमचंद सोए, वरिंदर सिंह, करण गौतम और सिद्धार्थ बेन के कंधों पर होगी। वहीं कप्तान केतन, आकाशदीप, गाजी खान, शाहरुख अली और प्रहलाद राजभर के साथ फॉरवर्ड की भूमिका में नजर आएंगे। भारत को पूल ए में दक्षिण कोरिया, मेजबान जापान, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान के साथ रखा गया। भारतीय टीम अपने पूल स्टेज कैंपेन की शुरुआत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत 31 मई को मेजबान जापान से, 1 जून को साउथ कोरिया से और 3 जून को चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। पूल ए और पूल बी की टॉप 2 टीमें सीधे 5 जून को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। वहीं टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 6 जून को खेला जाना है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि ये पूरा वर्ष बड़ी प्रतियोगिताओं का है, जहां एशिया गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े आयोजन होने हैं और सभी खेल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हॉकी के बाद चलते हैं मलेशिया के क्वालालंपुर, जहां बैडमिंटन कोर्ट में आज मलेशिया

0: मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत की अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में आज खेले गए भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबलों का पूरा हाल।
1: अश्मिता चाहिला ने क्वालिफायर और राउंड ऑफ 32 के बाद आज प्री क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। युवा अश्मिता ने सिर्फ 27 मिनट चले मुकाबले में मलेशिया की गोह जिन वेई को 21-13, 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना डेनमार्क की 8वीं वरीयता प्राप्त लाइन होजमार्के जर्सफेल्ट से होगा। हालांकि अश्मिता के अलावा भारत का कोई भी खिलाड़ी जीत दर्ज नहीं कर सका। मालविका बंसोड़ डेनमार्क की केजर्सफेल्ट से 21-16, 8-21 और 15-21 हार कर दूसरे दौर में बाहर हो गई थी। वहीं देविका सिहाग चीन की चेन युफेई से 16-21 और 13-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। इस बीच एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्कारुनन की हार के साथ ही भारत का मेंस डबल अभियान भी समाप्त हो गया है। मिक्स डबल्स में सात्विका रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा की जोड़ी अमरीका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाय के हाथों 12-21 और 25-27 से हार का सामना करना पड़ा। अब इस टूर्नामेंट में अश्मिता एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को उम्मीदें होंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो भारतीय उम्मीदों का भार अपने कंधों पे लिए अश्मिता लगातार क्वालिफायर्स, फिर राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में जीत दर्ज करते हुए अब राउंड ऑफ 8 की तरफ पहुंच गई हैं, यानी क्वार्टर फाइनल, जहां वो अपना कल मुकाबला खेलने उतरेंगी। और अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आज पानी की धार के बीच खिलाड़ी पदकों के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आए। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता का आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में समापन हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों की टीम ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स के एक बड़े आयोजन स्थल के रूप में सामने आ रहा है।
2: रामगढ़ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहां पे प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। रामगढ़ताल पर 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ताल इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है।
0: तो नई पहचान बनाता हुआ रामगढ़ ताल रोज नए कीर्तिमान और कमाल स्थापित कर रहा है। और अब इन खेलों पर अधिक अपडेट के साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रेमचंद। प्रेमचंद, आज गोरखपुर में किस किस टीम की नौका पार लगते हुए नजर आई है और बताइए कि आज के मुकाबलों के नतीजों में कौन कौन सी टीम बाजी मारते हुए दिखी।
3: जी जी जी, बालक वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ओवरऑल चैंपियन बनी, जिन्होंने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश ने 2 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन टीमों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की टीम ने भी इस बार एक गोल्ड मेडल जीता है। बालक वर्ग के क्वाड्रपल स्कल के फाइनल में यूपी की टीम विजयी रही। इस मुकाबले में दूसरे स्थान पर बंगाल और तीसरे स्थान पर उड़ीसा की टीम रही।
0: जी प्रेमचंद, हमें इस मैदान के बारे में भी बताइए कि बड़ी रोचक बात है कि गोरखपुर का ये मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है और राष्ट्रमंडल तक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है।
3: जी जी जी जी, जैसा कि आपने अभी सुना, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि रामगढ़ ताल जो है वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में बन चुका है, एक वाटर स्पोर्ट्स हब बन गया है। यहाँ पर 49 करोड़ रुपए की लागत से 20 स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। यूपी में देखे तो वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं बहुत समृद्ध है। प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, राप्ती जैसी नदियां हैं जहां वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में बलिया, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर जैसे शहरों में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओवरऑल गोरखपुर में बहुत सारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया था, जिसमें कम से कम 30,000 दर्शक जो है का ये स्टेडियम बनेगा। जी
0: बिल्कुल, एक बेहतर केंद्र के रूप में उभरते हुए भारत के तमाम शहर और उसी कड़ी में गोरखपुर भी। और अब गोरखपुर से चलते हैं झारखंड के रांची की तरफ, जो कि तैयार है नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन की मेजबानी के लिए, जो कल से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। ओलंपियन मुरली श्रीशंकर, अन्नू रानी, तजेंद्र पाल सिंह तूर, सर्वेश कुशारे और तेजस्विनी शंकर जैसे भारतीय दिग्गज एथलीट भी इस प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आएंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।

0: भारत की प्रमुख घरेलू एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में से एक नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन, जिसे आमतौर पर फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में होने वाले इस साल का यह आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए एकमात्र चयन ट्रायल के तौर पर काम करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने हैं। नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी में सचिन यादव, रोहित यादव और किशोर जेना कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफाई करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। वहीं महिलाओं में अन्नू रानी भाला फेंक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर पुरुष वर्ग में और शैली सिंह महिला वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला बूबकर और शॉट पुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर खेलते नजर आएंगे। राजेश रमेश 400 मीटर, मोहम्मद अफसल 800 मीटर और सर्वेश कुशारे ऊंची कूद में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के 400 मीटर स्पर्धा में विथया रामराज एक्शन में नजर आएंगी, जबकि तेजस्विनी शंकर कथानॉल में हिस्सा लेंगे। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो रोमांच तैयार होने को बेकरार है और अब बात करते हैं हॉकी कोच बलदेव सिंह की, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बसे एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा को बेहतरीन हॉकी प्रतिभा का केंद्र बना दिया है। सुनते हैं बलदेव सिंह के जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
2: जिंदगियां संवारना खेल खेल में, श्री बलदेव सिंह पद्मश्री 2026। 15 नवंबर 1950 को लुधियाना के किसान परिवार में जन्मे बलदेव सिंह का बचपन आर्थिक तंगी में बीता।
3: मैं उस समय बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार मैदान में राष्ट्रीय स्तर का ऐसा मैच देखा जिसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी एक दिन ऐसा खिलाड़ी बनूंगा।
2: बलदेव सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बेंगलुरु से हॉकी कोचिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया और 1981 में हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करके हरियाणा के शाहबाद मारकंडा में कोच के पद पर आ गए। शाहबाद उनकी कर्म भूमि बन गया और उन्होंने सबसे पहले यहाँ हॉकी ग्राउंड्स तैयार किए। बलदेव सिंह जी के कड़े परिश्रम और अनुशासित ट्रेनिंग से उनके खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। जल्दी ही वे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी नियुक्त हुए और टीम को कई सफलताएं दिलाई।
3: मैंने देखा कि लड़कियां भी खेलना चाहती हैं, पर उनके सामने कई अड़चनें थी। हमने उनके परिवार वालों को समझाया।
4: उन्होंने बड़ी गाड़ी ली बच्चों की मदद के लिए। जब प्रतियोगिताएं दिल्ली या कहीं दूर होती थी तो ये लड़कियों को घर लेने और छोड़ने भी जाते थे और आवश्यकता पड़ने पर ये आर्थिक सहायता भी देते थे।
3: हॉकी खेलने से यहाँ के बच्चों को मान सम्मान और जॉब भी मिली। लड़कियाँ आगे आएंगी तो इंडिया आगे आएगा।
2: बलदेव सिंह जी की ट्रेनिंग में लड़कियों की स्कूल टीम ने भी कई टूर्नामेंट जीते और आगे चलकर देश का गौरव बनी।
5: मेरे लिए वो सिर्फ एक कोच नहीं थे, मेरे लिए वो एक गाइड, मेंटोर और एक फादर फिगर, जिसको फिकर रहती थी कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए।
6: उस समय हमारे शाहबाद में कहावत थी कि किसी के घर बेटी पैदा हो तो उसे बलदेव जी के मैदान में छोड़ दो, उसकी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी।
2: शाहबाद से इतने खिलाड़ी निकलने लगे कि इसे हॉकी की नर्सरी कहा जाने लगा। सन 2017 में बलदेव सिंह जी भारत की ओलंपिक टास्क फोर्स में भी शामिल हुए और भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में योगदान दिया।
3: मेरी पूरी जिंदगी हॉकी और खिलाड़ियों के लिए है।
2: सच ही है, बलदेव सिंह गुरु नहीं, खुद गुरुकुल है। श्री बलदेव सिंह पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
1: तो कोटि कोटि नमस्कार बलदेव सिंह जी को, जो कि हॉकी की एक पूरी पीढ़ी के लिए किसी शिल्पकार से कम नहीं, और उनके बनाए हुए तमाम खिलाड़ी आज जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, तो शायद बलदेव सिंह जी का सीना भी फक्र से चौड़ा होता होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी, खेल जगत की, खेल मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: Var.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
0: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है

0: कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
1: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई

0: प्रधानमंत्री जी की नीदरलैंड्स की यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही है। ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में उन्होंने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अगर आप देखें कि ASML अपनी तरह की एक अनूठी कंपनी है और इस कंपनी की जो खासियत यह है कि वो ऐसी मशीनें बनाते हैं जिन मशीनों को बनाने वाली कोई कंपनी दूसरी दुनिया में है ही नहीं, जिनसे कि सेमीकंडक्टर फैब बनती है। और ये हमारे यहाँ जो ढलेरा में प्लांट बन रहा है उसमें हमारी शुरुआत करने के लिए बहुत ही मजबूत आधार देगा।
1: इन द थर्ड लेग ऑफ हिज विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीच्ड स्वीडन ऑन 17th ऑफ मई एंड हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स विद द स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ Kristersson in Gothenburg. The Prime Minister also participated in the European Roundtable for Industry, highlighting India's growing strategic and economic ties with Sweden and Europe. The launch of the India-Sweden Joint Innovation Partnership 2.0 was one of the major outcomes of the visit. The initiative seeks to deepen cooperation in emerging technologies such as AI, 6G, quantum computing and energy transmission. Prime Minister Modi was also conferred with Sweden's highest honor, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contribution to bilateral relations. Let's listen to a report by Akashvani correspondent Sakshi Singh, who was in Sweden to cover the Prime Minister's visit.
2: The visit witnessed six major achievements. The first was the adoption of the Joint Action Plan, which lays out an ambitious roadmap for cooperation across trade, innovation, climate change, defense and emerging technologies. The second major outcome was the strengthening of technological collaboration through the launch of the Joint Innovative Partnership 2.0 and the expansion of the Sweden-India Technology and AI Corridor, aimed at connecting the startup ecosystem of both the countries. The third achievement was the agreement to establish a virtual India-Sweden Joint Science and Technology Center, which will focus on frontier technologies such as AI, 6G, quantum computing and life sciences. The fourth major development was the commitment to double bilateral trade between the two nations within the next 5 years. Notably, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson expressed confidence that the target would be achieved even earlier, reflecting the rapidly growing economic engagement between India and Sweden. The fifth achievement was the development of the India-Sweden SME and Startup Platform, which is expected to enhance innovation-driven cooperation and create new opportunities for entrepreneurs and small businesses in both countries. The sixth significant aspect of the visit was the celebration of shared cultural and intellectual ties through the launch of the Tagore Sweden Lecture Series, commemorating the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic 2026 visit to Sweden.
1: In the fourth leg of his visit, Prime Minister Modi visited Norway on the 18th of May, where he inaugurated the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. He held a bilateral meeting with the Norwegian Prime Minister, Jonas Gahr Støre. Addressing the joint press meet after the India-Nordic Summit, Prime Minister Narendra Modi emphasized how Norway's strength in the blue economy, Finland's telecom technologies and Denmark's expertise in cybersecurity would help deepen cooperation between India and the Nordic countries.
3: Aaj humne भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे।
1: लेट्स लिसन इनटू अ डिटेल्ड रिपोर्ट बाय आकाशवाणी कॉरेस्पोंडेंट संगीता गोडबोले, हु वाज इन नॉर्वे टू कवर द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट।
4: The third India-Nordic summit has imparted a strategic dimension to the India-Nordic relationship. Prime Minister Narendra Modi attended the third India-Nordic summit in Oslo along with the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. The most significant decision taken in this summit was to elevate the India-Nordic relationship to green technology and innovation strategic partnership. The aim is collaboration of India's scale and expertise of Nordic countries in clean and green technologies. The countries from Nordic bloc bring to the table varied areas of expertise in green technology, renewable

0: रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है?
1: तो ये हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
0: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हमें इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
1: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल बांदा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री, तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया, कर्नाटक कोस्टल एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
0: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व तो क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
1: हीट वेव भी आजकल स्नो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव पे चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है, एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसे स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, एनडीएमए या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, ये हम कलर कोड वार्निंग देके उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देके उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
0: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
1: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
0: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
1: देश की बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये 3 राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा, धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ से दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
0: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़

0: उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सारे अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है, जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: regard. He has said that if fluctuations in crude oil prices, he will look through them and not respond to these things with any interest rate actions. Now, this is reassuring, because what happens is that if there is inflation goes up, then Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee will be encouraged to come in and will look at interest rates and see in what way it can be tweaked. So one has to wait and watch to see what kind of final action the Reserve Bank of India will take. But there's no doubt the Reserve Bank of India will be closely engaged with what is really happening on the price front.
1: Yeah, we will know what the Reserve Bank of India decides, you know, when it convenes its MPC next month in June. But on that note, Mr. Reki Bhattacharya, thank you so much for joining us on Akashwani's Insights program.
0: Thank you very much for having me.
1: That was a discussion on the UN report on India's strong economic growth, key highlights. Listeners, you can listen to this program again on our YouTube channel, News on AIR Official, and on our mobile app, News on AIR.
2: Insights.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 3 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में अश्मिता चाहिला मलेशिया की गो चिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हॉजमार्क से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: made, while the supply of commercial LPG remained 132,000 tons since the 1st of this month. The Director General of Health Services has issued an advisory regarding Ebola disease for passengers arriving from or transiting through affected countries. According to the advisory, travellers who have visited high-risk countries, including the Democratic Republic of Congo, Uganda and South Sudan, and experiencing symptoms such as fever, headache, muscle pain, unexplained bleeding and vomiting, sore throat, have been urged to seek immediate medical attention. India has called for united global efforts to combat terrorism in all its forms, including cross-border terror. Addressing the 11th annual BRICS Counter-Terrorism Working Group meeting in New Delhi today, Minister of External Affairs Secretary V.C.V. George stressed the need to hold accountable those sheltering and supporting terrorism. In IPL cricket, Gujarat Titans have set a target of 230 runs for Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight. In reply, Chennai Super Kings were 49 for 3 in 4.4 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान पर अहमदिया समुदाय के खिलाफ दमन का आरोप लगाया। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन एफएओ एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये एफएओ ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद से लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की है। भारत और मिस्र ने आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत की पुष्टि की। एक रिपोर्ट।
3: दोनों पक्षों ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारत और मिस्र के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक में पिछले वर्ष अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले और पिछले वर्ष नवम्बर में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की गई। दोनों पक्षों ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों देशों ने निरंतर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, न्यायिक सहयोग

0: योग सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और सूचना साझाकरण के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक मिस्र में आयोजित की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कांगो और युगांडा में 21 मई तक इबोला संक्रमण के दुर्लभ बंडी बोगियो स्ट्रेन से जुड़े कुल 650 संदिग्ध मामले मिले हैं। संक्रमण से 144 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए कहा कि स्थिति अभी महामारी के स्तर पर नहीं है। लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला किया गया। शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों की नई तारीखें आपसी परामर्श से तय की जाएंगी और उचित समय पर उचित की जाएंगी। भारत ने अफ्रीका के लोगों और सरकारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। WHO ने कहा है कि इबोला के इस विशेष स्ट्रेन के खिलाफ टीका तैयार होने में 9 महीने तक का समय लग सकता है। WHO के सलाहकार डॉ वासी मूर्ति ने कहा कि इससे निपटने के लिए 2 टीके विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अभी इनका क्लिनिकल परीक्षण बाकी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर अहमदिया समुदाय के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देने और दमन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार को लिखे एक पत्र में मानवाधिकार संगठन ने कहा कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को उत्पीड़न, धार्मिक अनुष्ठानों पर गैर कानूनी प्रतिबंध, मनमानी गिरफ्तारी, हिंसा और प्रशासनिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। एमनेस्टी ने प्रांतीय सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और कानून के समक्ष समानता सहित समुदाय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शांगला जिले में आज अलग अलग कोयला खदान दुर्घटनाओं में 2 खनिकों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। पहली घटना ओखरवाल कोयला खदान में हुई, जबकि दूसरी घटना चपरमश्ती क्षेत्र में घटी। राहत और बचाव दलों तथा स्थानीय लोगों ने खदान में फंसे श्रमिकों को बाहर निकाला। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर करीब से कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ब्रिटेन ने खाड़ी की 6 देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से मिलकर बने खाड़ी सहयोग परिषद GCC के साथ हुए इस समझौते से ब्रिटिश निर्यात पर लगभग 58 करोड़ पाउंड के वार्षिक शुल्क में कमी आने की उम्मीद है। GCC समझौता ब्रिटेन की कीर स्टार्मर सरकार का तीसरा बड़ा व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत और दक्षिण कोरिया के साथ ऐसे समझौते हो चुके हैं। 3 भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल 3 भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी, पाल पुनुरी संदीप अरे और अजय पाल सिंह।

धालीवाल हैं। नेपाल के कामिरिता शेर्पा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। वहीं नेपाल की लाग्पा शेर्पा रिकॉर्ड 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के सिलसिले में दुबई स्थित इंडियन पीपल्स फोरम के सदस्यों ने दुबई फ्रेम में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर चर्चा हुई और साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एकता और कल्याण का संदेश दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान पर अहमदिया समुदाय के खिलाफ दमन का आरोप लगाया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आज मैं हूं आज आपके साथ आपका हम सफर शमीम खान। दोस्तों आज हम साथ निकल पड़े हैं उस दौर की सैर पर जबकि सुने नहीं बल्कि महसूस किए जाते थे, वो दौर जब रेडियो की आवाज पूरे घर का हिस्सा हुआ करती थी। शाम की चाय, बरामदे की ठंडी हवा और कहीं दूर बजता हुआ रेडियो पर एक मीठा सा गीत। जरा सोचिए, क्या आपके घर में भी ऐसा कोई रेडियो हुआ करता था? जब सुबह गीत बजते थे तो पूरे घर का माहौल बदल जाता था। अगर हाँ तो समझ लीजिए आज की ये महफिल बिल्कुल आपके लिए है और उन सभी के लिए है जो रेडियो सुनना पसंद करते हैं या अभी रेडियो सुन रहे हैं। तो चलिए यादों की इस रेलगाड़ी को रवाना करते हैं एक ऐसे ही गीत के साथ जो मोहब्बत की मासूमियत को बेहद सादगी और खूबसूरती के साथ बयां कर रहा है। उस गीत को आवाज दी है इस उदास ने और फिल्म है स्वामी।

सच कहूं दोस्तों तो कुछ गीतों में एक अजीब सी जादूगरी होती है। बरसों बाद भी सुनो तो वही एहसास, वही धड़कन वापस लौट आती है। जरा याद कीजिए उस गीत को। कार्यक्रम का अगला गीत भी कुछ वैसा ही आपको महसूस करने

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और अभी आपके साथ है आपका हम सफर शमीम खान। दोस्तों, जिंदगी कभी मीठी, कभी शरारती, तो कभी थोड़ी सी भावुक, लेकिन एक बात तय है कि इसे खुलकर जीना चाहिए। तो आइए मुस्कुराइए जरा और गुनगुनाइए इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

वाह क्या कमाल की ऊर्जा थी इस गीत में। सुनते ही लगता है जैसे दिल कह रहा हो चलो भाई थोड़ा सा मुस्कुरा लिया जाए। दोस्तों जरा सोचिए अगर आपकी जिंदगी पर एक पुराना हिंदी गीत फिट बैठता हो तो वो कौन सा होगा। कभी फुर्सत में इस सवाल का जवाब खुद को जरूर दीजिएगा। बड़ा दिलचस्प एहसास होता है। और अब थोड़ा सा अपनापन। ये अगला गीत उन एहसासों का साथी है जिन्हें शब्दों में कहना थोड़ा सा आसान नहीं होता, लेकिन हमारे गीतकार ने उन्हें शब्दों में पिरोकर और संगीत से सजाकर हमारे सामने यूं पेश कर दिया है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, चाहे पास हों या दूर, दिल के बहुत करीब होते हैं। और जब उनकी याद आती है तो कोई गीत खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। तो चलिए, यादों की उसी नरम धूप में चलते हैं और सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों कार्यक्रम हर सिंगार में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का और समाचारों के उस पार कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हो जाएगा आपका ये दोस्त शमीम खान। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था।

हाँ, अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त आपका हमसफर शमीम खान। तो चलिए दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से नगमे के साथ जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और फिल्म है शक्ति।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड आरोप।

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का और मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यों की एसआईटी का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का यह फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। शिवम दुबे ने सबसे अधिक 47 रन बनाए। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari Srivastav. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
2: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan yesterday said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security, and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the conferment of Food and Agriculture Organization FAO Agricola Medal to Prime Minister Narendra Modi in Rome, Mr. Chauhan said that this honor is a symbol of the growing prestige of New India. He said the world looks upon India's policies, leadership, and humanitarian vision with respect. Railway Minister Ashwini Vaishnav yesterday held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in trains have revealed the involvement of antisocial elements. The ministry said that such incidents has been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The government yesterday reassured that India has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG, addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi on the West Asian situation. Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that refineries are operating at optimum capacity to meet the demand. Ms. Sharma said steps are being taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since 1st of this month. India has called for united global efforts to combat terrorism in all its forms, including cross-border terror. Addressing the 11th annual BRICS Counter-Terrorism Working Group meeting in New Delhi yesterday, Ministry of External Affairs Secretary C.B. George stressed the need to hold accountable those sheltering and supporting terrorism. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है पराया धन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो फिर सुनते भी हैं। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो। चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान की गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की करूंगी। चलो तारे गिनते हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कारवां, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800

0: शून्य पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कटी पतंग, आवाज है किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि शाम जब धीरे धीरे ढलती है तो सिर्फ सूरज नहीं जाता, हमारे भीतर की हलचल भी कहीं ना कहीं ठहरने लग जाती है। और इसी ठहरते हुए पल में हम महसूस करते हैं कि शायद हम खुद से बहुत दूर आ चुके हैं और अकेलापन हमें खलने लग जाता है। पर कभी सोचा है आपने कि वही अकेलापन होता है जो उस वक्त हमें खुद के करीब लाता है, खुद से मिलने का मौका देता है और यादें, रिश्ते, जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं सब एक एक करके सामने आने लग जाती हैं। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे मन ने कोई पुराना संदूक खोल दिया हो और जिसमें से एक एक करके पुरानी चीजें पुरानी यादों के साथ बाहर आ रही हूं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म का नाम है जाने अनजाने, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये जो रात होती है ना, ये रात कभी अचानक नहीं आती, वो दिन की हथेलियों से फिसलकर उतरती चली जाती है, जैसे कोई अधूरी बात धीरे धीरे गहरी होती जाती है। और वैसे ही जीवन भी बिना कहे बिना समझे धीरे धीरे बदलता रहता है। और रात रात हमारे भीतर के हर उस राह से गुजरती है जिसे हम बरसों तक देख नहीं पाते। हर व्यक्ति के भीतर एक अलग आकाश होता है, एक अलग दुनिया होती है, और हर आकाश के अंदर कुछ अनकहे तारे होते हैं जिनसे हम बहुत बार बातें करना भूल जाते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मन मंदिर, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

वक्ता चला है। आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच

0: देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। 3 भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल 3 भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनुरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरबा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said that the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
2: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has emphasized that productivity today extends beyond efficiency to include resilience, innovation, and inclusive growth. Addressing the inaugural session of 68th session of the governing body meeting of the Asian Productivity Organization in New Delhi yesterday, Mr. Goyal highlighted that India was honored to contribute during a transformative phase for the APO, where technology, sustainability, and changing global dynamics were reshaping economies. Highlighting countries' reforms under leadership of PM Modi, he noted initiatives such as Make in India, Startup India, Skill India, the production-linked incentive schemes, and PM Gati Shakti as examples of productivity-driven transformation, while reaffirming India's commitment to regional cooperation, sustainable development, and future-ready growth through the APO. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Kashmir. Burhan, alias Arjuman Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror acts in Jammu and Kashmir. Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCTC, has announced the launch of the upgraded Golden Chariot luxury train for the 2026-27 tourist season, introducing enhanced onboard amenities and promotional offers for travellers. In a statement, IRCTC said that the Golden Chariot, known for showcasing the rich cultural heritage and scenic landscapes of South India, returns in a refreshed form combining traditional elegance with modern comforts. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. In the Malaysia Masters Super Badminton, India's Ashmita Chaliha advanced to the women's singles quarterfinals after a 21-13-21-16 win over Malaysia's Go Jin Wei in the pre-quarterfinals in Kuala Lumpur yesterday. She will next face 8th seed Lene Hojmark Jarsfeldt of Denmark. India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today, and it will continue this week. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की एक खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कल आज और कल, आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: सीधा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो सुनो तो।

0: Muskelei.
1: Pelle, Muskelei. Pelle, Muskelei.

कहते हैं कि यादें कहीं जाती नहीं, वे बस अपना स्वर बदल देती हैं। कभी वे मुस्कुराहट बनकर आती हैं, तो कभी कभी हल्की सी चुभन साथ ले आती हैं। पर सच ये है कि ये यादें ही हैं जो हमें हमारे भीतर थोड़ा थोड़ा बचाए रखती हैं। जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ, और जो भीतर कहीं ठहर गया वो हमें थोड़ा और गहरा कर गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है कुमार शानू और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है सलामी।

की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

कहते हैं कि हमारे जीवन से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं ना, वो शब्दों से नहीं चलते हैं, उन्हें चलाने के लिए जरूरत होती है एहसास की। जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां अपनापन अधिक होता है और वहीं रिश्ते एहसास के साथ सांस लेते हैं। ये जो रात होती है ना, ये हमें एक और बहुत गहरी बात सिखाती है। रात हमें सिखाती है कि किसी को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे समझना जरूरी होता है। क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है, अगर वो दूर है तो भी करीब महसूस होता रहता है। और जो दिल से जुड़े लोग नहीं होते हैं, वो आपके कितने भी करीब हों, उनसे आपको दूरी महसूस होती है। रात सीखने, समझने और महसूस करने का मौका देती है। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम है आराधना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संगम, आवाज है मुकेश की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य

0: पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। बैठक में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on PM Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the PM's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो?
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरीन तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो। जब रात थका दे तुमको और नींद भी साथ ना दे, जब रात थका दे तुमको और नींद भी साथ ना दे, मेरे पास चले आओ बैठो और फिर बात करो, मेरे पास चले आओ बैठो और फिर बात करो। जो आंख में ठहरी सी है लफ्जों में ढलती ही नहीं, जो आंख में ठहरी सी है लफ्जों में ढलती ही नहीं, उस खामोश सी हलचल को भी तुम मेरे साथ करो, तुम मेरे साथ करो। तुम दिल की हर एक बात खुलकर मुझसे बात करो, रुक रुक के ना कहो कुछ भी, सीधे सीधे बात करो, सीधे सीधे बात करो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है संगम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है झील के उस पार।

कभी आना, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, हर सुबह शाम और रात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की, हर सुबह शाम और रात होगी। अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर, अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर, हम दोनों के प्रेम का, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी, तभी एक दूसरे से बात होगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है अंदाज़।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद सुरभि होंगी आपके साथ। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत और फिर मिलने के वादे के साथ। गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समिति बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। लगातार 5वें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on PM Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the PM's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस ठहरी हुई खामोशी भरी रात में, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हमराही में। मैं हूं सुरभि आपके साथ। रात की अपनी एक अलग जबान होती है, कुछ अनकहे ख्वाब, कुछ आधी अधूरी बातें और कुछ ऐसे एहसास जो दिन की रोशनी में

असर छुप जाते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत कभी शोर नहीं करती, वो तो चुपचाप दिल की गहराई में उतरती है, कभी किसी गीत की तरह तो कभी किसी की याद की तरह। तो चलिए किसी की यादों में उतरते हैं गीत सुनते हुए, उन सदाबहार नगमों रोमांटिक गीतों के सफर पर जो दिल को सुकून देंगे और मुस्कुराने की वजह भी देंगे। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही गीत से जिसमें प्यार की मासूमियत भी है और अपनापन भी है। फिल्म है ब्लैकमेल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और चलिए सुनते हैं अगला गाना, नाइट इन लंदन फिल्म से रफी साहब की आवाज में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, एक ऐसा गीत जो बिना कम शब्दों के दिल की पूरी बात कह जाता है। कभी गौर कीजिएगा कि पुराने दौर की मोहब्बत कितनी सलीकेदार हुआ करती थी, ना लंबी बातें ना दिखावा, बस एक नजर एक मुस्कान और दिल की बात इशारों में समझ ली जाती थी। जी हां, शायद मोहब्बत की सबसे प्यारी जुबान खामोशी ही होती है, जहां आंखें बोलती हैं और दिल सुनता है। अच्छा, इस गीत से जुड़ा एक और दिलचस्प वाकया ये है कि ये गीत शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। ये गीत कश्मीर की बेहद खूबसूरत वादियों पर शूट किया गया। उस दौर में कश्मीर को हिंदी फिल्मों का स्वर्ग कहा जाता था और इस फिल्म ने उसकी खूबसूरती को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। फिल्म का संगीत ओपी नैयर द्वारा तैयार किया गया, जिसकी धुनें और उन धुनों में एक अलग ही चंचलता और नरमी महसूस की जाती थी। मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो चलिए इशारों इशारों में इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं, रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

रात थोड़ी और गहरी हो चली है और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं दिल की, तो याद आता है वो प्यार जिसकी शुरुआत बड़ी खामोशी से होती है और पता जब चलता है तब मुस्कान की वजह कोई और बन चुका होता है। दिल की दुनिया भी कितनी अजीब

वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कभी बारिश, कभी चांदनी और कभी कोई गीत, प्यार की याद दिलाने के लिए इतना ही काफी होता है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद इंतजार है, जहां हर छोटी चीज किसी की याद बन जाती है। और चलिए अब ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें अपनापन है, ठहराव है और बहुत सारी नरमी है। फिल्म है घर, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कितना सुंदर है वो एहसास जहाँ किसी के सपनों में अपना नाम मिलने लगे। मोहब्बत शायद वही है जहाँ दो लोग एक दूसरे को बदलते नहीं बल्कि समझने लगते हैं।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में अगले महीने की 1 तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 2 में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस हार के साथ ही चेन्नई प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
2: The 8th India-France Maritime Cooperation Dialogue was held in Paris on Wednesday. It was co-chaired by Deputy National Security Advisor in National Security Council Secretariat, Pavan Kapoor, and Director General for International Relations and Strategy, Ministry for the Armed Forces of France, Guillaume Olagnier, and Director for Strategic Affairs, Security and Disarmament at the Ministry of Europe and Foreign Affairs, Mrs. Claire Rollin. The discussions focused on their shared commitment to strengthening operational cooperation for countering illicit maritime activities, including piracy and armed robbery, maritime terrorism, drug trafficking, illegal, unreported and unregulated fishing, as well as other hybrid threats. In a major development in the NEET paper leak case, a pediatrician from Latur, Dr. Manoj Shirure, has reportedly been taken into custody by the Central Bureau of Investigation. According to sources, investigating agencies suspect that Dr. Shirure allegedly purchased the NEET examination question paper for his daughter. A few days ago, CBI officials had visited his hospital in Latur and conducted an extensive inquiry. The Calcutta High Court has set up a special investigation team to probe the R.G. Kerr Medical College and Hospital rape murder case. The three-member SIT will be led by the Central Bureau of Investigation's Joint Director for the Eastern Zone. The court has asked the team to file its report by June 25th. The court's decision follows repeated concerns from the victim's family, alleging tampering of evidence and suppression of facts. Delhi government has announced a major initiative to strengthen water conservation in the national capital, with rainwater harvesting systems to be revived and made functional in 75 government schools before the onset of the monsoon. Delhi CM Rekha Gupta said that the move is expected to generate an annual rainwater harvesting capacity of nearly 50 crore litres. India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today, and it will continue this week. Similar conditions are likely to prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh and coastal Andhra Pradesh. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा, मैं हूं सुरभि आपके साथ। रात की खामोशी में अब धीरे धीरे सुबह की हल्की हल्की रोशनी धीरे धीरे घुलने वाली है, घुलने लगी है। हवा में एक ठंडक है, एक ठहराव है, और इसी सुकून भरे पल में मैं हूं सुरभि आपके साथ। जी हाँ, बातें करेंगे कुछ दिल की और कुछ गीत सुनाए जाएंगे, सुने जाएंगे, महसूस किए जाएंगे। तो चलिए आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत। फिल्म है मेरे जीवन साथी।

दिल चाहता है कि शोर ना हो, बस थोड़ी सी खामोशी रहे, थोड़ी सी हवा और कुछ पुरानी यादें, खूबसूरत एहसास और कुछ गीत बस दिल में रहें। और कभी कभी हम सबके मन के भीतर एक ऐसा कोना होता है जो सिर्फ सुकून ढूंढता है, फुर्सत के पल ढूंढता है। तो चलिए हम और आप इसी फुर्सत के पल को ढूंढते हैं और सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। कभी कभी किसी की छोटी मोटी शरारतें अचानक जब याद आती हैं तो मन खुश हो जाता है। और अगर बात करें सुबह की तो ये सिर्फ खामोशी नहीं लाती बल्कि एक हल्की सी शरारत भी साथ लाती है। जैसे ठंडी हवा का यूं अचानक गालों को छू कर जाना या फिर किसी की पुरानी याद में उसका मुस्कुरा देना, काफ़ी कुछ ऐसा है जो यादों में बसा होता है। तो इसी मीठी मुस्कान के साथ चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म है ऊंचे लोग।

अरुणिमा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन ये सुबह हमें शायद यही याद दिलाने को आती है कि हर दिन नया दिन है और हर एक नई कोशिश भी आप हर नई सुबह के साथ कर सकते हैं, करते हैं। और अगर मन थोड़ा सा थका हुआ हो तो शायद ये गीत हमको और आपको एक छोटी सी हिम्मत जरूर दे जाता है।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफियाडिस, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों की यात्रा के बारे में नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि ये यात्रा समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने जांच दल को 25 जून तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। परिवार ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को छिपाया गया है।

खेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 1 जून को होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी बाद में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं सुरभि आपके साथ। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। जीवन चलने का नाम है और ये विचार हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता असफलता, हंसी आंसू आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इंसान को हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है और अच्छे दिन हमें खुशियों का महत्व समझाते हैं। रास्तों में कितनी भी बाधाएं आए, उनसे घबराने की बजाय अगर हम सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन की इस यात्रा को एक नए अनुभव के साथ, कुछ नया सिखाते हुए, हम सकारात्मक सोच के साथ सच्चे अर्थों में जी सकते हैं।

जीवन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, इसमें संघर्ष, कठिनाइयां और अनेक परीक्षाएं आती हैं, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, आगे बढ़ने का साहस देती हैं। जब रास्ता मुश्किल लगने लगे तब हार मानने की बजाय अपने लक्ष्य पर विश्वास करना चाहिए। मन में दृढ़ संकल्प हो, सकारात्मक सोच हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। और कठिनाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम उम्मीद का दामन थामकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।